0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: राधा, ओ राधा।
3: क्या है? मैं नहीं बोलती।
2: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
3: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: 9162154619।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
13: श्रोतागण, भक्ति गीत के बाद स्वागत पर रउआ सबके प्रोग्राम आपन दी आपन देखभाल में। रउआ तो पता ही बा कि एक

कार्यक्रम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले दीपाली की ओर से नमस्कार सुप्रभात। यहाँ रेडियो रिमझिम 90.4। तो अब चली कल जाओ आगाज आज के आपन देखभाल कार्यक्रम के। दोस्त लोग, हम अपना कार्यक्रम के शुरुआत में बताए सेहत खातिर आसान घरेलू नुस्खा। कमजोरी होके पे जौन लोग दुबलापन के शिकार होके उ लोग के भोजन के साथ 2 या 3 चम्मच शहद खाए के चाहिए। और ई रात के सूते समय ठंडा फीका दूध में शहद घोल के पिए के चाहिए। थकावट होके पे 1 ग्लास ठंडा पानी में 1 से 2 चम्मच शहद घोल के पिए से शरीर में चुस्ती फुर्ती आवेला। अपच होके पे पालक के सब्जी खाई व टमाटर के रस पी। पैर के तलवा में जलन होके पर बड़ा बड़ा लौकी के टुकड़ा काट के उई पर घीसी। कब्ज ना हो एक खातिर दोनों समय खाना खाए के बाद थोड़ा सा गुड़ खा ली। बवासीर में नींबू काट के उई पर खाई वाला कत्था लेप के रात के छत पर रख दी। आज सुबह सुबह एके चूसी, ऐसे बवासीर में लाभ हुई। खूनी बवासीर में अमरूद काट के नौसादर के लेप करी और रात भर खुला स्थान पर रखी। आज सुबह सुबह खा ली। खूनी बवासीर में ऐसे बहुत लाभ हुई। कप गुलाब जल में आधा नींबू निचोड़ ली। आए के सुबह शाम कुल्ला करे पर मुंह के बदबू दूर होके मसूड़ा व दांत मजबूत हुई। भोजन के साथ 2 केला प्रतिदिन सेवन करे से भूख में वृद्धि होला। आंवला भून के खाए से खांसी में फौरन राहत मिलेला। चम्मच शुद्ध घी में हींग मिला के पिए से पेट दर्द में राहत मिलेला। टमाटर के पीस के चेहरा पर एकर लेप लगावे से त्वचा के कांति और चमक दुगुना बढ़ जाला। मुहासा चेहरा के झाई और दाग धब्बा दूर करे में मदद मिलेला। पसीना अधिक आवत होके तो पानी में फिटकरी डाल के स्नान करी। उबलत पानी में नींबू निचोड़ के पानी पिए से ज्वर के तापमान गिर जाला। सूते से पहले सरसों के तेल नाभि पर लगावे से होठ ना फटेला। पचास ग्राम छाछ में 10 ग्राम गुड़ डाल के सिर धोए से अथवा नींबू के रस लगा के सिर धोए से रूसी दूर होल। श्रोतागण चली आप जानल जाओ सेहत के साथ ही गेहूं के अंकुरित दाना के घरेलू नुस्खा। अंकुरित अनाज सेहत खातिर काफी फायदेमंद होला। से बनल रोटी तो सबसे सहज और पौष्टिक खाद्य है। अंकुरित गेहूं भी रउआ ढेर सारा विटामिन्स और ई पौष्टिक तत्व दे सकेला। गुड़ से भरपूर होके के साथ ही ई रउआ वजन में भी आसानी से समा सकेला। गेहूं शरीर खातिर शक्तिवर्धक टॉनिक के तरह ही है। अंकुर उगल होकल गेहूं में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होला।
उर्वरक क्षमता बढ़ावे खातिर विटामिन ई एगो आवश्यक पोषक तत्व है। ई तरह के गेहूं के सेवन से त्वचा और बाल भी चमकदार बनल रहेला। किडनी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के मजबूत और नया रक्त कोशिका के निर्माण में भी इसे मदद मिलेला। अंकुरित गेहूं में मौजूद तत्व शरीर से अतिरिक्त वसा के भी शोषण कर लेला। इतना ही ना, अंकुरित गेहूं खाए से शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेला। इस शरीर में बने वाला विषैला तत्व के भी निष्प्रभावी कर रक्त के शुद्ध करेला। दाना के चबा के खाए से शरीर की कोशिका शुद्ध होला और इसे नया कोशिका के निर्माण में भी मदद मिलेगा। अंकुरित गेहूं में उपस्थित फाइबर के कारण एके नियमित सेवन से पाचन क्रिया भी सुचारू रहेला। अतः जे लोग के पाचन संबंध समस्या हो वो लोग खातिर भी अंकुरित गेहूं के सेवन फायदेमंद है। तो चलिए अब हम बता दें कि गेहूं के अंकुरित रहुआ कैसे करें। गेहूं अंकुरित करे खातिर अच्छा गुणवत्ता के गेहूं ली आ गेहूं के साफ करके 6 से 12 घंटा खातिर पानी में भिंगा दी। गेहूं के दिन में 3 बार पानी से धोई। अब गेहूं के कपड़ा में बांध के रख दी। अंकुरित होके पर मनचाहा तरीका से एकर प्रयोग करी। बच्चा खातिर भी रउआ ऐसे पराठा, सॉफ्ट पूरी, सैंडविच जैसन चीज बना सकतनी। वह डाइट कॉन्शियस लोग एकरा के सिंपल तरीका से नींबू तथा हल्का मसाला के साथ खा सकेला।

गेहूं से जुड़ल कुछ घरेलू नुस्खा। अब चलिए हम बता दी हर मौसम में आहार के नियम। तांबा के बर्तन में पिए वाला पानी रखे के चाहिए। आज सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पिए के चाहिए। खाना 10 से 12 बजे के बीच खाए के चाहिए। खाना खाते समय खुश रहे के चाहिए। भोजन के साथ सलाद खाए के चाहिए। दोनों समय के भोजन के बीच 7 घंटा के अंतर होके के चाहिए। खाना के साथ थोड़ा पानी पिए के चाहिए, ज्यादा ना। खाना खाए के बाद कुल्ला जरूर करी। खाना खाए के बाद 500 कदम चले के चाहिए। रात के खाना 6 से 9 बजे के बीच खाए के चाहिए। रात के 10 बजे के बाद कुछ ना खाए। रात के सूते के पहले दूध जरूर पिए के चाहिए। खाना खाए के बाद बायां करवट आराम करे के चाहिए। रात की खाना सूते से 2 घंटा पहले खाए के चाहिए। रात के ब्रश करके सूते के चाहिए। समापन मिठास के साथ करे के चाहिए, यानी खाना के बाद अंत में एगो मीठा चीज जरूर खाए। तो दोस्त लोग ई रहल है आज

0: हेल्थ टिप्स जौन के अजमा के रउआ पा सकतनी निरोगी काया। तो अति हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति आ रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: ठक ठक
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव घर से नहीं, घर वालों से प्यार करना सिखाते हैं। शिव परिवार को साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। अब आगे
11: यार मुझे बहुत डर लग रहा है, चलना वापस चलते हैं।
12: अरे तू इतनी डरती क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ, चल।
11: पर इतनी बारिश में हम जाएंगे कहाँ? देख अगर मेरे घर वालों में से किसी ने देख लिया ना तो मैं तो गई।
12: अरे तो बैठना, शहर से थोड़ा ही दूर एक मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, हमें भी टाइम मिल जाएगा और क्लास से छुटकारा। चल बैठ पीछे।
11: ये क्या है, तूने तो कहा था मंदिर है।
12: हाँ तो है ना मंदिर, वो देख नीचे।
11: नीचे? तू पागल है क्या, मैं नहीं जा रही वहां तक।
12: फिर डर रही है, अरे चलना, देख कितने एक्साइटिंग है, 100 सीढ़ियां है, उतरनी पड़ेगी, एडवेंचर है यार, चलना।
11: तू ना सारे काम उल्टे करवाता है मुझसे, चल।
12: ध्यान से, बहुत स्लिपरी है।
11: अरे ये क्या, क्या हो रहा है ये?
12: पता नहीं यार,
13: सीढ़ियां टूट गई, हम फंस गए और बारिश रुकने के आसार भी नहीं दिख रहे। हम ऊपर नहीं जा सकते जब तक कोई बाहर से मदद करने नहीं आता।
11: क्या हम फंस गए? यश मैंने तुझसे कहा था ना।
12: अरे यार किसी को पता नहीं चलेगा, तू टेंशन मत ले, तू ना बैठ जा, शांति से बैठ जा, करते हैं कुछ रिलैक्स।
11: कैसे करूँ रिलैक्स?
12: तू एक काम कर, तू कुछ और सोच, डिस्ट्रैक्ट कर ले अपने आप को। तू स्टोरी सुनेगी?
11: स्टोरी?
12: हाँ कौन सी स्टोरी सुनाओ?
13: इस मंदिर की स्टोरी सुना दो।
12: इस मंदिर की स्टोरी? वो तो मुझे नहीं पता, आपको पता है?
13: हाँ।
12: तो यार आप ही सुना दो।
13: वैसे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ की। एक बार की बात है, मनोज और सुरेश नाम के दो चोर थे, वो एक दिन इसी मंदिर में आ गए।
14: भाई सुरेश, कुछ देर कहीं विश्राम करते हैं।
15: हाँ भाई बहुत थक गए।
14: वो देख कुछ झरने जैसा दिख रहा है।
15: हाँ जल भी मिल जाएगा, चल चल चलते हैं।
14: हाँ चल भाई, यहाँ तो मंदिर है।
15: भाई मनोज आज रात यहीं ठहर जाते हैं, कल सुबह निकलेंगे।
14: हाँ बस कुछ खाने का बंदोबस्त करना होगा।
13: पार्वती झरने में स्नान कर रही थी, तभी उन्हें कुछ कदमों की आवाज आई, वो डर गई।
16: हे ईश्वर, इस समय कौन आ गया यहाँ? प्रभु को बताती हूँ, प्रभु प्रभु सुनिए प्रभु, कोई आ रहा है यहाँ।
17: अच्छा कोई बात नहीं प्रिय, आने दो।
16: उन्होंने हमें देख लिया तो?
17: तो क्या हुआ पार्वती, तुम क्यों डर रही हो? वो तुम्हें नहीं देख सकते, तुम निश्चिंत रहो।
16: अरे हाँ, मैं भी ना। देखिए तो प्रभु, कितने विचित्र है ना ये धरती के लोग।

0: मैं इनके लिए आहार का प्रबंध कर देती हूँ।
1: जाओ प्रिये।
2: सुरेश, देख तो कुछ खाने की सुगंध आ रही है।
3: हाँ रे, चल चल कर देखते।
2: अरे आहार, भाई मजा आ गया। तो
0: जरा देखिए तो कैसे टूट पड़े हैं खाने पे।
3: अरे मनोज, ये देख, भगवान की मूर्ति पर कितने सुंदर जेवर है।
2: सुरेश भाई, यहाँ आसपास कोई नहीं है, यहाँ पड़े पड़े तो जेवर खराब ही होंगे, परंतु हम इन्हें ले जाए और भेज दे तो।
3: तुम्हारी कल्पना तो बहुत अच्छी है। चलो चलो, ये ले, ये बहुत कीमती लग रहा है।
2: ये ले, ये ले, ये ले।
0: हे ईश्वर, ये क्या कर रहे हैं ये, इनमें इतना साहस।
1: रुको प्रिय।
0: ठहरो मूर्ख।
2: ये आवाज कहाँ से आ रही है?
0: ये आवाज मेरी है दुष्टो, मैं हूँ पार्वती।
3: हाँ, पार्वती,
0: तुम्हें इतना साहस कि तुमने ये पाप किया? लज्जा नहीं आती तुम्हें? महादेव की मूर्ति से जेवर चुराते हो, तुम्हें तो मैं।
4: भाग मनोज, भाग,
2: भागो भागो।
0: ठहरो दुष्पापियों, चोरी करके भागना चाहते हो? असंभव, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वही पत्थर के बन जाओगे। ये श्राप है मेरा। हे प्रभु, ये मैंने आवेश में क्या कर दिया? प्रभु, ये मनुष्य तो सच में पत्थर के बन गए हैं। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।
1: मैं समझता हूँ प्रिय, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने जो किया सही किया। यदि क्षमा की आवश्यकता है तो वो इन्हें है, किंतु इनका पाप ऐसा है जिनके लिए इन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए।
0: मैं कुछ समझी नहीं प्रभु।
1: प्रिय, जीवन के रहस्यों में एक रहस्य ये भी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में छल या बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। मनुष्य बार बार ये भूल करता है, ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देख रहा, किंतु सच यही है कि हर जीव स्वयं का आलोचक होना चाहिए, उचित अनुचित की समझ होनी चाहिए, तभी वो एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि एक ऐसे संसार की रचना हो सके जहां हर जीव स्वयं पर नियंत्रण रखकर ये सभी रहस्यों को समझ जाए, तो एक आदर्श संसार की स्थापना होगी।
5: ओए, अरे क्या हुआ श्रुति, रो क्यों रही है? अब क्या हुआ?
6: हम कहाँ फंस गए यार?
7: आई एम सॉरी, आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए। ये बताइए, आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहे हैं? बंक करके आए हैं क्या?
6: हाँ, हमने बंक किया, हम घर वालों से छुप के यहाँ आ गए थे, ये सोच के कि उन्हें पता नहीं चलेगा, और फिर ये सब।
5: श्रुति यार,
6: कुछ गलत कहा मैंने?
5: अरे नहीं यार।
7: इट्स ओके गाइस, देखो तुम्हारी उम्र में ऐसा होता रहता है, पर जैसा कि शिव ने स्टोरी में कहा कि हर इंसान को ये रियलाइज करना जरूरी होता है कि वो जो कर रहा है वो किसी से भी छुप जाए लेकिन भगवान से नहीं छुपता। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद को इस बात की समझ होनी जरूरी है कि हम सही हैं या गलत। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा तो गलत काम कर ले।
5: आप सही कह रहे थे भैया, श्रुति तो बोल ही रही थी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं ही था जो।
6: अब क्या करें, हमें पनिशमेंट मिल रही है।
7: खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आगे से खुद ही समझ रखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं।
5: हाँ भैया, मैं आपको भैया बुला सकता हूँ ना?
7: अरे आप मुझे नील बुला सकते हैं।
5: ओके नील भैया, थैंक यू।
7: चलो अब यहाँ से बाहर निकले।
5: आप निकाल सकते हैं हमें?
7: मैं नहीं, शिव निकालेंगे।
8: मंदिर में मौजूद सभी लोगों से निवेदन है कि घबराए नहीं, सरकार की तरफ से हम आपकी मदद करने आए हैं, एक एक करके आप सभी को ऊपर खींच लिया जाएगा। एक लाइन में लग जाए और अपने अपनी बारी का इंतजार करें, शोर शराबा ना करें और कोई हड़कंप ना मचाए।
5: चल श्रुति, चलिए नील भैया।
7: आप चलिए, मैं जरा अंदर जाकर आता हूँ।

0: यहाँ आकर बहुत सी यादें ताजा हो गई हैं। मैं जरा उन्हें जी कर आता हूँ।
1: अच्छा, आप कहीं दूर से आए हैं?
0: हाँ, दूर से आया हूँ और दूर तक जाना है। आप लोग सेफली घर पहुँच जाइएगा, ठीक है?
2: थैंक यू नील भैया, आपका नंबर दे दीजिए ना, या फेसबुक आईडी।
0: ना फोन है ना फेसबुक।
1: तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप सेफ हैं?
0: आप मुझसे मिलने आइए ना।
2: आपसे मिलने? कहाँ?
0: अमरनाथ।
1: क्या, अमरनाथ?
0: और अपने घर वालों के साथ आना, या फिर उन्हें इन्फॉर्म करके आ जाना।
1: हाँ, प्रॉमिस।
2: हाँ, ओके, चल श्रुति चल।
0: हर हर महादेव।
2: हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
3: हाँ बेड़ो, जब सड़क पर कोई दिखता नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, तो इधर उधर देख के सिग्नल तोड़ भी देता है, बराबर के नहीं। लेकिन तू ये भूल जाता है बेड़ो कि कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। जैसा तेरा सुख दुख, तेरे सारे दर्द, तेरे कुछ मालूम पड़ता है ना, और किसको मालूम पड़ेगा। वैसा तेरी सारी गलतियां भी तेरे को मालूम पड़ना चाहिए ना। देख बड़ू, क्या गलत क्या सही अपन को नहीं मालूम, मगर महादेव जरूर सिखा देता है। उनकी बात सुनने का बाबा शिव महाराज अपने अंदर के अच्छाइयों को जागृत करता है, अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मा को जगाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शिक्षकों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205 62112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

0: जब सपनों की हुई सदाई,
1: दिन को
0: नहीं शाम को
1: ना,
0: रात को
1: प्रभात को,
0: अरे नहीं

0: तीखा
1: नहीं, अरे मीठा मीठा
0: ना,
1: जरा जरा
0: हाँ, बड़ा बड़ा
1: अरे नहीं
0: तो फिर कैसा।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा की योजनाओं में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश। एचआईवी एड्स की जागरूकता को लेकर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। पंचायत सहयोग शिविर लगने से ग्रामीणों में हो रहा है उत्साह। अवैध हथियार के साथ दो नाबालिग युवकों को पुलिस ने पकड़ा। महिला को बंधक बनाकर लाखों की हुई चोरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में विकास योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। आज उन्होंने समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान ली गई योजनाओं समेत विभिन्न विकास योजनाओं की लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति, भूमि उपलब्धता, तकनीकी अड़चन और लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से निर्देश दिया गया कि किसी भी विकास योजना को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन 280 के लक्ष्य के विरुद्ध 259 मामलों में भूमि उपलब्ध कराने और एनओसी प्रक्रिया धीन बताई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि और एनओसी की प्रक्रिया को लंबा न खींचा जाए। संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करें ताकि भूमि के अभाव में निर्माण योजनाएं लंबित न रहे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण के लिए भी कुल 270 का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 42 केंद्रों पर कार्य शुरू हो चुके हैं और 103 पर काम शुरू करने की स्थिति है। समीक्षा के क्रम में 40 मामलों में भूमि विवाद, भूमि अनुपालन अथवा अन्य कारणों की स्थिति प्रकरण में आई। इस पर अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। जिन योजनाओं में भूमि, एनओसी, तकनीकी स्वीकृति, निविदा अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से काम नहीं हो रहा है, उन मामलों को अलग से चिन्हित कर संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ तत्काल उसका समाधान करें। समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए उसकी अद्यतन स्थिति जिला स्तर पर उपलब्ध कराने को भी निर्देश दिया गया। बैठक में भूमि उपलब्धता को विकास योजनाओं की प्रगति से सीधे जोड़ते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ वैकल्पिक भूमि की तलाश और उपलब्धता की प्रक्रिया तेजी से पूरा करें। जहाँ भूमि विवाद है वहाँ संबंधित अंचलाधिकारी और विभागीय अधिकारी समन्वय स्थापित कर समाधान की कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यों में कोई बाधा नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करें और विवादित अथवा अनुपलब्ध भूमि वाले मामलों का समाधान संबंधित अंचल स्तर पर ही कराएं। इस दौरान पदाधिकारियों और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। निर्माणाधीन योजनाओं की गुणवत्ता, कार्य की गति और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने कहा कि तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, निविदा और निर्माण के स्तर पर किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा में कुल 86 योजनाओं में 47 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 39 योजनाओं का कार्य प्रगति पर बताया गया है। कुछ योजनाएं भूमि विवाद और न्यायालयी मामलों के कारण प्रभावित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालयी विवाद मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें और जहां वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है वहां प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं। उद्देश्य यह है कि भूमि संबंधित समस्या के कारण विकास कार्य लंबे समय तक ठप न रहे। कृषि विभाग की समीक्षा में खरीफ 2026-27 के लिए 123,721.758 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 123,371.62 हेक्टेयर में अक्षादन दर्ज है, जो 99% से अधिक है। धान का अक्षादन 101.17% तथा गन्ने का 100% रहा। कृषि विभाग को विकास की इस नई गति को बनाए रखने और किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने तथा योजनाओं की लगातार निगरानी करने को भी कहा गया। एचआईवी एड्स संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज गोपालगंज के समाहरणालय परिसर से एचआईवी एड्स जागरूकता वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को एचआईवी संक्रमण से बचाव, जांच एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एचआईवी से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके साथ ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में हाई रिस्क समूह

0: इंजेक्टिंग ड्रग यूजर तथा जोखिम वाले आबादी समूहों के बीच एचआईवी से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आम जनों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आज कुचायकोट के अहियापुर पंचायत के सहयोग शिविर में अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने आम जनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय आमजन पहुंचे और विभिन्न विभागों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं एवं आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने भी शिविर में उपस्थित लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उनसे संबंधित आवेदन प्राप्त किया और उसके निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर अरार मोड़ स्थित टी ब्रेक दुकान के पास चार युवकों को अवैध हथियार और मोटरसाइकिल के साथ पकड़ने का प्रयास किया, जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस ने जैसे वहां छापेमारी की तो दो आरोपी फरार हो गए और दो युवकों को पुलिस ने बल के प्रयोग से खदेड़ कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों विधि विरुद्ध बालक हैं, इनके पास से अवैध हथियार मिली है जिसको लेकर दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपियों की पहचान को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस के तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार दोनों विधि विरुद्ध बालकों से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया है कि मयंक सिंह राजपूत अपने दोस्त सोनू श्रीवास्तव के साथ पिस्टल लेकर आया था और उक्त पिस्टल को उसकी अभिरक्षा में लिया गया तथा मोटरसाइकिल की चाबी लेकर सभी के सामने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखा गया। सोनू श्रीवास्तव के द्वारा दोनों को पिस्टल अपने पास रखने तथा बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने की बात कही गई थी। पुलिस ने दोनों विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है और एक अवैध देसी पिस्टल और दो मोबाइल फोन को जब्त कर इसमें कांड दर्ज करने के बाद अब आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पंचायत सहयोग शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं से जोड़ना तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को उनके द्वार तक पहुंचाना है। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता कम होती है और वे पंचायत स्तर पर ही अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न पंचायत शिविर में पहुंचे आम जनों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। नगर थाना के एक डेरवा पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय एक डेरवा को अब राजकीय मध्य विद्यालय एक डेरवा के भवन में शिफ्ट किया गया है। भवन की कमी के कारण स्कूल का संचालन फिलहाल सीमित कमरों में हो रहा था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय के संचालन स्थल में बदलाव का निर्देश जारी किया है। विद्यालय में करीब 301 छात्र छात्राएं नामांकित है। नए भवन में अतिरिक्त कमरों की उपलब्धता से पठन पाठन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने इसकी जानकारी दी है और उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थान को बदलते हुए छात्र हित में लिया गया शिक्षा विभाग का यह फैसला बताया है। आज जगतौली ओपी थाना क्षेत्र के तिवारी छपरा गांव में सोमवार की देर रात चोरों ने एक महिला को बंधक बनाकर 70,000 नगदी और लाखों के जेवरात लूट लिए। बताया जा रहा है कि मामला तिवारी छपरा गांव के विद्यापति उपाध्याय के घर का है। इनके घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देर रात घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। इसी बीच रात में घर के बाहर एक पेड़ के सहारे अज्ञात चोर इनके आंगन में दाखिल हो गए। चोरी की घटना को अंजाम देने लगे तभी इनके घर एक महिला की नींद खुल गई। महिला जैसे ही पहुंची तो चोरों ने महिला के गले पर चाकू रख दिया और हत्या की धमकी देते हुए उसे बंधक बना दिया और घर का नगदी जेवरात इत्यादि चोरी कर लिए और चोरी करने के बाद चोर आराम से फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एक एक बिंदुओं पर अब पुलिस अनुसंधान कर रही है। कटिया थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त के घर पर न्यायालय के निर्देश पर इश्तेहार का विधिवत तामिला किया। इस दौरान पुलिस आरोपी विनोद कुशवाहा और ब्रजेश कुशवाहा तथा दीना भगत और तीन महिलाओं के घर पहुंच गई। ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने पूरे आरोपियों के घर पर इश्तेहार को चस्पा किया और जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया, अन्यथा आगे कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये सभी आरोपी कटिया थाना क्षेत्र के राजापुर दिवलिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। लोगों की समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। मुचका गांव थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2022 में हुई एक चोरी के कांड में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त विकास ठाकुर पिता राघव ठाकुर साकिन रामपुर माधो थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी राजन यादव पिता हरे राम यादव साकिन पड़रिया थाना कटिया का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब आगे इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया और उसे भी निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। महिला सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण पहल को लेकर बिहार पुलिस के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के द्वारा जिले में पुलिस दीदी अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अभियान के अंतर्गत पुलिस दीदी की टीम के द्वारा जिले के विभिन्न स्कूल महाविद्यालय कोचिंग सेंटर शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों के आसपास नियमित रूप से गश्ती और निगरानी की जा रही है। इस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा विशेष रूप से उन स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है जहां छात्राओं और महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है। गश्ती के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से असामाजिक गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई कर सके। खेल जगत में गोपालगंज के बरौली प्रखंड के दो होनहार खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत लगन और प्रतिभा के दम पर जिले और बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रतन सराय गांव निवासी भवानी सिंह तथा रामपुर निवासी रिया सिंह का चयन वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी आगामी 16 से 20 सितंबर 2026 तक चुनचौन दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्व चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों खिलाड़ियों का भारतीय टीम का हिस्सा बनना गोपालगंज के लिए गौरव का विषय है। दोनों खिलाड़ी ताइक्वांडो फ्री स्टाइल में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में दोनों ने लगभग 4 बार पदक जीत कर अपना लोहा मनवाया है। पुलिस दीदी अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और उनके आसपास छात्राओं के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। इसके तहत विद्यालय महाविद्यालय कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी से छात्राओं में सुरक्षा की भावना को मजबूती मिलती है, साथ ही उन्हें अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष सहजता से रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। पुलिस टीम के द्वारा छात्राओं को सतर्क रहने, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के संदर्भ में भी जागरूक किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा की योजनाओं में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश। HIV एड्स की जागरूकता को लेकर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। पंचायत सहयोग शिविर लगने से ग्रामीणों में हो रहा है उत्साह। अवैध हथियार के साथ दो नाबालिग युवकों को पुलिस ने पकड़ा। महिला को बंधक बनाकर लाखों की हुई चोरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के

0: पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 97076575।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक

0: तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: मरने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
0: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जिरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
7: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है की स्थिति वहां पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए।
6: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिन्दुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबरयुक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी,
2: हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
9: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद और औरंगाबाद में कई स्थानों पर बाढ़ का संकट गहराया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार को प्रतियोगिता परीक्षा में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज चिकित्सा आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत घर घर की जाएगी लोगों की स्वास्थ्य जांच। और राज्य में सामुदायिक पुलिसिंग को प्रभावी बनाया जाएगा, पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भागलपुर में गंगा नदी का तेज कटाव चिंता बढ़ा रहा है। खरीक प्रखंड के शंकरपुर में गंगा के तेज बहाव और धारा के दबाव से कटाव की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
1: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें कटाव को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर सुरक्षात्मक कार्यों में जुटी है। वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौके पर मौजूद है और स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है। कटाव रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: बिहार में असल में गंगा में जो भागलपुर में

0: औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सोन, बटाने, पुनपुन, धावा, अदरी, मदार, केसर नदियों के बढ़ते जलस्तर और उफान के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
1: जिले में बाढ़ से बारून, कुटुम्बा, औरंगाबाद, ओबरा, रफीगंज के कई गांव प्रभावित हैं और पानी के तेज दबाव से कई जगहों पर सड़क कट गए हैं तथा यातायात प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और औरंगाबाद शहर के अदरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से माइकिंग कर घर को खाली करने की अपील की गई है। बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य को लेकर सभी सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर।
0: जहानाबाद जिले में स्थानीय नदियों में बाढ़ के कारण कई स्थानों पर संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। हालांकि वैकल्पिक मार्ग से यातायात सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: जिले के जाफरगंज, सकुराबाद और साई मंदिर स्थित तीन पुलपुलियों के ऊपर से बाढ़ का पानी प्रभावित हो रहा है। इन तीनों स्थानों पर एहतियात के तौर पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। हालांकि आवासीय क्षेत्र में पानी नहीं घुसा है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि दरधा और मोरहर नदी का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। वहीं उदेरा स्थान बैराज पर फल्गु नदी का जलस्तर भी खतरे के लाल निशान से नीचे है। नदियों के जल स्तर में कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन।
0: मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद और कैमूर जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान गया, जमुई और नवादा जिले में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है।
3: दिनांक 2 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात होने के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात होने के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया जी एवं रोहतास जिलों में अति भारी वर्षा, जबकि बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, नवादा, नालंदा एवं शेखपुरा में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद जिले के रफीगंज में सबसे अधिक 110.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार को प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञ समिति अगले 3 महीने के अंदर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपेगी। अधिसूचना के अनुसार समिति सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक सुधार की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज जांच और उपचार, चिकित्सा आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगे और जरूरी परामर्श भी देंगे। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सभी जिलों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी मौजूद रहेंगे। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सामुदायिक पुलिसिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जनता का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने सभी अपर पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को इस संबंध में निर्देश भेजा है। निर्देश में कहा गया है कि सामुदायिक पुलिसिंग की गतिविधियों के संचालन और रिकॉर्ड के लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार होंगे। प्रत्येक थाने की गतिविधियों की समीक्षा अंचल निरीक्षक या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला अपराध समीक्षा बैठक में सामुदायिक पुलिसिंग की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को आम नागरिकों से आदर पूर्वक व्यवहार करने का निर्देश भी दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम सरकार की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। न्यायालय ने नीट प्रश्न पत्र लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 3 महीने के अंदर मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इधर प्रदेश में इस मामले में दर्ज 64 प्राथमिकी को राज्य सरकार पहले ही वापस ले चुकी है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से बिहार में निवेश करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी एक्सपो 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए भविष्य की जरूरतों पर तैयार हो रहा है। मंत्री ने निवेशकों से निवेश करने के साथ ही प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आग्रह भी किया। देश भर में सबसे अधिक स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियों को भारत इलेक्ट्रिसिटी पावरिंग इंडिया अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 92 लाख से अधिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य स्कूलों के माध्यम से बच्चों, माता पिता और दादा दादी के बीच भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है। ये पहल देश भर के 200 स्कूलों में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसके तहत आधुनिक परिवारों की चुनौतियों का अध्ययन किया जाएगा और स्कूलों में 20 ऐसे खेल तैयार किए जाएंगे जिनमें तीनों पीढ़ियां साथ भाग ले सकें। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था और आधारभूत संरचनाओं की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। नर्सिंग से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में मंत्री ने मानकों की जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। साथ ही ये कमेटी स्थल निरीक्षण भी करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 2 वर्ष या इससे कम बची है उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय ऐसे शिक्षकों की सुविधा और हित को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक स्थानांतरण नीति पूरी तरह ऐच्छिक है और शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार ही आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी गई है। यह नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। अब खबरें खेल जगत से। पटना में खेली जा रही 7वीं राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में सारण जिले की टीम ने ओवरऑल विजेता का खिताब जीता है। सारण ने कुल 20 अंक हासिल किए जबकि कटिहार 13 अंकों के साथ उप विजेता रहा। राज्य स्तरीय सब जूनियर आत्यापात्या प्रतियोगिता का आयोजन 13 सितंबर से जमुई में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन 2 अक्टूबर से दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए गोपालगंज जिले के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 16 से 20 सितंबर के बीच दक्षिण कोरिया के चुनचौन में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में बरौली की 2 खिलाड़ी भवानी सिंह और रिया सिंह को भारतीय टीम में जगह दी गई है।
अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खुलेगा। दैनिक जागरण ने नीट पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, देश भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर की गई सभी FIR होगी रद्द। दैनिक भास्कर लिखता है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी, डाक से भेजी चिट्ठी। प्रभात खबर का शीर्षक है, TRE4 के लिए 21 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद और औरंगाबाद में कई स्थानों पर बाढ़ का संकट गहराया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार को प्रतियोगिता परीक्षा में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज चिकित्सा आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत घर घर की जाएगी लोगों की स्वास्थ्य जांच। और राज्य में सामुदायिक पुलिसिंग को प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हां, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते,
1: कौन? भारती मैम
2: जी।
1: अच्छा, कैसे हैं मैम?
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी।
2: क्या हो रहा है जी?
1: अभी पहचाने नहीं है क्या? लग रहा है
2: आपका आवाज ऐसे चेंज हो जाता है हमेशा, क्यों?
1: आवाज कैसे चेंज हो जाता है? ये तो घर पर आ गए है ना, तो यहाँ का पानी खा रहा है ना।
2: हाँ हाँ, इसीलिए ना थोड़ा सा चेंज लग रहा है।
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिमसापुर।
2: आपकी हंसी पहचान गए
1: और बताइए मैम।
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तब रक्षाबंधन कैसे मना?
1: रक्षाबंधन सही से मना, एकदम साड़ी ओड़ी भी दिए और ऊपर से उन लोग का 2-2 किलो चीनी भी दिए और 250 रुपया भी दिए। बताइए घर आने के बाद कितना नुकसान हुआ?
2: नुकसान क्या हुआ, अपनी बहन और क्या।
1: मैं बड़ी वाली बहन से बोले कि भाई देखो और कुछ नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, बताओ क्या चाहिए बताओ। तो बड़ी बहन बोली कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस 5 किलो चीनी दिया दो।
2: अच्छा।
1: हम बोले 5 किलो चीनी का दाम जानते हो कितना हो गया? 80 रुपया किलो के हिसाब से, वही 300-400 के आसपास हो गया। तो हंसने लगी दीदी मेरी, वो बहन बड़ी वाली, बोली कि नहीं आप लोग का प्यार है बहुत है, ये मम्मी पापा को आप लोग बस ध्यान रखिए, उतना ही बहुत है, हम लोग का पैसा उसका कुछ नहीं चाहिए।
2: तो आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी, हाथ उत भी थोड़ा सही हो गया है, सारा करवाया है जा करके सरकारी अस्पताल में।
2: वही तो पूछ रहे हैं, मतलब अब ठीक है ना? कुछ निकला तो नहीं ना?
1: नहीं कुछ निकला नहीं है, खून जम गया था ना, खून जमा हुआ है, वही डर करता है।
2: तो कुछ दिखा लीजिएगा ताकि खून वो जो जमा है वो थोड़ा ये हो जाए।
1: नहीं दवा ववा दिया है, दवा ववा मलम दिया है, बोल रहा है कि गर्म पानी से इसको धोया करो और गर्म पानी नमक से उसको डाल करके, और बाकी दवाई वाई मलम दिया है। हाँ दवाई भी खा रहे हैं, दवाई भी 4-5 दिन का दिया है। हाँ नहीं तो हम अभी तक चले गए होते। अजीत से बात कर लो वो कार्टून देखता है खूब मोबाइल में, वो नहीं बात करेगा, बहुत बदमाश है गुंडा।
2: अच्छा
1: बाबू नहीं बात करेगा,
2: थोड़ा बहुत बदमाश होना चाहिए।
1: हाँ इसका मौसी बोलती है कि इसका पापा कैसा है तो वो लड़का नहीं रहेगा। हाँ ये अपना घर गया था ना अपने मामा के घर।
2: हाँ
1: इसका 2-3 मौसी है, बहुत बहुत मजाक वजाक में।
2: हाँ तो लोगों का हक है।
1: हाँ और मौसम आज तो मौसम बहुत सुहाना है ना मैडम?
2: जी जी मौसम तो सुहाना बना हुआ है।
1: हाँ 28 तारीख को मैडम हम लोग मेला गए थे वहाँ महावीर अखाड़ा। आज गाना हमको सुनवाइएगा, मेरे महबूब का वादा निभाना होगा, यही गाना।
2: पुराना सॉन्ग है?
1: पुराना नहीं है, नए सॉन्ग है। ईशा में मेरे वादा निभाना होगा, ये गाना सबसे पहले आपको सुनवाना है, जितना रेडियो म्यूजिक सुनने वाले हैं सबको। गाना है, गाना मैंने जो हम बताए वही गाना बजाइएगा ना, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कौन सा गाना है।
2: ध्यान में आ गया है?
1: आ गया है ध्यान में, तो थोड़ा गाइएगा एक दो कड़ी।
2: एक दो कड़ी गाए?
1: हाँ गाइएगा।
2: ऐसे है मेरे महबूब जो वादा निभाना होगा।
1: हाँ ऐसा ही है, यही है सेम,
2: चाहे रोके ये जमाना।
1: हाँ यही है, यही। हाँ हाँ राइट राइट राइट, गाना एकदम मस्त है एकदम।
2: गाना तो मस्त है।
1: हाँ हमको हिंदी गाना से भोजपुरी गाना नहीं उतना वो नहीं लगता। भोजपुरी हम गाना सुनते हैं, वही खेसारी लाल का वो थोड़ा उसका बेवफाई सॉन्ग सुन लेते हैं।
2: भोजपुरी में भी होते हैं कुछ गाने जो अच्छे हैं, अच्छा लगता है कोई कोई।
1: कौन सिंह का हो गया, खेसारी लाल का हो गया वो सब सुन लेते हैं थोड़ा बहुत। और सब मोनार्मा सिस्टर आप ये सब कैसे है इन लोग?
2: ये सभी ठीक है।
1: अच्छा, और सब अलग अलग उन लोग का ड्यूटी दिया गया है ना। चलिए बढ़िया है, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आपसे बुध के दिन बात करने वाले थे हम, बुध के दिन हम ट्रेन में थे, सिवान में उतरे हम 11:30 बजे उतारा हमको लिया कर 11:30-12 बजे करीब। अब वहाँ बारिश इतना ना होने लगा कि उठने का नाम नहीं ले रहा था मैडम। फिर वहाँ से लोकल पकड़ के थावे आ गया। थावे आ करके भाई का वहाँ से थावे से बुलाया, बोला कि आ जाओ थावे आ गए स्टेशन में।
2: चलिए फिर ठीक है, आज बहुत सारी बातें हो गई है, अभी और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं।
1: ठीक है ओके मैम,
2: गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ठीक है, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आपका रेडियो रमजान 9.4 FM
1: है। जी रमजान,
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: हाँ बढ़िया है, आप सुनाइए। बारिश हो रहा है यार बनारस में? हो रहा है
0: नहीं, इधर तो नहीं हो रहा, इधर ऐसे मौसम बना हुआ है।
1: सॉन्ग सुनवा लीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा?
1: अजय मूवी का, सोनी देओल का मूवी अजय।
0: जी गाने की बोल बता दे।
1: उसमें गाना है पान खा के जाना गोरी, पान खा के जाने यही वाला।
0: जी और गाना किसी को सुनाना
1: जी? आप सभी को और जितने सेवना सभी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे।
0: ओके तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 9.4 FM।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
13: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
12: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
13: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
12: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
13: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
12: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो मैडम नमस्कार।
16: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 एफएम में।
15: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरा से। आज मैडम हमको कोई गाना ऐसा सुनाइए जिसमें प्यार शब्द न हो।
16: प्यार शब्द ना हो?
15: ना हो।
16: क्यों, क्या हो गया है?
15: हर गाने में प्यार प्यार प्यार प्यार ये सुन सुन के हम आजीज हो गए हैं।
16: अच्छा।
15: कोई ऐसा गाना सुनाइए कि जिसमें प्यार का शब्द न हो, हिंदी गाने में न।
16: ऐसा कोई गाना आपके ख्याल में है?
15: हमारे ख्याल में होता तो आपसे थोड़ी पूछे हो। आज वही दिल में जब बैठा कर रखे हैं कि आज मैडम तो कहेंगे कि ऐसा गाना सुनाइए हमको कि जिसमें प्यार का शब्द न हो, जैसे हवा पानी आग है ना, और जैसे लाइट अंधेरा ये सब है का नाम आ जाए लेकिन प्यार का नाम ना आए, ऐसा है गाना मैडम?
16: हाँ है ना, पंछी चुरमे गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं।
15: भौरे गुनगुनाते हैं, ये तो याद ही। इसे भी थोड़ा नया में तो कोई नया हिस्से में है जो प्यार शब्द नहीं हो वो सुना दीजिए, ताकि सबको आजकल नए नए गाना लोग सुनता है। ये तो गाना तो बहुत पुराना है ना।
16: गाना है पर मतलब इसमें नेचर से रिलेटेड शब्द है लेकिन प्यार शब्द नहीं है, मतलब नेचर से ही रिलेटेड है ये।
15: मैडम ऐसा है कि आपको ये गाना सुनते सुनाते या इसमें जो है रिवाइंडिंग होते होते आपका दिमाग एकदम पूरा गाना पे सेट कर गया है ना।
16: तो
15: जो जिस रास्ते में रहता है ना तो उसका गाना और उसका दिमाग जो है उसी पर खुल जाता है। बिल्कुल सही है, तो सुनाइए मैडम वही कोई गाना, हम अपने तरफ तो नहीं कहेंगे, आप ही सुनाइए जिससे प्यार शब्द न हो। और आप कैसे हैं मैडम आजकल? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी 100% नहीं, 80% है ना। चलिए 80% पर वाला चाह भगवान चाह तो वो भी 20% पूरा हो जाएगा है ना, लेकिन समय का इंतजार होना चाहिए है ना। जो सब्र करके रहता है ना उसी को फल मीठा होता है।
16: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजीत 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: भारती जी।
1: हाँ
0: जी, हम इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: खूब बढ़िया, अपना बताएं।
1: मेरा भी खुशी है।
0: ठीक है, बारिश हो रहा है?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम बढ़िया है।
0: अरे उधर नेपाल वाला बाढ़ आपकी तरफ भी आया है?
1: नहीं नहीं आया है, मतलब वो जैसे जो गंडक नदी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें पानी, अभी बाढ़ का समस्या तो नहीं आया है उतना, उसके आसपास में थोड़ा सा आया है।
0: किशनगंज ने बता रहा है।
1: उसके बस आसपास
0: है। रक्षाबंधन तो बीत गया ना?
1: जी रक्षाबंधन बीत गया।
0: तो गाना सुना दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: प्रिया मूवी का है। मैंने तुझे से प्यार किया है, इसमें मेरा खता नहीं। और सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो जी मैं सुनने वाले सभी दोस्तों को, और हम लोग सुनेंगे धनाव से रोशन तिलक में।
1: आप तो इतना अच्छा गाते हैं, फिर भी थोड़ा सा गा के सुनाते हैं।
0: अभी थोड़ा सा, अरे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ा कल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था।
1: अच्छा, हाँ मौसम बदल रहा है तो तबीयत थोड़ा बहुत इधर
0: चले गए थे, धूप में खेत में दवा छिटने था, थोड़ा छिटवाना था, अब हम ही अपने छिटने लगे, बहुत धूप गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत गर्मी लग रहा था। 24 घंटा पंखा ही में रहते हैं।
1: ये तो है।
0: चलिए तो फिर यार बहुत चोट चलेगा ना?
1: हाँ देखिए,
0: ठीक है।
1: गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी जी बताए ना, जितने में सभी को, आपको भी और हम लोग चुनाव से रोशन चिल्वर में सुनेंगे सब लोग।
1: अच्छा जी जी जी, बिल्कुल। तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
6: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम
6: में। मैं तेजी पर नाम
11: ऐसी।
6: तबियत कैसा है?
11: ठीक है,
6: चली थी ना
11: चली
6: तो कौन है की आज हमारे लोग ना कोई कोई अपना बार कह के छोड़ देनी रही हूँ कहीं तो सारे 12 बजे के बाद करे ऐसे 12 बजे चलोता 12 बजे चलोता
11: फॉलो करते हैं तो थोड़ा बातें हो जाता है।
6: तो वही हुए बात पर ना दोस्तों का हमारे वो फरमाइश हुआ आज भोजपुरी के रही हमारे फेवरेट सिंगर रहे खुशबू सिंह उनकर गाना बा जे करे से लब कैलू करे से परेशानी बा जासन में करम सोहरो लागे खानदानी बा ये बजा दे
11: और गाना
6: सुनाए के बा रविरा पहला नंबर तो रविरा सुन ले मनोरमा मैम आजकल थोड़ा गुस्से में है वो सुन ले हम ओके सोनी मैम के हुए हाल बा सोनी मैम सुन ले यहाँ रहे मोजा हमारा नाम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से चलिए तो हमारे फरमाइश पूरा करें
11: गाना प्ले करता नहीं सुनत रहे रेडियो
6: चलिए ठीक है सुना इंतजार
12: की धोखा में

0: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4।
1: मैं हैदराबाद कर रही हूँ, सूरत से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है,
1: बढ़िया रहना चाहिए।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बैठे के बैठ के कॉल लगा रहे थे। कितना दिन से सोच रहे थे कॉल लगाने के लिए, लेकिन कभी भूल जा रही थी तो कभी टाइम ही नहीं निकल जा रहा था कॉल का।
0: कोई बात नहीं।
1: हाँ, आज सोचे आज भी टाइम निकल जाता, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, थोड़ा बहुत
0: टाइम है अभी, आधा घंटा।
1: हाँ, तो सोचे कि आज लगा ही लेते हैं।
0: अभी तो तबीयत ठीक है आपकी?
1: तबीयत खराब था, अभी फिलहाल थोड़ा ठीक ठाक है।
0: अच्छा, क्या हो गया था? बुखार?
1: नहीं, वो बुखार नहीं था।
0: अच्छा, नहीं तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सॉन्ग सुना दीजिए, भोजपुरी सॉन्ग।
0: गाने की बोल
1: रहा, गाने का बोल है ससुई की बोली है जहर लागे, शिल्पी राज की आवाज में। और सुनवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को, आपको, हीना जी है, सफाक है, सलेहा है, ब्यूटी परवीन है, रुबीना नाज है, रुखसार जी है, और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, समीर भाई और बाकी जितने जाने पहचानने वाले हैं उन सभी लिस्टर को।
0: जी, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: नमस्ते। हेलो,
13: हाँ बोलिए,
14: क्या हाल है?
13: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपका तबीयत सही नहीं है?
13: ठीक है,
14: क्योंकि शो नहीं चल पाया,
13: बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए।
14: देख लगा कि आप छुट्टी ले लिए हैं।
13: नहीं चलेगा, नहीं
14: आज तो चलेगा,
13: नहीं चलेगा।
14: मनोरमा जी कहाँ पे?
13: यहीं पे है।
14: परसों बताइए मौसम का, गोपालगंज से कैसा मौसम है?
13: गोपालगंज का मौसम अभी ठीक है।
14: तो गाना सुनना है मेरे को,
13: बता दीजिए।
14: कौन सिंह के बारे में बता दीजिए, बेवफाई सॉन्ग
13: गाने की बोल बता दीजिए।
14: कौन सिंह के बारे में बेवफाई सॉन्ग को ही बता दीजिए।
13: और गाना सुनाना भी है किसी को?
14: डेडिकेट है आपको, मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को और करिश्मा को और जितना रेडियो सुन रहा है सभी लोग को।
13: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
14: ठीक है, नमस्ते।
13: नमस्ते।

0: हेलो, मैं गोपिया से बोल रहा हूँ, गोपालगंज बस्तीला।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
0: हाँ, हमको गाना सुनना है।
1: जी बोलिए।
0: हमको हम बस्तीला गोपालगंज से बोल रहे हैं।
1: हाँ हाँ, नाम बता दीजिएगा अपना।
0: जोगिंदर बाबा
1: जी, कैसे हैं आप?
0: जी
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है हाल चाल बाबू, ठीक है हमारा।
1: अच्छा जी,
0: हमारा हाल चाल ठीक है। एक तो गाना सुनना चाहते हैं हम।
1: बता दीजिए।
0: वो कौन? गौतम गोविंदा फिल्म का शायद गाना है। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। ठीक है,
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: अरे गाना जब बजेगा तो सबको ही सुनेगा, आप भी सुनेंगी।
1: जी बिल्कुल जी,
0: ठीक है बाबू।
1: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो ओरिजिनल 90.4 FM।
0: ठीक है ठीक।
2: एक ऋतु आए एक

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रहे हैं।
11: वेलकम, नमस्ते मैडम।
12: हाँ
11: बोले मैडम, अरविंद कुमार त्रिवेणी का पोल से बात।
12: जी
11: उधर का मौसम कैसे है मैडम? आज
12: मौसम अभी सुहाना बना हुआ है।
11: बोले मैडम, एक सॉन्ग का फरमाइश रहेगा मेरा आज। हिंदी सॉन्ग है, राधा तो बना है श्याम का।
12: हाँ,
11: और डेडिकेट रहेगा जितने लाइव दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए और आपके लिए भी।
12: और गाना किसी को सुनाना भी है?
11: जी, जितने लाइव दोस्त हैं सभी के लिए।
12: अच्छा, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
11: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जादूपुर से
0: आपका नाम
1: कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: मुझे कोई सा गाना सुनवा दीजिए।
1: रक्षाबंधन का?
0: जी
1: हाँ रक्षाबंधन। चलिए और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सबसे पहले आपको और सबको जितना भाई बहन सुनने वाला है रिलीजन पर सबको सुनवाना चाहती हूँ।
1: जी
0: कैसी है आप?
1: मैं तो
0: ज्यादा दिन से कॉल लगा
1: नहीं, बस यही थोड़ा काम में बिजी है ना सबको।
0: हाँ हाँ बहुत से पहले नहीं लग रहा है, कितना ट्राई किया, बंद बता रहा था। हाँ अब तो शुरुआत हो गया तो अब तो लग ही नहीं गया, खुश हो कॉल लगा कर। बहुत जल्द लगे बताइए की
1: ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। गाना प्ले करें?
0: हाँ सही है मैम। बाय
1: बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434403।
9: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
13: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
12: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
13: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
13: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
13: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
18: गुड मॉर्निंग, भारती में बोल रहे हैं क्या?
17: जी गुड मॉर्निंग।
18: कहाँ थी आप इतना दिन से?
17: जी हम तो यहीं पे थे।
18: अभी आप तो दर्शन ही नहीं दे रही थी।
17: नहीं नहीं, इधर ही हम भी थे, बस ये काम अभी किसी को मिला हुआ था करने को।
18: जी जी जी जी, मैंने एक गाना सुनना था।
17: बता दीजिए।
18: एक तो लगता ही नहीं, बहुत ट्राई करे, 12-13 बार ट्राई किए तब लगा। पता ही नहीं क्या, बहुत बिजी बिजी, हर समय बिजी बता रहा था।
17: कॉल काफी आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये वाला कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब कोई बातें कर रहे हैं।
18: तो उधर का मौसम कैसा है मैम, गोपालगंज का?
17: गोपालगंज का मौसम तो अभी
18: बारिश हो रही है?
17: नहीं बारिश नहीं, कभी धूप कभी छाव।
18: कभी धूप कभी छाव। हाँ, इधर का भी मौसम उसी तरह है, सुबह में तो बारिश हुई थी। मैंने गाना सुना दीजिए। ये गाना है हाथी मेरे मेरे साथी का नफरत की दुनिया छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना या
17: सुनवाना।
18: बस पहले तो हम अपने ये श्रोतागण को सुनाना चाहते हैं और उसके बाद अपनी वाइफ को सुनाना चाहते हैं। बस ये कब तक बच जाएगा मैम?
17: आपको आज ही सुनने को मिल जाएगा।
18: आपको तो लगता है उम्मीद कम है, 4-5 दिन बाद मिलेगा सुनने को।
17: आज नहीं तो कल बिल्कुल मिल जाएगा।
18: देखिए अब आप करेक्ट बोले, अभी तो बोल रहे थे कि आज शाम में सुनने को मिल जाएगा।
17: नहीं मतलब जैसे कि आपका तो कॉल लाइन में है कि बच जाएगा, पर ये अभी और कॉल रिकॉर्ड करना है।
18: आज और कल में,
17: आज और कल में बिल्कुल सुनने को मिल जाएगा।
18: क्योंकि हम 2-3 बार ट्राई किए, कभी नहीं आज कल हो पाया मैम। 4-5 दिन के बाद आता है नंबर मेरा।
17: नहीं नहीं इस बार आपका आज या कल बच जाएगा।
18: ठीक है मैम, थैंक यू।
17: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
18: थैंक यू मैम।
17: वेलकम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
0: जी क्या हालचाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। तो अभी तो इंतजार खत्म हो गए मैम, फोन कर दिए।
0: जी जी, तो आप बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: जी गाने का बोल है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ। और सुनवाएंगे कितने रेडियो दोस्ती लोग सुनते, सारी दोस्तों के पास सुनना चाहते हैं।
0: जी और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: और सबसे पहले आपको कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के पास सुनना चाहते हैं।
0: ओके, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: करता हूँ।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-21 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
9: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
10: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
11: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
10: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
15: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
16: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
16: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
15: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
16: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
16: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
15: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
19: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
17: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
17: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो,
20: नमस्ते मैम।
19: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
20: हम से बोलते हैं रामाजी प्रसाद
19: जी, का हाल चल बा?
20: हाल चाल ठीक बा, दिन ठंडा भर बा लेकिन गर्मी बा।
19: अच्छा,
20: और गाना सुना बा?
19: बता दी कौन सा?
20: मेला में सैया फुलाइल हमार, अब का करी हो राम, अब का करी।
19: हमारी गाना क्यों के सुना के बा?
20: जितना रेडियो सुनता सब कोई के धना से जाना बारे हमार बार नाम लेते बहन तो अपना बन हम लेट उनका के
19: गाना चले प्ले कर तनी।
20: नमस्ते
19: जी। नमस्ते, रेडियो रंग से मैं कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: भारती जी, आपका भी रेडियो रंजन में स्वागत है। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और कैसे हैं आप?
0: ठीक ही हैं।
1: ठीक हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक ही हैं, इसका मतलब ठीक नहीं है?
0: हाँ तो मतलब ठीक है।
1: चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। जबकि बारिश वरिश नहीं हो रहा है क्या?
0: नहीं, बारिश तो नहीं आ रहा है, बस तो मौसम बना हुआ है।
1: बारिश वरिश करवाइए, मौसम बन रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, बताइए। हम लोग इधर बेसब्री से इंतजार करते हैं, भारती जी की आवाज सुनने को भी नहीं मिलता। पर आप लोगों ने उसका कॉन्टेक्ट भी नहीं खिलाई और ऊर्जा में भी नहीं आई। हम लोग तो सड़स के रह गए।
0: जी जी, तो थोड़ा तबीयत खराब था ना।
1: कहते हैं कि थोड़ा सेहत पर ध्यान दीजिए। खाली
0: नहीं, वो थोड़ा आजकल मतलब पर्व वगैरह था ना, मम्मी तो कुछ करती नहीं है, उनसे नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। अकेले तो कभी कभी हो जाता है ऐसे।
1: चलिए, ये भी देखना जरूरी है। फिर मैंने कहा कि जब ये कॉन्टेस्ट वाला नहीं हुआ था, भारती जी आज लगता है छुट्टी पे है, नहीं
0: आई। बिना सर को बताया हम लोग छुट्टी पे कभी नहीं जाते।
1: कोई बात नहीं, तो माँ जी का भी ध्यान रखिए और सबसे पहले अपना भी ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, कल नहीं आई तो, लेकिन सेहत आई तो ला गई। क्यों, सेहत सही रहेगा तो स्वस्थ इंसान रहेगा, तो हम लोग को भी आवाज सुनने को मिलेगा।
2: बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है ना। नाश्ता उसका पानी करके आई है कि नहीं? आज
0: नहीं, नाश्ता पानी तो करके आते हैं, इससे कहाँ हटने वाले हैं।
2: सेहत पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम लोग को आवाज देते रहिए, ताकि हम लोग जो है इसी में हम लोग आपको आवाज के लिए बेसब्री से इंतजार करते
0: हैं।
1: इसलिए तो कहते हैं कि दुआ दुआ करते हैं आपके लिए हम, हर पल हर दिन आपके लिए लाए हसीन पल। वो खूबसूरत आपका ये जो रहे ये गाना है,
0: बता दीजिए।
1: उस आई फिलहाल की रात का है या दिल का है? मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल खो गया।
0: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको सुनवाएंगे।
0: जी जी,
1: और साथ में आवाज जो आ रही है आपके मनोरमा जी हैं, उनको भी सुनाएंगे।
0: जी,
1: और जितने तमाम श्रोतागण इस रेडियो को शाम प्रोग्राम सुनेंगे उन सभी का ये गाना डेडिकेट है। लेकिन आपसे बात करके बहुत आ जाएंगे, आपकी आवाज सुनने को मिलेगा हम लोगों को।
0: जी जी,
1: थोड़ा बहुत आपके प्रोग्राम सुना, उसके बाद नहाया धोया और जाके निकला। थोड़ा टाइम दे देते हैं हम भी कंप्यूटर पे।

0: अपना देखते रहते हैं।
1: अच्छा, देखना ही चाहिए थोड़ा बहुत,
0: इसलिए कि हर चीज का सुविधा है, कोई ऐसा चीज ऊपर वाले कमी नहीं दिए हैं। बाकी जो है भेजूंगा वीडियो, देखिएगा, आइएगा प्रोग्राम में। तो
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो नमस्कार, और भी लाइन में लगे होंगे
1: जी,
0: तो रखते हैं, आपका दिन शुभ हो
1: जी। तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे समय 9:43 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने पसंद के गाने फरमा सकते हैं और फरमाना चाहते हैं तो अभी जल्द से जल्द टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे, ताकि आपकी फरमाइश आपके पास जल्द पहुंचाई जाए, आपको सुनाई जाए। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ इस शो से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी जुड़े हुए हैं और विलेज सव्या फील्ड से, तो आप बन रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं सुरभि जिला गोपालगंज बिहार नवादा से, और मुझे सॉन्ग सुनना है ये दोस्ती तेरे दम से है, आपको सुनाना है और भारती मैम मनोरमा मैम प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे में से पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हम भी हैं, गाना सुनना है, सुना सकते हैं आप? बिल्कुल, यदि आपका फरमाइश पहुंचता है तो हम क्यों नहीं सुनाएंगे, हमारा कार्य यही है कि आप लोगों की फरमाइशों को सुनाएं। इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम नहीं बताए हुए, तो अपना परिचय के साथ अपने गाने की भी फरमाइश करें, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, सुनम जी से निवेदन है कि मेरा भी गाना सुना दीजिए। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपने नाम जो बता रहे हैं जिनसे आप निवेदन कर रहे हैं, तो सोनम जी नहीं, सोनू मेरा नाम हुआ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सोनू जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हैं हमारे साथ। आपकी भी लाइन जो भी है एक बार देखने के बाद आपको सुनाई जाएगी, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और सुरभि जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे ये दोस्ती तेरे दम से है।

0: रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं हम सब। कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और यदि आप भी सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश करते हैं। लिखे हुए कि सुनो भाई, मैं ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और मुझे एक गाना सुनना है। गाने का बोल है, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। इस गाने को मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो देख ले, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो प्ले वन सॉन्ग सर। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, लेकिन आप कौन अपना परिचय दे। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हम भी जुड़ गए हैं सोनू बाबू पर लेट। चलिए भाई, अच्छा लगा कि आपकी दोस्ती एक के दूसरे के दम से है, यही दोस्ती का फर्ज है। अगर ऐसा है तो शुक्रिया। वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया लोकसल नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। कार्यक्रम भी लेट से स्टार्ट हुआ है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है, जितना हो सकेगा मेरा जो समय निर्धारित है उतना। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग। तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करें, और इस मैसेज को किए हुए हैं सिद्धार्थ जी, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कल ही आपकी फरमाइश हम पूरी किए थे, सो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यह बहुत कम समय का कार्यक्रम है। सप्ताह में एक ही बार मौका मिलता है गाने फरमाने का, तो आपकी बारी समाप्त हो चुकी है। फिलहाल आगे कई श्रोतागढ़ इंतज़ार में लगे हुए हैं, जो कल छूट गए थे उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी आज। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रिज बिहारी जी की फरमाइश को हम प्ले करते हैं, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछिम 94.4 एफएम पे।
1: सुपरहिट गाने इस

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और महेंद्र कपूर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में इस गाने को सुन रहे हैं आप सब। और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, आगे कई गाने की फरमाइश और श्रोतागढ़ की मैसेज रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप सबकी फरमाइश पूरा करने का मेरा प्रयास है। आगे बढ़े, यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है अजय जी के द्वारा गणेश स्थान माझा से। और गाने की फरमाइश करते हैं कुरुक्षेत्र मूवी से, इश्क भी क्या चीज़ है, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं गोपालगंज से हूँ और अभी सूरत में आपका रेडियो सुन रहा हूँ, पवन सिंह का कोई भी गाना सुना दो। तो बिल्कुल आपका फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा, लेकिन आप कौन है अपना नाम बताएं, परिचय दें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। फिलहाल यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत अच्छा सॉन्ग दूल्हे का फुल फिल्म क्या ये सॉन्ग, आशा महेंद्र कपूर जी ने गाए, 1962 की लगता है। और यहाँ पे मैसेज किए हुए हैं, लिखते हैं कि थैंक्स मैसेज किए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आप कैसे हैं, तो बिल्कुल अभी फ़िलहाल ठीक हूँ और आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309 या 9765655750।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: रेडियो रेमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और कुरुक्षेत्र मूवी से कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे, और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो सर, मेरा नाम श्वेता है और मैं दंगसी से हूँ, मुझे गाना सुनना है रब ने बनाया मुझे तेरे लिए। एक और मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को की है निशा शुक्लवा से, और इनके तरफ से लिखा गया है कि कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए इस गाने को हम प्ले करते हैं, आपको डेडिकेट करते हैं हम, आप इंजॉय करें रेडियो MCM 94.4 FM पे गाने, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है चतुर जी के तरफ से, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं पवन सिंह का आवाज़ में कोई भी, तो कोई भी सॉन्ग सुनाएंगे और पुराने गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनावले बाड़े, प्रतिज्ञा मूवी से फिल्मी गाने हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज देखने के बाद से आगे गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स सर, चलिए आपको धन्यवाद ही रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माजा से प्यारा सा सॉन्ग सुनाने के लिए सोनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे भी सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे कार्यक्रमों से। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कोई बात नहीं भैया, इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम तो पूरी कर ही चुके हैं कल की, जिसकी वजह से आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। केवल हम ही सुनेंगे तो दूसरा कब सुनेगा, थोड़ा सा समझना है। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: रेडियो रिमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में, पुराने सॉन्ग प्रतिज्ञा मूवी से, भगवान बड़ी तोहरा के फुर्सत से बनवले वाले। भगवान ने तो सबको फुर्सत से बनाए हैं, सबको ही प्यारे हैं और गाने भी प्यारे। आगे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज लिखा गया कि 20 रुपये का नोट मिला, उस पर लिखा था, तो आप ऐसे ऐसे लाइन लिखते हैं कि थोड़ा शामिल करने में भी हम लोगों को दिक्कत होती है, सोचना पड़ता है। तो चलिए इतना ही तक रहने दीजिए। अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हेलो भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है। सुपर गाना बा भाई। सविता चौहान भू छपरा से मैसेज किया, बिल्कुल सुपर गाने। अगले मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं अनिल कुमार नवादा से, और मुझे गाना सुनना है, और गाने का बोल देते हैं जब तक रहेंगे समोसे में आलू। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। कह रहे हैं कि मैं पहली बार इस रेडियो को सुन रहा हूँ और गाने की भी फरमाइश किया हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। जिला नवादा से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो आप जब सुनना चाहें तब सुन सकते हैं, बसरते गाने की फरमाइश एक ही बार कर सकते हैं सप्ताह में इस कार्यक्रम। तो आगे अब अगले सप्ताह आपकी बारी आएगी। जो भी श्रोतागण एक बार सुन लेते हैं, उनकी बारी सप्ताह में एक बार अगले सप्ताह आती है, फिर अगले सप्ताह सुनने के बाद से उसके अगले सप्ताह, यानी माह में 4 बार मौका मिलता है गाने सुनने को। कभी कभार ऐसा होता है सीट खाली रहती है, तो गाने की फरमाइश 2 बार पूरी हो सकती है, बशर्ते सीट खाली होने के बाद। वैसे तो कभी सीट खाली होते नहीं है, श्रोताओं की फरमाइश लगी रहती है। जब खाली होती है तो बताई भी जाती, तो आप जब सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम आज यहीं तक रहेगा और आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और जो भी श्रोतागण आगे छूट जा रहे हैं तो नाराज नहीं होना है। समय जो है आप लोगों को इस दिए गए समय से थोड़े आगे हैं, तो आज बस इतना ही। सुनते रहें आप सब रेडियो रमछिम 90.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी जब तक हमसे जुड़ते हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और गाने की बोल है दिल डूबा और सिंगर है श्रेया घोषाल और सोनू निगम। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी आप लोग सुन रहे थे मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थे दिल डूबा। और आप ज़रूर मुझे बताएं आप सभी को गाना कैसा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास हमारे काफ़ी सारे लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास लिख रहे हैं, रेडियो रिमझिम के सभी साथियों और भारती मैम को मेरा स्नेह नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल कुशल मंगल और ठीक होंगे। आप सभी का कार्यक्रम बेहद खास लगता है तो मेरी ओर से भी एक प्यारा सा गाना ज़रूर बजा दीजिएगा। और दिलीप शर्मा पठरा टोला से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और कृष्णा शर्मा अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं शक्ति सिंह जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, भूकेंद्र कुमार कुशवाहा दुबई से रहने वाले हैं और बंजारी के, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से कुछ प्यारी सी लाइन पहुंची हुई है, लिख रहे हैं, भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था, कुछ किस्मत की मेहरबानी कुछ हमारा

हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना नहीं था, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेंद्र जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती दी का हाल बा, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे जो कि मेरे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग शिल्पी राज का सुना दीजिएगा, और रत्नेश सिंह जुड़े हुए हैं मर्दापुर से और गाना सुनना चाहते हैं, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है केहू ताकि तो गर्दा मचा दे। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तचानी काटत रहा का।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम? तो मेरा तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गणेश कुमार जी लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग भोजपुरी गाने से शुरुआत हुई है और गाना काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास जो कि लिख रहे हैं कि निजामुद्दीन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, हेलो मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास, लिख रहे हैं, हेलो हाय भारती मैम, और हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी मैसेज को मैंने शामिल कर लिया है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और हम हूँ आवेली, और उत्तम सोनी हरपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम भी जुड़ गए हैं, और सिद्धार्थ पासवान बरौली गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लंदन से जुड़ चुके हैं राम कुमार पांडे जी और लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, और मेरा

मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं, नमस्ते, मेरा नाम अरविंद यादव है और मुझे गाना सुनना है। और फिल्म से गाने के बोल हैं, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। और फिल्म है मोहरा, और सुनाना चाहता हूँ आपको और आपके सभी मित्रों को। और मोहम्मद हाफिज, मुमताज, नानकू, विक्रम, जितेंद्र, पप्पू को, तो आप सभी का भी स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे अरविंद यादव जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और गाने की बोल थी ना कजरे की धार। और इसी के साथ यहाँ अरविंद जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है, जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, अपने सभी दोस्तों के साथ सुन रहा हूँ। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि भारती जी हम भी आ गए हैं आपके पास, दिल से प्रणाम आपको और मेरा भी हाजिरी लगा देना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग भाई, और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं हाउ आर यू, और शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद यूपी 21 से जुड़े हुए हैं और लाइन पहुँच हुए हैं इनकी तरफ से, जो कि लिख रहे हैं धोखा ना देना कि तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है, तेरी सूरत ना दिखे तो दिखाई कुछ नहीं देता, हर हम क्या करें कि तुझसे हमें प्यार बहुत है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं शमशाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे जो कि मेरे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्कार गुड आफ्टरनून, आदाब भारती मैम, हम सब भी शो से जुड़ गए हैं और हम सबकी भी हाजिरी लगा दीजिए, रायपुर छत्तीसगढ़ से नारायण नंदिनी अनामिका अवंतिका आशुतोष आरुषी और रौनक बाबू, हमें भी आपके इस कार्यक्रम का टाइटल सॉन्ग ही सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, हम रवि तिवारी दिल्ली से, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती मैम जी, आज छठ पूजा की पावन पर्व की शुभकामनाएं न्यायपारा विरही जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, और बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर और सरोज भाई ठाकुर, इसरा राज, पप्पू ठाकुर, प्राची ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी, और आपको भी शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिए। तो जी आपकी भी बारी आएगी तो आपके भी गाने को प्ले करूँगी, उससे पहले जो कि यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और सत्येंद्र कुमार इराक से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं और देखते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: गुड मॉर्निंग, में मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं करबला रिफाइनरी प्रोजेक्ट इराक से बोल रहा हूँ। मैम मुझे गाना सुनना है, इस तरह आशिकी का अक्षर छोड़ जाऊँगा, तेरे चेहरे पे नजर छोड़ जाऊँगा, प्लीज मैम गाना सुना दीजिए। ये गाना आपको और जितने रिमझिम सुनने वाले दर्शक है सभी को सुनवाना चाहता हूँ, और भी हमारे मित्र है जिनका नाम सुग्रीव कुमार पार, शैलेश कुमार, मुन्ना ठाकुर, संजीव पांडे, प्लीज मैं गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए इनका गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल सीरी में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो के घड़ी में 12:34 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिलीप शर्मा, पटरा टोला से जुड़े हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुँची हुई इनकी तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, मैं तुझे और तुम मुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं, माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगली मैसेज पहुँची हुई है और लिख रहे हैं हम नौशाद मोबाइल, विक्रमगंज रोहतास बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं संजय यादव जी की, आज अच्छा सॉन्ग बाजता मैम और नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून मैम, केम छो, तो मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं, और नाइस सॉन्ग, और लिख रहे हैं वाओ। और इसी के साथ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है यहाँ पे, जो कि लिख रहे हैं मुकिंदर कुमार कुशवाहा जी, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, और आप सभी को एक और बात बता दूं कि अभी हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर जिसको भी रिकॉर्डिंग करानी है वो करा सकते हैं। और हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग 1 बजे तक चलेगी आज, और हमारी आरजे मनोरमा जी रिकॉर्ड कर रही हैं। और यहाँ पे जो कि मुकिंदर जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
9: हेलो मैम, मैं मुकिंदर कुमार कुशवाहा बंजारी से दुबई से सुन रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझर में पंछी बन के छुप जाते हैं, ये सुना दीजिए।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे मुकेंद्र जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ मुकेंद्र जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आँखों में क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर। और लिख रहे हैं थैंक यू सो मच भारती जी मेरा गाना प्ले की। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा नाम जितेंद्र जयश्वार है और मैं महाराष्ट्र उल्लासनगर से हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती मैम नमस्कार, हम भी एक गाना सुनना चाहते हैं और दिलीप जी दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि घर वालों के अलावा बाहर में एक कंपनी वाले ही हैं जो चाहते हैं कि आपकी तबीयत खराब ना हो। और मैसेज करने वाले हैं, नाम तो मुझे नहीं

0: पता, आप अपना नाम जरूर बता दें। और काफ़ी लाइन अच्छी है और लिख रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सरे वार्ड नंबर 1 से गुड आफ्टरनून सभी के सभी को बोल दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से सभी के पास मैसेज पहुंच चुके हैं और लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मुझे गाना सुनना है। और अजय अयोध्या से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, दिलीप राम दिल्ली से जुड़े हैं, लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, और हम भी शो से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास धनेश जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि हमसे एक वादा करो, हमें रुलाओगे नहीं, हम हालत जो भी हो कभी हमें भुलाओगे नहीं, अपनी आँखों में छुपा कर रखोगे हमको और फिर किसी को दिखाओगे नहीं। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है दिनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, मैं पप्पू कुमार साहब बोल रहा हूँ, पड़रौना पड़रिया से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं?
0: जी हम सब भी ठीक हैं।
1: जी हमें लगता है कि सभी श्रोता भी सब लोग अच्छे होंगे।
0: जी जी, तो आप बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: जी मैम, गाना हमको सुना दीजिए, आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत से क्या चीज होती है यार, और सुनाना चाहते हैं सन्यासी रंजन बाबा हैं, सन सोनी जी हैं, कमरान जी हैं, इरफान भी या दुबई से हैं, और जितने भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी सुनेंगे।
0: ओके जी, तो आपका गाना प्ले कर दिए हैं।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: ओके, तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जय हिंद जय जोहर भारती जी, मैं न्यायपारा विरई

0: चौवा है जो कि लिख रहे हैं। नमस्कार मैडम जी, हम जितेंद्र शिवान जिला से, और हमें भी गाना सुनना है, प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, और हमारे भी फरमाइश चलवा दीजिएगा और धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, बहुत सुकून मिलता है जब उनसे हमारी बात होती है, वो हजारों रातों में वो एक रात होती है, जब निगाहें उठाकर देखते हैं वो मेरी तरफ, तब वो ही पल मेरे लिए पूरी कायनात होती है। और मनोरमा जी के लिए तो बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुंची है मनोरमा जी के लिए धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं, नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुंचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस और गाना भी प्ले करते हैं साथ में।
1: मैं नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से, भारती मैम, आप लोग पुराना श्रोताओं को गाना नहीं चलाते हैं, नए श्रोताओं को गाना चलाते हैं, इसीलिए आज के बाद अब आपको टाइम नहीं देंगे, आज भर बजाना होगा तो बजा दीजिएगा, नहीं तो फिर भी मत बजाइएगा। पिछले हफ्ता भी मेरा गाना नहीं बजा था, पिछला हफ्ता में भी मैसेज किए थे तो मेरा गाना नहीं बजा था, अगर आज बजाना है तो बजाइएगा, नहीं तो फिर हम रेडियो रिमझिम के सुनना ही बंद कर दूंगा।
0: और काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि नए लिसनर को यहाँ लिया जाता है, पुराने लिसनर जो हैं वो हमारे काफ़ी प्रिय लिसनर हैं, उनको कैसे हम लोग भूल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके गाने को प्ले नहीं किया जाता है, और यहाँ पे आपका गाना मंगलवार को बजा था, तो मंगलवार के दिन मैं नहीं थी और छुट्टी पे थी, इसीलिए मंगलवार को मैं गाना नहीं प्ले की थी। और यहाँ पे जो कि आपकी तरफ से आज गाने की फरमाइश पहुँच हुई है तो मैं प्ले कर दूँगी। और यहाँ पे गाने की फरमाइश जो कि पहुँच हुई है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, और यहाँ साजन साजन गाने की बोल पहुँच हुई है अलका याग्नि और कुमार सानू की आवाज़ में। तो चलिए आपका गाना आज प्ले करते हैं बिना देरी किए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

हम लोग नौसाद जी की तरफ से सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी साजन साजन और मूवी नेम है दिल का रिश्ता और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। और यहाँ इनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं विक्रमगंज और कर्नाटक के जितने लड़के हैं सभी लोग को गाना पसंद है

और लिख रहे हैं कि गाना पसंद आ गया और कि आज गाना बज गया है, सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। और लिख रहे हैं कि अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने हमारे पास कस्टमर हैं सभी को अगर नंबर दे दे के मैसेज कराऊं तो रोज़ मुझे गाना सुनने को मिल जाएगा, और विक्रमगंज और कर्नाटक के लिए बाकी हम सभी को मना करते हैं कि एक ही आदमी मैसेज करे और सब लोग गाना सुनेंगे। तो जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ही करूं, मंगलवार को आपका गाना नहीं प्ले कर पाई क्योंकि मंगलवार को तो मैं खुद ही हाजिर नहीं थी और इसीलिए आपके गाने को प्ले नहीं कर सकी थी। और जितने भी मंगलवार के जो जुड़े हुए थे हमारे श्रोता, वो अपना अपना गाना कुछ लोग सुन चुके हैं, बस आप ही बचे हुए हैं और एक दो जन बचे हुए हैं वो भी सुन लेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि तुमसे बिछड़ के अब कहाँ जाऊँ मैं, हाले दिल किसे बताऊँ, और मैं किस कदर टूटा है दिल किसको दिखाऊं मैं। और लिख रहे हैं पंकज भैया को नमस्कार और उनके सुंदरता के मूरत को नमस्कार, दिलीप राम दिल्ली से। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं जन्माष्टमी आते ही वो भी राधा बनने का नाटक करेंगी, जिनका कहना हर महीने में बदल जाता है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्ते मैम, हम भी शो से जुड़ गए हैं इजरा नवादा से और मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से, लिख रहे हैं काहे भारती जी नौसाद भाई के नाराज कर रही हैं आप लोग, तो ऐसी बात नहीं है, किसी को नाराज नहीं किया जाता है और सभी के गाने की फरमाइश को पूरा किया जाता है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है पंकज जी की तरफ से, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ मैसेज जो कि पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है और दिलीप शर्मा पठरा टोला से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल इनकी तरफ से पहुंची हुई है और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। और गाने की बोल है मन के सवरिया बन गईला। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि यदि आप YouTube, Facebook और Twitter पर विजिट करते हैं तो रेडियो रिमझिम के गोपालगंज, रेडियो रिमझिम से गोपालगंज के हालचाल को सुन सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जितना दूर से देखोगे लोग उतना अच्छा लगेंगे। और काफ़ी मीनिंगफुल लाइन पहुंची हुई है यहाँ। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो भारती जी, मैं भी जुड़ गया हूँ और विक्रम चौहान जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती मैम जी, मंगलवार को आप नहीं थे मगर मेरा फरमाइश पूरा हो चुका है। और न्याय पारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर। तो जी मैं बता दूं आपको कि मैं इस मंगलवार को तो आई थी, तो आपके गाने की फरमाइश तो ज़रूर पूरा होगा। और मैं पिछले मंगलवार को नहीं थी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग, थैंक यू शर्मा जी फरमाइश के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, सुपर सॉन्ग, गजब के रोग धरा दिए। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र सिवान से। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं, आंखें तुम्हारी हो और आंसू हमारे हो, दिल तुम्हारा हो और धड़कन हमारी हो, खुदा करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो कि सांसें तुम्हारी रुके और मौत हमारी हो। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है दिलीप शर्मा जी की तरफ से। और लिख रहे हैं, मेरा गाना बजाने के लिए भारती मैम और रेडियो रिमझिम का दिल से धन्यवाद। और जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं, शरीर में 70% पानी होता है, कायदे से देखा जाए तो हम लोग मोटे नहीं हैं, बस बाढ़ ग्रस्त है, और जो लोग पतले हैं वो सूखा ग्रस्त हैं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई है निजामुद्दीन जी की तरफ से, और लिख रहे हैं, मेरा सॉन्ग बजा दीजिए। तो जी चलिए आपका सॉन्ग प्ले करते हैं। और गाने की बोल है पैसे की पहचान यहाँ, और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में गाना है। तो गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 पॉइंट।

अभी हम सभी सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल पैसे की पहचान थी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि यादें उनसे पूछो जो यादें क्या करते हैं, यादों के सहारे जिंदगी बिता लिया करते हैं। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र जी सिवान से, और काफ़ी मीनिंगफुल लाइन यहाँ पहुँची हुई है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास, लिख रहे हैं कि आप तो हमारी केवल शायरी ही शामिल करती हैं और आपका प्रोग्राम सुनने का मतलब है 4 घंटे फ़ोन हाथ में रहना। और मैं आपको बता दूं, और हमारे सारे लिसनर जितने भी सुन रहे होंगे उन लोग को भी पता होगा, शमशाद अली जी, मैंने आपका गाना गुरुवार को प्ले किया था और फिर से आपका गाना गुरुवार को ही प्ले होगा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारा, जो कि लिख रहे हैं कि शाम का ढलना भी कितना हसीन होता है और जब दिल में सुकून और आंखों में गुरूर होता है, किसी और जैसा बनने की ख्वाहिश नहीं हमें, हमारा अपना अंदाज ही सबसे बेमिसाल होता है। और नमस्ते भारती जी, नमस्कार डियर भारती जी, प्यार भरा नमस्कार है, तब क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। और मेरे तरफ से कुछ खास लिसनर निशा भारती ओजवलिया से, रुखसार खातून, आयशा खातून, सुगुफ्ता फिरदौस, शिल्पी सुधा भारती और हजरा खातून और अनिल भाई को प्यार भरा नमस्कार, सलाम एंड नमस्कार बोलिएगा याद से। तो जी आपकी तरफ से सबको नमस्कार बोल दी हूँ। और लिख रहा है मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी यूएई दुबई से जुड़ा हूँ। और लिख रहे हैं कि नज़रों में ख्वाब रखती हो मगर पलकों को मलाल रहता है, हासिल जो ना हो सका बस उसी का ख्याल रहता है, तस्वीर तो हंसती हुई बना ली जमाने के सामने पर इस टूटे हुए दिल का आखिरी क्या हाल रहता है। और काफ़ी बढ़िया लाइन पहुंची हुई है इरफान जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि मेरे दिल की आरजू है कि हम तुम्हें देखा करें, बस तुम ही तुम नज़र आओ हम जिधर भी देखा करें। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं इजरा नवादा से, और मुझे गाना सुनना है और गाना सुनाना चाहते हैं श्याम सुंदर जी, निकेश जी, मिथिलेश जी, अखिलेश जी, दिनेश जी और सभी दोस्तों को रेडियो रिमझिम को सुनाना है। और गाने की बोल है लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंकों से, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी, आपकी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ लिख रहे हैं कि मैडम जी ठीक बानी नो? तो जी बिल्कुल हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि आज मेरा गाना बजेगा क्या? तो जी नहीं, आपका गाना मैंने प्ले कर दिया है मंगलवार को ही, और इसीलिए मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती दोबारा। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है करिश्मा कुमारी जी की तरफ से, जो कि लिख रही हैं का हाल बात? जी मेरा हाल ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंच गया है, कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो लेते हैं कॉल। हेलो,
10: नमस्ते मैम।
9: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: आप खाओ से बोल रहे हैं रमेश प्रसाद?
9: हाँ जी, का हाल चल बर? और
10: हाल चाल ठीक बा, हवा बहुत तेज बा था। तो गाना सुना दी?
9: बता दी,
10: चलते मुसाफिर के मोहलिया रे सिंगरे वाली मुनिया।
9: चलते मुसाफिर
10: वाली मुनिया।
9: और गाना क्यों भी सुना हूँ के बा?
10: अगल बगल जितना लोग सब कोई सुने, हम सुने, हम रेवा सुने।
9: अच्छा जी, तो गाना और प्ले करते नहीं, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: नमस्ते।
9: नमस्ते।

बैठी पनवड़िया दो कनिया आ रे बीड़ा के सब रस ले ली।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, चलते मुसाफिर ने मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, और मैसेज करने वाले थे रामा जी थावे से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि जब छोटे थे तो घर वालों बोलते थे कि मेला देखने मत जाओ, खो जाओगे। अब बड़े हो गए हैं तो कहते हैं मेला तो बच्चे देखने जाते हैं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ फिर से जुड़े हैं सन्यासी रंजन जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम जी टिफ़िन लाए हैं कि नहीं, अगर नहीं लाए हैं तो मैं भिजवा दूँ क्या। और मैसेज करने वाले हैं न्यायपारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर। तो जी हम लंच लेके आते हैं, और लंच करना है तो 2:15 के बाद ही करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि प्रणाम दी, कैसी हो, ठीक हैं सभी दोस्त, कैसे हैं, ठीक है। और सुपर गाना चल रहा है दी, सविता चौहान बोझ छपरा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अरुण यादव जी व्हाट्सएप कॉल ना करें, और व्हाट्सएप पे मैं कॉल नहीं ले सकती। और यहाँ पे जो कि अगर आपको वॉइस भी भेजना है तो आप 30 सेकंड का भेजें या फिर 35 सेकंड का, और मैं 6 सेकंड में क्या ही सुन पाऊँगी और क्या ही बता पाऊँगी किसी को कि आपने क्या भेजा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली मुरादाबाद यूपी 21 से जुड़े हैं, और लिख रहे हैं कि टूटा हुआ आईना कभी जोड़ा है किसी ने, मोहब्बत में सहारा देकर छोड़ा है किसी ने, इतने सुकून से सुन रहे हो मेरी शायरी, यकीन के साथ कर कहता हूँ तुम्हारा दिल भी तोड़ा है किसी ने। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं शमशाद जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि चांद में दाग है ये तो सब जानते हैं, पर तुझ में कोई कमी नहीं, यकीन ना हो तो आईना देख ले। और मुझसे ज़्यादा तो वो तेरा दीवाना है, बातें तेरी शहद जैसी, मिजाज नवाब जैसा है, तुझे सोचूं तो सवर जाऊं तू किसी ख्वाब जैसा है। और काफ़ी बढ़िया लाइन पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं यह शायरी सुना दीजिएगा सभी को। तो जी आपकी तरफ से आपकी शायरी शामिल हो चुकी है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं विक्रम चौहान जी कि मुझे गाना सुनना है और मुझे भी गाना सुना दीजिए। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि गाने की बोल है थम के बरस जरा थम के बरस, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज से मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद सदाम जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मोहम्मद निसार और मोहम्मद रिजवान और अभिनंदन टेलर भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं कि

एक तो वह वही बात हो गया कि रात को पापा जो आज नहीं खाएंगे उसका 10 रुपया दूंगा और सुबह जो 10 रुपया देंगे उसका उसको खाना दूंगा। और लिख रहे हैं कि सुन तो मैं भी रहा हूँ शमशाद जी दिल से, पर अभी तक मेरा दिल ना तोड़ा है किसी ने। और मैसेज करने वाले हैं पंकज जी और लिख रहे हैं भारती मैम नोट कर लीजिए आपकी शादी वाले वीडियो ये गाना फिक्स है। और चलिए आपकी तरफ से जब भी होगी मेरी शादी आपके लिए गाना फिक्स करते हैं, और अभी तो होने वाली नहीं है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि अली यूपी 21 लिख रहा है कि दिल सोच रहा है कि किसी को परेशान करूं लेकिन ये पता नहीं चल रहा तुम्हारे सिवा कि सुकून से जी कौन रहा है। और ऐसा लग रहा है कोई नहीं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहा है उमेश चंद्रा पांडे बेंगलोर से, और गाने की बोल पहुँची हुई है गंगा किनारे मुरगांव रे, और सुना दीजिए आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर लगता है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। बस उससे पहले यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं यूँ तो महफिल में मिलने वाले बहुत मिल जाते हैं पर हर हाथ मिलाने वाले अपना पुराना दोस्त नहीं होता है, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा भी नंबर लगा दीजिए मैम, बहुत दिन से यह गाना सुनने की कोशिश कर रहा हूँ सुन नहीं पा रहा हूँ, तो जी बिल्कुल आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और सुनी जी जब होस्ट करती थी तो मैं फरमाइश की थी लेकिन उन्होंने मेरे गाने को नहीं पूरा किया, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप पूरा कर देंगी। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है तो आपको गाने की वो सुनवाएंगे, पर उससे पहले जो कि यहाँ हमारे पास एक गाना पहुँचा हुआ है उसे प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जितेंद्र जयसवार जी की तरफ से, और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और गाना सुनना चाहते हैं भोजपुरी मूवी का बलम बिहार वाला, तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग वलमा बिहार वाला, और इसी के साथ पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शीशा और दिल दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, शीशा गलती से टूट जाता है और दिल गलत फहमी से। और मैसेज करने वाले हैं इरफान जी, और लिख रहे हैं बाय बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो डेफिनेटली, तो आपको भी बाय बाय। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप शर्मा जी, और लिख रहे हैं आपके लिए मैडम जी, तो आपके लिए आप दिल से धन्यवाद। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, और मेरा नाम प्रमोद, हिम वर्मा है और झारखंड से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और न्यू लिसनर हूँ, मुझे भी गाना सुनना है, कितना मुश्किल गाने की बोल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी गाना सुनाया जाएगा, पर उससे पहले यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास। लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, गोविंद कुमार जालंधर पंजाब से जुड़ा हूँ, और आपका सोनी मैडम जी, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं चंदन कुमार गुरमाहा से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी गाना प्ले किया जाएगा, पर उससे पहले जो कि यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं हेलो भारती मैम नमस्कार, हम भी एक गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं जेठ महीना के दिन दोपहरिया, और मूवी घर गृहस्थी का सॉन्ग।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी, प्रदीप कुमार, गुरमहा नौका टोला। गुड़ी पासे बोल रहे हैं और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं शमशाद अली मुरादाबाद से कि मेरी गलती को माफ कौन करेगा, मेरे पापा का हिसाब कौन करेगा, हे भगवान मेरे इस प्यारे दोस्त को सलामत रखना, वरना मेरी शादी में नागिन डांस कौन करेगा। और स्पेशल फ्रॉम दीपक भाई। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है न्यायपारा विरई, प्रमोद कुमार साहू और लीला साहू और अपने बहन को गाना सुनाना चाहते हैं, और खिलेश्वरी साहू और विमलेश्वरी साहू साथ में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और इनकी तरफ से गाने की जो कि बोल पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि गाने की बोल है, तुम्हारी नजरें क्यों खफा हो गईं दो कलियां। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और न्याय पारा विरई से लीला साहू, प्रमोद कुमार साहू मैसेज कर रहे हैं, और इन्जॉय कीजिए तब अपने गाने को।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे फिर दोपहर न्यूज़ के बाद होगी। और जिनके भी गाने की फरमाइश मैंने पूरी नहीं की है दोपहर गाने के बाद दोपहर समाचार के बाद उनके गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। तब तक आप सभी इंजॉय करते रहिए इस गाने को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। राष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति स्थिति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमरीका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सीबीहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्वाव शियोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
5: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाशय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले तीन दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
6: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले तीन दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले तीन दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहिंग और तोनिचा साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त हारसे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी आपकी आवाज़ बहुत मीठी है और पहली बार इतनी आवाज़ मैसेज सुन रहा हूँ। और

मैसेज करने वाले हैं शत्रुधन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं सत्यम जी। ओहो, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, और मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हम भी गाने की फरमाइश कर सकते हैं और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं इसरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से बोल रहा हूँ। अगर जाने अनजाने में मैसेज गलती से भी लिख जाता है कुछ, तो उसके लिए हमें माफ़ी चाहते हैं। और मैम कल हमारी फरमाइश पूरी हो गई है, ठीक है, एक फरमाइश और करना था मुझे, गाना अगर बज सके तो हमारा फरमाइश बजा दीजिएगा। फिल्म का नाम पहुंचा हुआ है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी गलतियां तो सभी से होती हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से निरहुआ कुमार गाना सुनना चाहते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप राम जी की भारती जी खाना खा लिए आप? तो जी बिल्कुल, मैंने खाना खा लिया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं केरला से मोहम्मद जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है दिल लेके दिल दिया जाता है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष पासवान जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और इन्जॉय किया जाए रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

अभी और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्ते, मोतिहारी से एमडी मीनू गाना सुनना चाहते हैं, गाना सुनवा दीजिएगा। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है चंदन कुमार जी की तरफ से, जो कि गुरमहा से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग चंदन कुमार जी की तरफ से, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना था, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं दिलीप जी की, धोखा दिया था जब तूने मुझे जिंदगी से, मैं नाराज था सोचा कि दिल से तुझे निकाल दूँ, मगर कमबख्त दिल भी तेरे ही पास था। ओहो, और काफ़ी बढ़िया लाइन है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, अगर मिले प्यार में बेवफाई तो गम ना करना, आंखें अपनी किसी के लिए नम ना करना, करने दो लाख नफरतें उसे तुमसे, पर तुम अपना प्यार कभी कम ना कर, उसके लिए कम ना करना। और भारती जी, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, सुपर सॉन्ग दिलीप राम। और लिख रहा है कि कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ने पर यारों ने साथ छोड़ा, वादा किया सितारों ने साथ निभाने का, सुबह होते ही सितारों ने भी साथ छोड़ा। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ फिर से जुड़े हुए हैं दिलीप जी, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है भारती जी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, और मेरा भी सॉन्ग आज बजा दीजिएगा। और गाने की बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैंने आपसे कहा था आपके गाने की फरमाइश को मैं फ्राइडे को पूरा करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाओ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और हमारे साथ यहाँ सानिया सैफी जी भी जुड़ चुकी हैं और लिख रही हैं, अस्सलामुअलैकुम, हम भी जुड़ चुके हैं और क्या खैरियत है जी आपका और आपके पूरे टीम का। तो जी हम सब ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं। और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस नोट के माध्यम से, तो इनके भी गाने को प्ले करेंगे। पर उससे पहले यहाँ मेरे पास गाने की जो कि फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मुझे गाना सुनना था, सुना दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं लड्डू बाबू, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और गाने राजा हिंदुस्तानी मूवी का है, और गाने के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं इनके लिए और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। और हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से, और लिख रहे हैं कि किशोर सावलिनिया, सावित्री सावलिनिया और सुमन सावलिनिया बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि रिमझिम के सारे स्टाफ को किशोर सावलिनिया परिवार की तरफ से नमस्कार जी। तो आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है कि जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई ज़िंदगी भर के लिए। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, सभी को मेरा नमस्ते। यूपी के बनारस से अनिल कुमार जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि उसकी चाहत से इनकार ना करते, उसकी कसमों का एतबार ना करते, अगर पता होता हम सिर्फ मजाक हैं, उसके लिए कसम से जान दे देते पर प्यार ना करते। और परदेसी परदेसी जाना नहीं, निक गाना बा भारती जी। और मैसेज पहुंचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है हम भी फरमाइश में और यहाँ भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा और गाना सुनवाना चाहते हैं। दोस्तों का नाम भी पहुँचा हुआ है और जुड़े हुए हैं जिला बलरामपुर से नान बाबू, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
6: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते,
6: क्या हाल है?
2: मेरा तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: हाँ ठीक बनी।
2: करिश्मा जी कौन सा गाना सुने के बाद बता दी
6: गाना सुने के बाद तनी देखल करी हमारा के काम जी न तो हो जाई प्यारे वाला जी
2: बड़ा सुने के मन करता जी
6: गीतिया अच्छा लगता है ऐसे
2: अच्छा जी तो चलिए रवा खाती गाना के हम प्ले कर देते हैं एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में
6: जी

अभी हम लोग करिश्मा जी की तरफ से सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा सॉन्ग तनी देखल करी हमरा के कम जी न तो हो जाई प्यार ए बलम जी। और गाना काफी खूबसूरत ही था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत खूब अच्छा लग रहा है भारती जी, करिश्मी जी का फरमाइश गाना बहुत अच्छा लगा है, इसी तरह बजाते रहिए। मैं सऊदी अरब से निजामुद्दीन, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, क्या मैडम जी हमारा गाना नहीं बजेगा, और कितना दिन पर मैसेज करना है वो मुझे बता दीजिए। और भारती मैम मिथिलेश चौहान जी बोल रहा हूँ, और मुझे गाना बहुत अच्छा, और ये गाना भी बहुत अच्छा है, और पूछना चाहता हूँ आपसे मेरा डेट नहीं पता है मुझे, और क्या अभी गाना बजाने को मुझे बताइए। तो जी आप अपना गाना फ्राइडे को सुन लीजिएगा, और आपको गाना फ्राइडे को ही बजाऊंगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है करिश्मा का सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा, और बहुत अच्छा गाना है और सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और रोहित यूपी 36 अमेठी जिला उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पंकज जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नीक गाना बा, और लिख रहे हैं कि सारा दोष अखिया के बा चश्मा लगावे की बोली। और थोड़ी बहुत बात आपकी सही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए उत्तम सोनी जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रवि जी की चुटकुला पहुँचा हुआ है इनकी तरफ से, लिख रहे हैं गधा मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है, कुत्ता तुम भाग क्यों नहीं जाते, गधा मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो वो कहता है कि तेरी शादी गधे से करा दूंगा, बस इसी उम्मीद में टिका हूँ। और काफ़ी मज़ेदार चुटकुला के साथ जुड़े हैं रवि जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि धनेश जी की तरफ से लिख रहे हैं कि इनकी तरफ से भी मज़ेदार जोक्स पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं वाइफ अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूँ तो आप मुझे क्या दोगे, हस्बैंड पगली इसमें पूछने वाली क्या बात है, धक्का। और यहाँ पे मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और मेरा नाम अजय है, और मैं अयोध्या से जुड़ा हूँ, और मुझे भी गाना सुना दीजिए। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है, और काफ़ी खूबसूरत गाना है, और लिख रहे हैं बहुत दिन से ये गाना सुनना है मुझे, सुनने की कोशिश कर रहा हूँ सुन नहीं पा रहा हूँ, और हमारे यहाँ पूरा सावन तो बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। और लिख रहे हैं कि गाने की बोल है धीरे धीरे बीत गई आहुरे सवनवा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:31 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर बात में आंसू बहाया नहीं करते, दिल की बात हर किसी को बताया नहीं करते, लोग मुट्ठी में नमक ले के घूमते हैं, दिल के जख्म हर किसी को दिखाया नहीं करते, और आंख लड़ने से प्यार होता है हो जाता है। सुपर सॉन्ग करिश्मा जी का, और मैसेज करने वाले हैं दिलीप जी, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैडम जी नमस्कार, मेरे को फ्राइडे समझ में नहीं आता है, और साफ साफ बताइए मुझे कौन सा दिन, बताइए शनिवार या सोमवार या इतवार और मंगलवार, ये बताइए मुझे, पढ़ना लिखना, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मोबाइल से बोलता हूँ तो वो लिख कर जाता है। तो जी, मैं आपको बता दूँ कि आपका गाना शुक्रवार को बजेगा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि पंकज जी खूब नीक गाना बा, और यहाँ हमारे पास सानिया जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस क्या है, इनकी फरमाइश।
9: हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया सैफी चखसना से, और आज के सुबह मुझे भी गाना सुनना है तो सुना दीजिएगा। और कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताइएगा। और गाने की बोल है

0: डेडिकेट है अरे तमाम श्रोताओं को, थैंक यू।
1: और काफ़ी खूबसूरत वॉइस के साथ मैसेज पहुंचा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे सानिया सैफी जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में और गाने की बोल थी हमको हमी से चुरा लो। और यहाँ सानिया सैफी जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रही हैं कि शुक्रिया दिल से गाना प्ले करने के लिए, और लिख रही हैं कि मैगी बनाने की उम्र में पूरा खानदान का खाना बना डालती हूँ, और कहीं मैं बहू मटेरियल तो नहीं। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़ी हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ना वक्त तो इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना तकदीर कोई कि एग्ज़ाम पास किया जाए, ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, सच्चा प्यार करने वाला ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, और वो काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है सानिया सैफी जी का, नौसाद लालगंज से जुड़े हैं और लिख रहे हैं भारती मैम हमरो गनवा बजा दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि जी मैडम जी थैंक यू नमस्कार, इसके लिए धन्यवाद जो आपने मुझे बताया, और पूरा रेडियो रिमझिम को सुनने वाला कभी नमस्कार, इतना काम करते हैं रेडियो रिमझिम में, सबको नमस्कार है। तो आपको भी हम लोगों की तरफ से नमस्कार है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रोहित यूपी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है लिंक के माध्यम से, और गाना है नज़र में तुम जिगर में तुम, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो बिना देरी के गाना प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आशिक पागल हो जाता है प्यार में, बाकी कसर पूरी हो जाती है इंतजार में, मगर ये दिलरुबा नहीं समझती, वो तो गोलगप्पे और पापड़ी खाती फिरती है बाजार में। और लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, सानिया सैफी जी का सुपर सॉन्ग और बाय बाय दोस्तों को आपका दिलीप राम दिल्ली से, तो आपको भी बाय बाय। और यहाँ हमारे पास बाय बाय के मैसेज पहुँच रहे हैं और टाइम भी हो ही चुका है, और इरशाद मास्टर जी की तरफ से भी बाय बाय के मैसेज पहुँच चुके हैं। और यहाँ लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी और उदेश कुमार चौहान गोविंद को, और गाना सुना दीजिएगा पवन सिंह की आवाज़ में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं सोनी जी क्या हाल है आपका, कैसी हैं जी, और हमें भी हम भी जुड़ गए हैं दुबई से, और मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है और दुबई से सुन रहा हूँ, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, लिंक भेज रहा हूँ। और लिख रहे हैं मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं लो, और मुन्ना रंजीत रजाक कार्तिक, और हेलो सोनी जी मेरा भी नंबर लगा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपकी गाने की बारी आ चुकी है और आपका भी नंबर लग चुका है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे। और गाना है होई प्यार ना दोबारा नीलकमल की आवाज में। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रंजिम 90.4 FM में।
6: बिना मिले तेरा हाल कैसा,

0: अभी हम लोग गाना सुन रहे थे विकास कुमार चौधरी जी की तरफ से, काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग नीलकमल की आवाज़ में, हुई प्यार ना दोबारा हो। और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले की। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पंकज जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं वाह इतना लोटा लोटा सुने वाला गाना बा जियो हो। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती जी जाते जाते गुड इवनिंग राधे राधे न्यायपारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, बाय बाय भारती जी फिर मिलेंगे कल। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, मुझे भी गाना सुनना है और निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आज आपका गाना तो प्ले नहीं कर सकती, कल गाना मैं प्ले कर दूँगी। और काफ़ी समय पूरा समाप्ति की ओर है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जाते जाते मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, मैं हजरा सूरत से जुड़ी हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं कि तबीयत मेरी ख़राब होती है, याद मुझे मेरी माँ आती है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी तकलीफ़ को कभी नाटक नहीं समझा। और आपकी बात तो बिल्कुल सही है, माँ कभी नाटक नहीं समझती किसी भी बात को। और यहाँ पंकज जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मैम मज़ा आया और फिर मिलेंगे आपसे, टेक केयर और सभी को बाय बाय। और यहाँ हमारे पास जो कि आखिरी फरमाइश पहुँची हुई है, इसको प्ले करते हुए आप सभी से लूँगी विदा। और यहाँ पे वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए प्ले करते हैं।
1: हाय हेलो, मैं एमटी महमूद केरला से, आज मुझे भी एक गाने के फरमाइश है। और गाने का बोल है, मतलबी है लोग यहाँ पे मतलबी बेगाना। और डेडिकेट रेडियो रिमझिम पूरी टीम को और उनके साथ साथ लालगंज बजाजी रोड अभिनंदन टेलर के पूरी टीम को और रेडियो रिमझिम की जितने भी निस्लर हैं सुनने वाले सभी को।
0: तो चलिए इनके तरफ से गाने को प्ले करते हुए विदा लेते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सब सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग और बाय बाय।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तब भौजी, आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

अवस्था होला। वह अवस्था में दो चार कदम ठीक से चलल भी मुश्किल हो जाला। आँख से कुछ दिखाई ना देला, कान से ठीक से ना सुनाला, मुंह के दांत टूट जाला। ई अवस्था से हर आदमी के गुजरे के पड़ेला।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
10: तू जो है।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

जो फरा सो झरा जो जरा सो बुताना। समय क्योंकि छोड़ले नहीं के भैया, जे भी आयल बा ओकरा एक दिन जाए के पड़ल बा, के कैसे गइल बा ई मालूम नहीं खे। आई समय के फेर में कैसे समय धके दबोचता, सुनिए कहानी में।

0: प्रति।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: तू जो है,
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
5: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
6: हेलो
7: जी, नमस्ते।
6: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: थैंक यू, मैं अनिल बोल रहा हूँ सिवान से, छोटपुर से।
6: जी जी, क्या हाल चाल है अनिल जी?
7: बढ़िया है, अपना बताइए।
6: जी मेरा भी बढ़िया है।
7: चलिए, अच्छा सा ही काम है। और एक चीज, आपको जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं।
6: जी जी, और आपको भी।
7: जी, और बताइए।
6: जी सब बढ़िया है, सब क्या हो रहा है?
7: अभी काम पे हूँ, सोचा फोन कर लूँ, तो फोन मिलाया तो लग गया, 4-5 बार ट्राई किए हैं उसी में लग गया।
6: वैसे क्या करते हैं?
7: हम मेडिसिन शॉप पे काम करते हैं। जी, साथ में आपका रेडियो बहुत सुनते रहते हैं क्योंकि नजर छिपा कर सुनना पड़ता है ना। मान कर चलिए कि ऑनर साहब सुनेंगे या देखेंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको लगेगा कि बस ये गाना सुन रहा है या मोबाइल चला रहा है, तो इसलिए सब देख के चलना पड़ता है। बट रेडियो का इतना लगाव है कि हम छोड़ते नहीं है, हर चीज सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुनबे करते हैं।
6: अच्छा जी, चलिए बढ़िया, फिर आपकी फरमाइश बता दीजिए।
7: गाना हमको सुना दीजिएगा आशिकी फिल्म से, सांसों को जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक कलम चाहिए, यही वाला।
6: ओके, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
7: पहले आपको और आशीष सोनी जी को और मनोरमा जी को, सोनू सर को, प्रमुख भाई को, इरफान भाई को, थाने से रामा जी भैया को, खेड़ा से भोला भैया को, और सारिया वार्ड नंबर तो याद नहीं है, आमद अली जुड़ते हैं उनको, और बाकी जितने लोग छूट रहे हैं सभी को।
6: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: जी थैंक यू।
6: जी सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो जी,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया।
1: क्या हो रहा है वैसे?
0: कुछ नहीं, आप लोग से बातें हो रही हैं।
1: सब तो बढ़िया है।
0: जी, सब बढ़िया है।
1: नमस्ते, चल रही है।
0: और आपका हुआ?
1: हम तो सोए हुए थे।
0: अच्छा रे,
1: अभी गेम आप आए तो लगा
0: ले। वैसे आपका नाम?
1: सुरभि कुमारी।
0: अच्छा जी, तो सुरभि जी आपकी तबीयत सही तो है ना?
1: जी सही है।
0: अच्छा,
1: आप कैसी है? आपका भी ठीक तबीयत खराब ना?
0: मुझे पहचान नहीं है आप।
1: जी
0: अच्छा,
1: मनोरमा मैम।
0: जी जी
1: सही ना?
0: हाँ
1: सच में।
0: सच में कैसे पहचान गई?
1: आपका आवाज थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है आज।
0: अच्छा जी,
1: अच्छा जी बोलती है ना, इसी से पहचान है आपकी।
0: अच्छा, मतलब आवाज पता चलता है।
1: अच्छा जी बोलती है। पता है बहुत दिन से आप कॉल भी नहीं लगा रहे थे।
0: क्यों?
1: आप नहीं आ रहे थे इसलिए।
0: नहीं, इससे पहले भाती भी रिकॉर्ड कर रही थी।
1: और कितने दिन के बाद तो आपसे बात हो रहा है?
0: जी जी, आज बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं।
1: बहुत आती थी लेकिन बात नहीं होता था। मैं कॉल आपके लिए लगाती थी।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: बता
0: दीजिए।
1: आई लव यू लव मी।
0: जी
1: गाना क्या बोल है? गाना आई लव यू लव मी।
0: अच्छा, क्या गा के बता सकती है मुझे दो लाइन?
1: दूसरा गाना गा सकती है? नहीं।
0: अच्छा तो दूसरा ही गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए ही गा दीजिए।
1: कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है तुमसे। अब ये प्यार न होगा मेरे दम से। हेलो
0: जी
1: मैम,
0: आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे।
1: सही लग रही है? तो बहुत आपसे बात करके मेरा तबीयत सही हो गया है।
0: अच्छा जी, ये बात है। सब तो हम आपसे डेली बात करेंगे ताकि आपका तबीयत हमेशा सही रहे।
1: और हम भी डेली कॉल करेंगे ताकि आपसे बात हो।
0: जी जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है
0: जी। और आपकी दीदी ठीक है?
1: हाँ मेरी दीदी ठीक है।
0: और घर में बाकी लोग भी कैसा है? लोग
1: सब कोई, मम्मी पापा भैया सब कोई अच्छे हैं।
0: चलिए बढ़िया।
1: आपके फैमिली में सब कोई है ना?
0: यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया
1: है।
0: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू
0: जी। आपसे तो बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन अभी दूसरा कॉल आ रहा है तो उन लोगों को भी तो देखना पड़ेगा।
1: हाँ ये तो जरूरी है ना, वहाँ कर रहे आपकी।
0: जी
1: ठीक है मैम, प्ले कर दीजिए।
0: ठीक है, तो गाना डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: आप भारती मैम को, सोनू सर को और डायरेक्टर सर और मेरे पूरे फैमिली को, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
0: ओके, तो सुरभि जी प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है मैम, थैंक यू।
0: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे, ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो, नमस्ते।
11: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
12: मैं लाल बाबू
11: जी। जी, कैसे हैं आप?
12: ठीक है, अपना बताइए। बारिश हो रहा है कि नहीं?
11: बारिश नहीं हो रही है, मौसम बना हुआ है।
12: चलिए ठीक है। एक शिकायत है आपके।
11: जी,
12: तो 3 बार कॉल लगाए थे, 12 बजे वाला भी शुरू चलता है।
11: जी जी,
12: उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फिल्म का नाम है आपका जीगर।
11: जी
12: जीगर, जीगर
11: और गाने के बोल
12: आए हम बराती बराती। आए हम बराती बारात लेके।
11: ओके सर, गाना डेडिकेट भी है
12: और सुजी है, गुड़िया है, सूरज, रंजीत और आप हैं अर्गती।
11: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: नमस्ते।
11: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। जी बढ़िया बा, अपन बताओ जाओ। ठीक है, के काम बा वैसे का होता अभी?
0: बस रहो, इंतजार होता की बात करे की ना आज।
1: चलो बात कीजिए। ठीक बानी, अपन बताई।
0: हम ठीक है, बात बताए खराब चलता।
1: हाँ वो तो बा, मौसम की वजह से
0: बुखार तो दवाई खा रहा हूँ, तो फिर भी ना खासी बुखार आ जाए। कहाँ कहाँ तुम जीरो से बातें चल रही हो?
1: ए जी का करी, भारती जी की अभी रिकॉर्डिंग चलो कर ला तो यहाँ के कर रही हूँ।
0: बहुत दिन से इंतजार कर दिन करो नहीं किया, बात में उनको अपनी बानी हूँ के काम करता नहीं।
1: चलिए आज बात हो गई, वैसे रोज से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके।
0: अच्छा जी। ये बात तो हम कहे रहे हैं कि मैम से बात करके ठीक लगे, मैम से बातें नहीं हो जल्दी।
1: चलिए आज
0: भैया, आज बहुत दिन बाद बात भाई, तब नाश्ता तो पहले बन गई।
1: हाँ भाई लहरा
0: नाश्ता तो हो गएगा।
1: बढ़िया
0: के बाद
1: वैसे
0: का उतर लगे? अब जाओ सुबह थोड़ा मैं हल्का ला ला, तो खाना बैठे नहीं है, लेकर आ जाएगी स्कूल। चावल खाली बनाओ कर ला, सब्जी रोटी बना लो, नीचे खाली चावल बनाए तो खाई लो।
1: चलिए ठीक है बा, सबके बढ़िया बा। तो आज की फरमाइश बता दी।
0: आज की फरमाइश बता देते, हम भूलते कह रहे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
1: कई दो लाइन गा के बता सकते नहीं?
0: गा तो लेकिन तबियत सही निकला।
1: अरे आवाज ठीक आवाज सुना दी, हम खुश हो जाए आवाज सुन के।

0: नहीं भूले,
1: सुना नहीं?
2: बड़ा निमन गावे नहीं लेकिन।
1: हाँ निमन गावे नहीं।
2: हम जब भी रघुआ से बात करे नी, हम गाना के फरमाइश जब रघुआ करे नी ना, तो हम गवाइये के माने पूछे
1: नी। सब लोग हंसी लिख के बकलो लगे गावत तो ना।
2: ना ना केहू नहीं के बोल सकत ऐसा, जेकर आवाज अच्छा लो ओकरे से गावा नहीं सुनने के।
1: तो चलो चलो ठीक बन रहा।
2: ठीक बा
1: मैम का कर चलाओ तुम तो।
2: वहाँ के अपन काम में लगल बनी।
1: हाँ कल हम फोन कहीं को आले फोन कहीं, लेकिन फोन तो ना उठाई। मैं तो हमको फोन उठाई थी, बड़ा चीनी में दाम मिले थे ऑनलाइन। हम बैठाई रहे
2: तो मिलवे की ना,
1: फोन ना उठाई ना मिली कहाँ से। अब तो लेट हो गया, लेट हो गया तो लेट हो ही ना।
2: अच्छा कॉल जाए की फिर लेके आये हम की हमने तो जुटल नहीं।
1: हाँ कॉल के बाद से हम जुटा थे तो चीनी में दाम मिला रहे। पाँच रंजन जी जब जुड़े नहीं तो हंसी अलग दूल्हे नहीं है। अगला हफ्ता अगला बुधवार को सुनेंगे कहा था कि फिल्म में लोग पकड़ाला तो प्यार हो जाला। हम पकड़ाई रहनी तो गाड़ी सुनने के मिले।
2: हाँ खूब सारी लिखे नहीं लोग।
1: हाँ हम सोचे मोरो फोन दिनो ना लगे। हम सोचे की फोन लागे तो कहते की गलत जगह पकड़ा गए लोग, वैसे गाड़ी सुनने के मिले। फिल्म में तो सब जगह पकड़ा जी
2: सब का वैसे नामो ना बतानी अपन
1: रेस्पा बोलते नहीं उसे ठान लगती से।
2: ना ना हम तो जानते बहन, लेकिन आगे वाला लोग के भी तो पता चले वैसे पूछे पड़ेगा। ठीक बार इसमा जी तो प्ले करते नहीं गाना।
1: ठीक है मैडम
2: जी, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: Now pick your phone up.
10: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, नमस्ते मैम।
12: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
11: रोशनी बोल रही हूँ।
12: जी जी, कैसी हैं रोशनी जी?
11: ठीक हूँ।
12: तो क्या हो रहा है?
11: अभी लंच करने आए हैं।
12: अच्छा, अभी कहाँ हैं आप?
11: घर पर आ गए हैं।
12: अच्छा, वैसे क्या करती हैं रोशनी जी?
11: पढ़ाई।
12: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
11: 7।
12: अच्छा, तो अभी स्कूल से आ रही हैं?
11: हाँ।
12: चलिए बढ़िया,
11: लगा के अब से बात हो गया।
12: जी जी, वैसे रोशनी जी आप कहाँ से बोल रही हैं?
11: अच्छा,
12: आपका जी?
11: आप ठीक हैं?
12: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
11: नाश्ता हो गया?
12: हाँ हो गया।
11: मेरा गाना सुना दीजिए।
12: बता दीजिए।
11: प्रिया फ्रॉक वाली।
12: दो लाइन गा के बता सकती हैं मुझे?
11: शायद नहीं है।
12: पवन सिंह का गाना है?
11: हाँ।
12: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: जी मैम।
12: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बढ़िया है, और हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है। अभी आपके यहाँ हो रही है क्या?
0: हमारे यहाँ तो बरसात नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बना हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो पता है पानी सुबह से ही गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है।
0: अच्छा चलिए तो फिर बढ़िया। वैसे नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
1: जी नाश्ता भी हो गया, मेरा तो भोजन भी हो गया।
0: अरे वाह,
1: आपका हुआ कि नहीं?
0: नाश्ता हुआ है।
1: अच्छा
0: तो फिर आज की फरमाइश क्या है?
1: आज की फरमाइश है मैडम जी, पिक्चर का नाम है मासूम, और उसमें गाने के बोल है, काले लिबाज में गोरा बदन ऐसा लगे ईमान से जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की खान से।
0: क्या आप गा के बता सकते हैं दो लाइन?
1: यही है मैडम दिक्कत।

0: से मासूम पिक्चर है मैडम जी ये।
1: जी जी और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
0: मैडम जी। है गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है और भारती मैम सोनी मैम को।
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी,
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: हाँ मैं नदीन अहमद झुमरिया से बोलता नहीं।
8: जी जी, क्या हाल चाल बा?
9: ठीक बा सर, आप और सुनाई?
8: जी हमारे भी बढ़िया बा, इससे क्या होता है अभी?
9: क्या होता, बहुत क्या नंबर मिला होता नहीं, वही वजह से लगता नहीं है। हवा बहुत हुआ होता नहीं, निमल लगता, आज 2-3 दिन से ऐसा आराम भइल बा। हाँ सर, अब चलता नहीं,
8: आराम बनू?
9: हाँ बहुत आराम बा, बहुत आराम बा।
8: चलिए बढ़िया बा। खाना वाना हो गया?
9: हाँ खाना खा चुका हूँ। ठीक बा, गाना सुना दे।
8: बता दी,
9: गम उठाने के लिए मैं तो जी जाता, मेरे हजूर के हो गाना।
8: अच्छा, गाना सुनाना दिखाते हैं?
9: हाँ आप सुनिए, हम सुने, हमारे जियासुद्दीन भाई सुने और रिमझिम परिवार के जितना लोग है सब लोग सुने।
8: ठीक बा, तो गाना प्ले करता नहीं?
9: हाँ ठीक बा, आ जाये
8: गाना काल ना तो आज चलिए। ठीक बात, तो प्ले करते हैं जब गाना।
9: वालेकुम
8: अस्सलाम।
10: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, वो देने

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मैम, मैं जाकिर हुसैन गोपालगंज से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
0: बस कुछ नहीं मैम, क्या होगा, काम धंधा छोड़ कर क्या होगा। हेलो
1: जी, वैसे क्या करते हैं आप?
0: बस मैम पढ़ाई कर लिए हैं, पढ़ाई करके क्या करे।
1: कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप?
0: मैम 9 तक पढ़ाई किए हैं।
1: अच्छा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं?
0: जी मैम, मजबूरी था उसी छोड़ दिए थे।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं है।
0: जी मैम गाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए।
0: जी गाना सुनना चाहते हैं, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं आप?
0: हाँ मेरा दोस्त लोग है। हाँ हाँ, नाम रखेंगे सुफिया आलम, यूसुफ, संजीत और मुकेश शर्मा, जितलेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, उसके बाद मेरा दोस्त संदीप है, सुशील है, गोविंदा है, उसके बाद बहुत लोग हैं। और आपको भी, आपको रेडियो पूरे परिवार को।
1: क्या आप हेलो मैचेस में पहली बार कॉल किए हैं?
0: नहीं मैम, हम तो कॉल करते हैं, हरदम कॉल करते हैं, जब भी कॉल लगे जाए तब भी कॉल लगाते हैं।
1: अच्छा जी, शायद मुझसे पहली बार बातें हो रही हैं।
0: मैम पहली बार तो आप सोमवार का नहीं है क्या?
1: नहीं, भाभी जी रिकॉर्ड कर रही थी।
0: हाँ तो उससे बात हुआ है।
1: अच्छा ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
0: ओके मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकी 90.4 एफएम।
0: ओके।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करे 87-894-18744।
15: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में। जी बढ़िया है, अपना बताइए। अब क्या हो रहा है?
17: काम कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, काम नहीं कर रहे हैं।
16: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
17: पंजाब से। पंजाब से?
16: पंजाब। और आपका नाम?
17: मेरा नाम परमात्मा कुमार, काला मंदिर घर पड़ता है, काश के बगल में गोपालगंज।
16: अच्छा जी, तो अभी बारिश हो रही है उधर?
17: कल भी हो रहा है, बारिश आज भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। गाना सुनना है? मतलब
16: बता दीजिए,
17: कोई भी गाना बजा दीजिए।
16: हम उसकी से कॉल किए, आप ही बता देते तो अच्छा रहता।
17: बताए नहीं, चकरलाल का बजा था, सिंधी राज का बजा दीजिए।
16: कोई
17: भी सोमवार में कॉल लगाए थे तो आप रिसीव करके बोले नहीं।
16: जी जी, नेटवर्क इशू होगा, इसी की वजह से नहीं आवाज आया होगा।

0: बारिश उधर कैसे मौसम आप लगता है?
1: मौसम भी तो बादल छाया हुआ है।
0: इधर तो कल से बारिश हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, कल 3 बजे बारिश हो रहा है, बहुत ही घंटा 4 बजे तक बारिश हो रहा
1: है। इधर भी मौसम बना हुआ है कि बारिश आएगा ऐसा लग रहा है।
0: कौन सी जगह जाना बताइए तो वही आपने पसंद का।
1: जी तो हम तो बोल रहे हैं आप बताते तो ज्यादा अच्छा रहता।
0: नहीं नहीं आपको बढ़िया अच्छा बजाते हैं, आप ही लगा दीजिएगा।
1: अच्छा चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो भजा देंगे। और वैसे
0: आज बजेगा कॉल?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाए दोनों दिन।
0: संतोष को और धनंजय और बिजली और सारे जितना रेडियो सुनते हैं सभी को।
1: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका?
0: हाँ जी
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
1: कैसे हैं मैम?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम। उधर का मौसम का क्या हाल है गोपालगंज का?
0: यहाँ गोपालगंज का मौसम तो सुहाना हुआ है, हवा चल रहा है।
1: इधर तो हम लोग बारिश से परेशान हो गए हैं मैम। दो चार दिन पहले से बारिश हो रही है और अभी लगातार 7 तारीख तक बारिश लगातार दिख रहा है। बहुत जोरों से बारिश हो रही है।
0: अच्छा जी
1: जी जी जी
0: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सुधीरपुर परिजिम्बा जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: ओके
1: जी जी, मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपका रेडियो रिमझिम का।
0: जी जी
1: लगभग प्राय सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, समय मिल पाता है तो।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: जी क्या बोले?
0: वैसे क्या करते हैं आप?
1: जी मैं शिक्षक हूँ जी, समय निकाल के थोड़ा कॉल कर लेता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है।
1: जी जी आज सुना दीजिए फिल्म में धर्मेंद्र और रेखा फिल्म है गजब फिल्म का गाना सुना दीजिए। गीत के बोल हैं, ये हवा ये बता तुझको क्या है पता, अबके बरस जो बरसेगा जो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा। लता मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: नहीं मैं गाना उतना अच्छा नहीं आता है। जिसके बोल हैं, ये हवा ये बता तुझको है पता, अबके बरस जो बरसेगा जो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा। जिसके बोल इस प्रकार है मैम।
0: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: नहीं ऐसे हमको तो गाना नहीं आता, लेकिन गाने के बहुत शौकीन हूँ मैम।
0: जी जी फिर भी बहुत अच्छा गाया
1: जी। और डेडिकेट रहेगा मैम सबसे पहले आपको, रेडियो रेंजिंग की जितने आरजे सब हैं सबको, पूरे टीम को, और रेडियो रेंजिंग के जितने भी प्यारे प्यारे श्रोतागण हैं देश विदेशों में सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
1: जी मैम, कॉल रिसीव करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी आपका।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी मैं समीर चौराव
7: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
8: चौराव।
7: चौराव, अच्छा जी।
8: हेलो,
7: तो क्या हाल चाल है आपका?
8: जी बढ़िया है।
7: तो क्या हो रहा है?
8: बस घरी पे है।
7: अच्छा, बढ़िया है। खाना वाना हो गया आपका समीर जी?
8: हाँ हो गया।
7: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आप?
8: गाना सुनना है हमको, मुझे तेरी जरूरत आज भी है, तोड़ के जाने वाले।
7: समीर जी आप क्या 2 लाइन गा के बता सकते हैं मुझे?
8: जी जरूर।

0: आने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है।
1: जी समीर जी आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं।
2: थैंक यू।
1: आप पहली बार कॉल किए हैं? हेलो माय क्वेश्चन।
2: पहली बार नहीं, हम पुराने श्रोता है रेडियो के, काफी दिन के बाद कॉल किए।
1: अच्छा जी,
2: लेकिन 2008-09 से सुन रहे।
1: चलिए बढ़िया, तो समीर जी प्ले करते हैं गाना आपका। जी मेरा नाम मनोरमा।
2: जी जी प्ले
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी भारती जी।
1: नहीं
0: मनोरमा जी।
1: जी जी
0: जी, कहिए क्या हाल चाल है।
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसे हैं।
0: हम लोग भी ठीक हैं, सिलाई हो रहा है। आपका कार्यक्रम चलते रहता है और सिलाई होता है।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम है साध मास्टर, ग्राम धनाव से, जिला रोहतास, बिहार से। पहचान गयी।
1: पहचान गए।
0: आज भारती जी रिकॉर्डिंग से चले गयी, और बस चले गए ना।
1: जी जी, उनका टाइम हो गया तो चली गयी।
0: अच्छा, इसीलिए गाना बज जाएगा मैडम जी शाम के 5 बजे।
1: जी रहेगा कि गाना आज ही चले।
0: रेडियो तो हम 1991 से सुन रहे हैं, 90 से। जी पहले काम सीखने जा रहे थे तो उस्ताद के पास टेप रिकॉर्डर था, कैसेट वाला। उस समय में 15 रुपया के 18 रुपया कैसेट मिलता था। इसके बाद उसके बाद में फिर तो रेडियो रखे हम, संतोष रेडियो। बहुत दिन चलाए हम, बैटरी वाला, 4 बैटरी डालते थे हम लोग। ऑल इंडिया रेडियो और पटना चलता था, रसमंजरी प्रोग्राम का गीत माला हफ्ता में हम लोग सुनते थे। उसी टाइम से हम गाना सुनते हैं।
1: अच्छा, तो अभी कैसे सुनते हैं, रेडियो से ही आपके मोबाइल ऐप के जरिए?
0: ये तो मोबाइल से, आपका ऐप से सुनते हैं मोबाइल से।
1: अच्छा अच्छा,
0: 2 साल हो गया आपका मोबाइल में किए तो देखे कि रेडियो रिमझिम बजाए तो अच्छा लगा, तो फिर 2 साल से ही सुन रहे हैं हम लोग ज्यादा।
1: तो रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है?
0: सबसे कार्यक्रम ईयरबड्स चॉइस, हेलो फरमाइश।
1: अच्छा,
0: और अब तो अंताक्षरी खत्म हो गया ना, तो हम हर हफ्ते भाग लेते थे। दिव्या जी थी तो 2-2 बार 3-3 बार चांस मिलता। जी
1: बढ़िया। तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: आज की फरमाइश है नगीना मूवी का गाना है, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: किया।
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं
0: जी। सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ और भारती जी को और रेडियो रेंजिंग की पूरी टीम को और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी को, अब हम लोग धनाव से रोशन थिएटर में सुनेंगे हम लोग।
1: जी जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
9: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
10: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो
11: जी, भारती जी नमस्ते, हम नवसात मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से।
12: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: जी मैम, शिकायत है आपके लिए कि मैं कभी भी मैसेज करते हैं हाँ यार बॉस के चुट में मेरा गाना जल्दी नहीं बजाया जाता है, क्यों?
12: अब ये तो भारती जी बता सकती हैं।
11: आज विक्रमगंज में जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं, सभी को गाना सुनाना चाहते हैं, वर्षा पानी वाला गाना बजाते।
12: आपकी आवाज कट रही है।
11: टिप टिप बरसा पानी वाला बजा दीजिएगा गाना।
12: अच्छा, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं?
11: हाँ, जो जितने विक्रमगंज काराकाट में जितने लोग हैं सभी को सुनाना चाहते हैं। नाम तो धरेंगे तो बहुत लोग हैं, आज बच जाएगा
12: जी, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
11: आपके एरिया का मौसम कैसा? अच्छा,
12: मौसम तो सुहाना बना हुआ है, हवा चल रहा है।
11: चलिए ठीक है मैम, बजा दीजिएगा।
12: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी के लिए दिल से प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: मैं दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, शो सुन रहे थे।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम तो बेल्डर हैं, ऐसे मशीन भी चलाते हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: पावर प्रेस चलाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
1: क्या करें, रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: और सब अपना सुनाइए।
0: जी सब बढ़िया है आपकी दुआ से।
1: ये आप आज का टाइमिंग बढ़ गया।
0: क्या ना, इससे पहले भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर मेरा चालू हो गया 12 से 12:30 एक बजे तक, क्योंकि कॉल बहुत कम आए थे।
1: अच्छा अच्छा, तब भी तो लग नहीं रहा था।
0: तो स्टार्टिंग में लोग बराबर करते हैं लोग, जैसे टाइमिंग खत्म होता है कॉल कर आना बंद हो जाता है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: आज की फरमाइश क्या, करने के बाद तो दिमाग से ही उतर जाता है। चलिए ठीक है, दे रहा हूँ, यही बजा दीजिएगा। ये कर बालमा बसे परदेश सखी।
0: ओके, वैसे तो अच्छा तो गा रहे हैं आप,
1: तो फिर से गाएंगे।
0: तो गाइए।
1: ये कर

0: ठीक है यही सुना दीजिए, दिमाग में उतर गया आज।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं।
0: डिप्रेशन में आ गया।
1: अच्छा जी,
0: क्या करे, चलिए फिर जो भी हो काट छाट के बजा दीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: प्ले कीजिए
1: जी। रेडियो रिज्यूम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: Now pick your phone up.
8: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी मैम, नमस्ते।
9: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
10: मैम, मैं संगम पासवान बोल रहा हूँ, ग्राम धनौती, पोस्ट कटिया, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार से।
9: जी जी, कैसे हैं आप?
10: मैं मैम बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और रेडियो रिंजिम 90.4 FM में काम करने वाले सब मेरे दोस्त लोग कैसे हैं?
9: जी यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
10: अरे भैया मैम जो भी है। हाँ मैम, और गोपालगंज की अभी मौसम कैसा है?
9: गोपालगंज की मौसम तो सुहाना हुआ है, हवा चल रहा है।
10: अच्छा अच्छा
9: जी, और इधर?
10: चलिए बढ़िया है मैम। मैं चाहता हूँ आज कुछ गुनगुनाने के लिए।
9: जी बिल्कुल।
10: हमारा जिला के अलगे पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलगे पहचान बड़ुए, भाषा हटे भोजपुरी, इतिहास बड़ुए, भाषा हटे भोजपुरी, इतिहास बड़ुए, हम धम हटे जिला के पहचान हो, रेडियो रिमझिम देवेला संस्कार हो, हम धम हटे जिला के पहचान।

0: हमारा जिला के तो अलग पहचान बड़ुए, हमारा जिला के तो अलग पहचान बड़ुए। भाषा भोजपुरी लागे ला मिठास हो, अरे जिला गोपालगंज रचे इतिहास हो। भाषा भोजपुरी लागे ला मिठास हो, आ जिला गोपालगंज रचे इतिहास हो। ओ सब दुनिया में कर तो सब दुनिया में एकर पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए। संगम नाम हमार घर है धनौरी, थाना है कटिया, जिला है गोपालगंज नगरी। थाना है कटिया, जिला गोपालगंज, संगम नाम हमार बोली भोजपुरी इतिहास। सब रेडियो रिमझिम सुने वाले, अरे दर्शक लोग के प्रणाम बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए। मैम जो भी त्रुटि है मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये रचना अपने मन से मैंने बनाया था, थोड़ा मिस्टेक बीच में हो गया क्योंकि पढ़ने में।
1: तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना
0: गा के
1: सुना है, बहुत अच्छा लगा।
0: मैम अच्छा लगा तो इसलिए तो मैं सोचा भाई जो भी बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आपको मैम कैसा लगा?
1: जी जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आपका गाना। और आपने जो गाना गाया ना बहुत क्या ही बताया, बहुत अच्छा गाना गाया गाया आपने।
0: जी मैम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी त्रुटि होगा तो अपना भाई छोटा समझकर माफ भी माफ कीजिएगा, और पूरे श्रोताओं लोगों से भी बोल दीजिएगा माफ करेंगे लोग, क्योंकि छोटे से भी गलती हो सकता है। और मैं चाहता था कि इससे और आने वाला दिन में मैं इस हेलो माई चॉइस के माध्यम से पूरे दर्शकों को एक से एक मैं रचना लेके आऊंगा भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी के लिए। अभी तो मैं फिलहाल मैं महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन हम लोग जो भी बोलते हैं थोड़ा यहाँ पे वो होगा था ना कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो भोजपुरी बोलना पड़ेगा। तो हम लोग भी जहाँ रहते हैं तो अपना जो बिहार का मिठास भोजपुरी आवाज है, तो हम लोग आपस में जो भी है हम लोग यहाँ पे हिंदी वो हिंदी नहीं बोलते, हम लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं।
1: अच्छा लगता है,
0: इसीलिए मैं जी मैम। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाइए कि जो कि हम लोग जुड़े तो उसमें भोजपुरी आवाज में बात करें, भोजपुरी जो भी हो भोजपुरी वो गाना के माध्यम से हो, चाहे कोई भी अगर सुलझाव भी देना हो, चाहे कोई भी ऐसा एपिसोड लाकर आइए आप लोग कि भोजपुरी में हम लोग थोड़ा बातचीत आप लोगों से करें, तो थोड़ा हम लोग को और अच्छा लगेगा। और जितना भोजपुरी बोलने वाले सुनने वाले देश विदेश में रह रहे हैं लोग, थोड़ा उन लोग को भी ऐसा महसूस होगा कि भाई जो भी है अच्छा है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम कुछ ऐसा एपिसोड आप लोग लाइए कि भोजपुरी में जैसे आप लोगों से हम लोग जुड़े।
1: वैसे तो चलता है संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भोजपुरी गाने की भी फरमाइश होती है और भोजपुरी में भी बात किया जाता है।
0: अच्छा,
1: तो सिर्फ संडे को ही?
0: तो मैम नहीं तो उसको ऐसे कीजिए कि मतलब कि हफ्ता में कम से कम एक दो दिन और बढ़ा दीजिए उसको, तो क्योंकि अपना भाषा है अपना पहचान है, तो उसको थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि ऊपर से ऊपर तक जाए, कि जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो जानबे करते हैं कि वो लोग का बिहार का लोग थोड़ा लोग अलग ही चीज समझते हैं लोग। मैम एक भोजपुरी खेसारी लाल यादव का सॉन्ग है वो मेरे को सुना दीजिए, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से,
1: ठीक है?
0: आपको और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दर्शकों को, मेरे दोस्त लोग हैं प्रमोद खास करके इनको।
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका,
0: ठीक है मैम? नमस्ते।
1: नमस्ते रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है मैम, प्रणाम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा छोटे वर्जा भार रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ और दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।

अब देखिए आगे शहर केदली बन जंगल पड़ता, अभी है शहर में हम जाता नहीं। आ देख ली केदली बन जंगल के बात ही बा कि वहाँ सबसे बड़ा जानवर केदली बन जंगल में बा जौने के जालिम सिंह नाम है। आ वो 14 कोस के राज में एक को आदमी के नहीं छोड़ ले। अब बिरजभार वो रास्ता कैसे थक के जाई हैं, लेकिन बिरजभार के मालूम नहीं थे जी केदली बन जंगल में ई जालिम सिंह दानवा रहेला। आउ जालिम सिंह दानवा एगो बुढ़िया के सहारे बाटे। देखी वो जो बुढ़िया बा चल गेल बा दानवा चरौरी में, तब बिरजभार यहाँ से जा रहल बाड़े। तब बिरजभार के देखले भी बुढ़िया तो रोअतिया हँसतिया।

0: दुर्जाभार बुढ़िया से का कहतण? ए बुढ़िया, काहे तू रोताड़ू आ काहे हसताड़ू? एकर भेद के बताइबू कुछ। ए बुढ़ा सुना, हम एगो जोगी फकीर आदमी है, ई बात के बताइबू तब न हम कुछ समझ कि काहे हसताड़ू आ काहे रोताड़ू।
1: ए बाबू
0: कह,
1: हम यही खाती रोतानी आ यही खाती हसतानी।
0: हाँ
1: कि हमारे बाबू तू के हु के लड़का हो खबर।
0: हाँ जरूर है।
1: आ तोहरिये तोरे हमारे बाबू रहले बाबूआ रहले।
0: अच्छा।
1: आ एजा एगो जालिम सिंह नाव के धनवा बा, उतारा के पा जाई तो घोट गले घुमा दे हमारे बाबू। ए हमार बाबू
0: कहा बुढ़ा,
1: हम वही के नौकरी करी ले आ जब कहीं से आवेला चोरी के।
0: हाँ
1: तो करे देही पर है मुड़ा देखता रहनु।
0: अच्छा।
1: यही से खूब पीटी ले थी मानु कहले आवेला तू एजा से भाग जाए हमार बाबू भाग जा।
2: सही सही भेदवा बुढ़िया हमरा

0: सुन ल तहर ना पाए हमर बापू।
1: ए बुढ़िया माई, हमरा के लोग बिरजाभार कहला।
0: आए
1: हम यह रास्ता पकड़ के हमरा सोनटपुर जाए के बा। आ देखा हम केदली बन जंगल में आ गए बानी। केदली बन जंगल में हम यह चाहतनी कि कोनो तरह से पार हो जाई, लेकिन रास्ता दूसर कोनो नहीं खे।
0: एगो कार करो।
1: कहा
0: अगर तारा बचे के बात तो
1: हाँ
0: तू जेबे करवा सूरतपुर।
1: अरे हमरा गई बहुत जरूर बा, चाहे हमार प्राण रही है चाहे चल जाइ है, लेकिन हम तो सूरतपुर जेबे करब।
0: हमरे आचरा के भीतर लुका जा।
1: अच्छा
0: ठीक न।
1: हाँ
0: आ जब आई जालिम सिंह दानवा
1: हाँ
0: तो कही थी मानुक थी मानुक थी मानुक महक जाला।
1: अच्छा
0: कहीं पैसा कौड़ी रह तब आदमी रह तब जी जानवर रह तब महक जाला ओजा पर हूँ जाला।
1: ठीक बा, हम तारा पिछुआरे लुका जाई।
0: पिछुआरे काहे का लुकाई बुआ, तब तक देखिए तब तक मुआजे दे या हाँ। हमरे आचरा में लुका जा।
1: अच्छा हम तारा आचरा में लुका जाता नहीं। आ लेकिन
0: जब आई
1: हाँ
0: तो जब कही थी मानुक मानुस मानुस मानुस तो हम कम हम नहीं एगो मानुस बनी। आओ ना तब हमरे के खो तो कह कि तू हमरा पर तो मुआरा लगाओ, बस लगा मारे मारते मारते मारते जा सुता दे बस उठ के भाग जाइए।
1: अरे बड़ा ने की कैलू ये माता बुझलू।

0: मानुष ए जी तो केहू मानुष नहीं कहे हमारे बाबू। अरे इतना दिन से बारी हम आ मानुष मानुष कैले रहे लो लन हमें के खाना एक हमें तो बानी
1: है बुढ़िया
0: कह
1: ते आज पुरानिया ना रहते ता तोरा के कब्बे हम घूट के खा गए रहते
0: हमरा के का खाइबो घूट के
1: आदमी के गंध आवता
0: कह ये जो आदमी के गंध बा लन हमें के मुआ दो हमें तो बानी
1: आदमी सामर बा कबो गोर होता ओके खाए बोल कहाँ बा
0: हमारी अब बानी हमारी का खा लाया
1: नहीं खा
0: खाल हमारी के
1: हंसबे रोबे जल्दी सूता तनी मुआरा गिरा
0: चल है मुआरा से मार तन चल
1: दे ही पे गिरा
0: ये बाबू बीरजफर कहा अरे अब तुम सुतल बा जल्दी भाग धीरे से भाग बाबूजू जब ही बीरजफर भाग ताने तब तक जालिम सिंह दानवा के नजर पड़ गई बा
1: कहाँ जेबी रे कहाँ जेबी
0: बाबू जी से भागल शुरू कर बने बीरजफर
1: जालिम सिंह दानवा
0: छुटिया रहल बा
1: आज तोरा के छोड़ ना सकिले आई बुढ़ी भी कहती है जा क्यों नहीं के हमरे के खो तोरो नट्टी दाब के मुआए
0: आई हमरा के तुम्हार देबो देखा मरले से पहले हमरे नाव बिरजा भार पहले हमरा तरह लड़ाई होई तू हमरा से बाजी जीत जेबा हार न तू हमरा के मरबा
1: हार तो

शालीन सिंह दानवा घोट घल लेबा। जब घोट घल लेबा, जब पेट में पहुंच गए बड़े बिरजा भार, इनके अकेले हरा गए बा, तब जू अपने गुरु के सुमरत ने कैसे अरे सुनबा गुरु अरे हमरे बचनिया से। ई दानवा के पेट पे से बोल रहा बड़े,

0: हाँ गुरु
1: देखा।
0: हाँ
1: कहाँ से बोलता रहो?
0: अरे हम दानवा के पेट में पानी दानवा हमरा के घोट घल ले बा
1: का केदली बल जंगल में चल गेल बा।
0: हाँ
1: आ दानवा के पेट में ढूक गेल बा
0: ढूकल
1: बानी घोट ले ले बा तारा के।
0: हाँ
1: बाकी तारा के तब जिंदा ना छोड़ी
0: उहे त हम देखत तनी कि आधा धर हमार घोट घल ले बा आ पेट में से हम बोला तनी आई सुना तनी कि दानवा के केहू मारियो ना पावेला एकर प्राण कहाँ बसेला ए गुरु तू ही बताइब।
1: हमरे नाम गोरखनाथ।
0: अच्छा
1: तू हमार चेला हब हमरे रहते भर में दानवा तारा के ना कबू मार सकेला।
0: अच्छा।
1: हम उपाय बताओ तनी सुन ला बिरजा भार।
0: बताओ उपाय।
1: तारे झोरी में छुड़ी बा छुड़ी निकाल ला कल से ना दांत के सहारा से उकरा के खोल लो आ दानवा के पेट चीर दो चीर के बाहर निकल जा।
0: हे गुरु
1: बाहर निकलने के बाद से ओकरे नाभि के सामने उ छुरी मार दो ओ जा ओकर प्राण बसेला तुरंत मर जाए। दूसरा बात सुन लो हे गौरी जब दानवा उ मर जाए तो ओकर दहिना जांघ चीरी हा ओमे से एगो बहुत सुंदर देव कन्या निकली उहो तारा से ब्याह करे के कही अब तू समझ लिया।
0: अच्छा हे गुरु अब छुरी हम निकाला तानी आ ये दानवा के यही नाभि के सामने मारा तानी

0: ठीक नहीं कैले।
1: बुढ़िया पेट में पैस के हमार जान मरौलसिया।
0: अब देखी वहां से बिरजा बाहर निकला तने दहिना जान चीरा तना तुम्हें से देव कन्या निकला तरी आ निकलते बिरजा बाहर से का कह तरी
2: अरे सुनी तो सुनिए स्वामी।

0: आ बजू कहत बिरजा भार कि देख तारा के सचमुच साथ में लेके जाती, लेकिन हम वादा करतनी कि जब हम सूरजपुर से लौटब, जब सूरजपुर से लौटब तो तारा के वादा करतनी कि तारा के लेके चलब हम अपने राज में। अब उन्हें बुढ़िया का कहतिया,
1: अरे अमर बाबू तू तो देव कन्या के साथे लेके चल जाइबो आ हमरे विषय में कोनो बात सोच ल हुआ।
0: अरे बुढ़िया ये हम सब समझतानी कि 14 कोस के जंगल बाए जंगल में तू ही एगो बचल बाड़ू। हाँ। एकरा पहले तो जालिम सिंह दानवा सब जने के मार के मुहा दल रहल, सब जने के घोट खल रहल, अब एगो तू ही नहीं एगो बेसहारा बाड़ू।
1: हाँ ए बाबुआ बिरजा भार कोनो हमरो उपाय सोच द।
0: देख हम तारे के उपाय सोचतानी कि तू
1: अच्छा
0: आ जौन है देव कन्या वाली।
1: अच्छा
0: ये दोनों जने कुछ दिन तक बस यही जंगल में गुजारा कर जा आ जब हम सूरजपुर से लौटब तो तहलों के दोनों जने के सोने के विमान पर बैठा के लेके चल चलब हम अपना देश के आ तहरा के महतारी के तरह से मानब आ देव कन्या के अपन रानी बनाए।
1: ठीक भाई हमर बाबू तारे साथे हम पार लागी जाए।
0: अब देखी अब वहां से अब प्रस्थान आगे के करतन जोगी बिरजा भार
1: कहा जाता है
0: अब वजू से चलता है।

0: समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया। पहले की तरह मिलता रहेगा 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चिकित्सा आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। 30 वर्ष से अधिक उम्र के 6 करोड़ लोगों की होगी स्वास्थ्य जांच। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गंगा और सोन समेत सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कैमूर, गया, रोहतास और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पहले की तरह 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
1: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था को पूर्ववत लागू रखे जाने की स्वीकृति दी गयी।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2030-31 के लिए विस्तारित कर दी है। राज्य मंत्री परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत बक्सर के टुमड़ाओं और मुंगेर में दुधारू पशुओं के पालन केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। साथ ही कैबिनेट ने बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ के गठन को भी मंजूरी दी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती और अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश के नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार से 9,169 करोड़ रुपए की राशि मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। इस राशि से राज्य के नगर निकायों में बुनियादी शहरी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। श्री चौधरी ने बताया कि पटना नगर निगम को 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने इस राशि के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार अभियान के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र के 6 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। आज पटना में इस अभियान की शुरुआत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अभियान के तहत प्राप्त आंकड़ों को आभा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
2: इसमें टारगेट है कि 6 करोड़ बिहार के लोगों को इसमें चिन्हित करके उनका पूरा स्क्रीनिंग करना और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। सरकार के पास ये जानकारी होना चाहिए कि 30 वर्ष से अधिक उम्र के जो लगभग 6 करोड़ से अधिक आबादी के हम पूरा स्क्रीनिंग पूरे बिहार में करेंगे, उसके पूरे रिपोर्ट आपके पास हो, आवा आईडी के माध्यम से इसको पूरी तरह जोड़ने का काम कीजिए।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि अभियान के तहत 14,500 स्वास्थ्य केंद्रों पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों की पहचान

0: की जाएगी।
1: आज हमने एक अभियान शुरू किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसकी स्क्रीनिंग हम राज्य स्तर पर करवा रहे हैं। 14,500 स्वास्थ्य केंद्र हमने निश्चित किया है कि इन केंद्रों पे स्क्रीनिंग होगी और 6 करोड़ लोग आएंगे, 30 साल से अधिक लोग करेंगे। तो हमारा कोशिश है कि जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो इन सब चीजों का हम स्क्रीनिंग कराएंगे और जो भी अगर स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया तो फिर उसकी उपचार की व्यवस्था की जाएगी, उसको परामर्श देंगे, टेलीमेडिसिन कराएंगे, रेफरल की सुविधा मुहैया कराएंगे।
0: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 19 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। पात्रता परीक्षा का परिणाम दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। गंगा, गंडक और कोसी नदी के बाद सोन नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण उत्तर बिहार के साथ साथ मध्य और दक्षिण बिहार के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि बाणसागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
1: सोन नदी में उफान के चलते इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार शाम 5 बजे बराज पर लगभग 5,62,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। इससे नदी के तटीय और निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से नौहट्टा, तिलौथू, रोहतास, डेहरी और नासरीगंज सहित सोन नदी के आसपास के इलाकों में माइकिंग कर लोगों को लगातार सावधान किया जा रहा है। इसी बीच जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बताया कि बाणसागर के रेडियल गेट को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, जिससे जल स्तर में कमी आने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार।
0: कैमूर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिले से होकर गुजरने वाली दुर्गावती और कर्मनाशा समेत पहाड़ी नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दुर्गावती जलाशय के सभी फाटक खोल दिए जाने के बाद दुर्गावती, कर्मनाशा, सुअरा, कुकुरनहिया और गेहुनुआ समेत कई नदियां उफान पर है। दुर्गावती नदी पर कुदरा बाजार के पास बना दोनों पुल पानी में डूब गया है। इससे दर्जनों गांव के लोगों का कुदरा बाजार और प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क बाधित हो गया है। निचले इलाकों में किसानों की फसल डूब गई है। जिलाधिकारी कुमार अनुराग ने तटवर्ती इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने तथा सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे।
0: औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सोन, बटाने, पुनपुन, धावा, अदरी, मदार और केसर नदियों के बढ़ते जलस्तर से बारहुन, कुटुम्बा, औरंगाबाद और ओबरा प्रखंड के कई गांव प्रभावित हैं। जहानाबाद जिले में दर्धा नदी के उफान पर रहने के चलते जाफरगंज, शकुराबाद और साई मंदिर स्थित 3 पुल पुलियों के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। अरवल में पुनपुन नदी का पानी तटवर्ती क्षेत्रों में फैलने लगा है। इधर गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों के निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है।
3: गंभीर स्थिति गंगा में ही भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड में जो शंकरपुर गांव और राघोपुर का इलाका है वहां पर स्थिति थोड़ी खतरनाक बनी हुई है पिछले कई दिनों से। और अभी तक तो लगातार संघर्ष करके हमारे अधिकारियों ने स्थिति को बचाया है और हम लोग वहां पर दिन रात काम कर रहे हैं।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के सभी प्रमुख घाटों पर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
4: जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर मनेर, दीघा घाट, गांधी घाट और हथेदा में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। गांधी घाट पर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन को रोक दिया है। पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी कशिश बख्शी ने बताया कि घाटों पर एसटीआरएफ की टीम को नाव और गोताखोरों के साथ तैनात रखा गया है।
5: एसटीआरएफ की हमारे पास 10 बोट्स है, 28 कर्मी है और 6 गोताखोर हैं, वो सब एक्टिव हो चुके हैं। एसएसबी की भी हेल्प हम ले सकते हैं, जिसके पास 4 बोट और 30 लाइफ जैकेट्स हैं। उन्हें अभी भद्रघाट पे तैनात किया गया है और जरूरत अगर पड़ी तो हम 163 की धारा भी अपने घाट के एरियाज में लगा देंगे।
4: इधर बाढ़ प्रभावित तियरा इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सहायक नदियां भी उफान पर हैं। खगड़िया, समस्तीपुर और कटिहार जिले के तटवर्ती गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वैशाली जिले के 4 प्रखंडों के 16 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। भोजपुर जिले के उत्तर प्रदेश सीमा से सटे खवासपुर गांव में गंगा नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। इस बीच वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज शाम 5 बजे 1,77,000 और वीरपुर कोसी बराज से 2,26,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य भी जारी है। झारखंड के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। औरंगाबाद के ओबरा में सबसे अधिक 135.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि कल अररिया, किशनगंज, कैमूर, गया, रोहतास और सीवान जिले में भारी बारिश की संभावना है।
6: दिनांक 03 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, भभुआ, गया, किशनगंज, रोहतास एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के बीच अगले वर्ष अप्रैल से रामायण सर्किट ट्रेन का परिचालन शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में जयनगर में भारत और नेपाल के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में ट्रेन के परिचालन, रखरखाव, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आज एम्स पटना की ओर से नेत्रदान जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। रोहतास जिले के कोचस प्रखंड अंतर्गत महुआरी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान सह सखी वार्ता का आयोजन किया गया। अरवल जिले के तिलपा थाना क्षेत्र के तिलकधारी बिघा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के बरबिघा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयरी बिघा मोहल्ला

गंगा में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया। पहले की तरह मिलता रहेगा 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चिकित्सा आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। 30 वर्ष से अधिक उम्र के 6 करोड़ लोगों की होगी स्वास्थ्य जांच। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गंगा और सोन समेत सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कैमूर, गया, रोहतास और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अब देखी जोगी बाबा कहाँ पहुँच गए, बिरजाभार कहाँ पहुँचल बाड़े, सुबुकपुर शहर में पहुँचल बाड़े। अब
1: बिरजाभार
0: ये जो पहुँच गए बाड़ा,
2: 14 कोस के राज बाबू।
1: अच्छा
0: 14 कोस के राज बा,
1: पहुँच
0: गए बाड़ा। लेकिन तनी आज हमार मन एने उने हो गए बा, तनी एगो कविता नाई कह के सुना दी।
1: अच्छा ठीक बा, सुन ले। जब यह विचार बा, ए बाबू सुनी लोनी।
0: हाँ
1: रंजीत भाई तनी रहू हमरा पर ध्यान दे, जानी कि नहीं। देखी जे तरह पहले के नाच वाला लड़त रहे हसन नचनिया बुझी लेनु, वही तरह आजकल के सब बेसवे लड़त रहे सन।
0: बात सही है बा,
1: ए लोनी के बुझात न के कि दादा कोने तरह कलाकारी कइल जाला। मार जे 4 गो गीत अगर सीख लेले बाड़ सन तो स्टेज प्रोग्राम लेके टनाटन लड़त शुरू कर देले बाड़ सन। के बात बताओ तनी।
0: हाँ कहाँ के बात है।
1: नाच होत रहे हमारे गाँव में,
0: वाह
1: लगन का टाइम रहे।
0: हाँ
1: गलती से नाच एके बाराती में लिखा गई रहे 2 गो।
0: वाह
1: एगो हेने का और चंपारण जिला का और के नाच रहे।
0: हाँ
1: आ एगो हमरा ए छपरा जिला के नाच रहे।
0: वाह
1: अब तो चंपारण और के लौंडा निकलस बाराती में।
0: हाँ
1: नाच शुरू हो गए।
0: हाँ
1: जब उन्हें के लौंडा निकलल महफिल में निकलल तब आते का गावता भाई।
0: हाँ
1: गावत का की ताल मात्रा की चीज यानी तीताला गोलस की उधो जब टेढ़ दिन आयो।
0: वाह
1: गिनती वाला चीज गोलस तो भला आजकल जमाना में।
0: हाँ
1: केहू बुझता ताल मात्रा के चीज
0: ना,
1: 4 गो गीत अगर सीख गए तो बड़का बेहस हो गए बानी।
0: हाँ
1: बात झूठ न की कहत हूँ।
0: हाँ
1: हाँ अब तो जान ली जब लौंडा गोलस की उधो जब टेढ़ दिन आयो।
0: हाँ
1: बस वही मैं फिल्मा में 2 जने बूढ़े बैठे रहे लो।
0: हाँ
1: जब बुढ़ौलो इतना सुनल लो कि दादा रे लौंडा गावता कि उधो जब टेढ़ दिन आयो।
0: हाँ
1: तले एक जना बुढ़ौ उठ के एक जना अपने संगति यौ से का कहता।
0: हाँ
1: आ चला चला ए सरजू भैया, अरे बाप रे बाप, इतना साधवे से ऐसा लौंडा गावता कि हमार मन नहीं खेला गोर। अब ते बाबू दुए जने बूढ़ मिल के बराती में समियाना में मार जे हंगामा मचा दहलो।
0: वाह
1: तले जौन एने के नाच लिखाई रहे छापरा।
0: हाँ।
1: जिला का और के ओमे के लौंडा निकलल तब ओते तोड़ देना टनाक देना का गावता कियारे हिले बलिया हिले छापरा हिले ला।
0: हाँ।
1: आ जब मारी ले नजरिया तो पूरा जिले में हिले ला।
0: वाह
1: अब तो बुढ़ऊ चल गए रहे महफिल के कुछ दूर फैले।
0: हाँ।
1: जब लौंडा के सुनले गावल की बाप रे बाप गावता कि अरे हिले बलिया हिले छपरा हिले ला, आ जब मारी ले नजरिया तो पूरा जिलवे हिले ला, तब बुढ़ऊ का कहता ना अब बैठा बैठा ये सरजू भैया, अरे हौ लौंडा के दहल देख दहिले बाबू दहिले। का रे लौंडा तोर कहाँ घर है लौंडा। हे बाबू बुढ़ऊ घर द्वार लगले पूछे।
0: हाँ।
1: आ पूछते पूछते बुढ़ऊ खैले रहले पान, आ मुँह में एको दाँत रहबे नहीं कल कि पाने के पीते रोकाओ। बस अगवे एक जने हमरिये साने हीरो साहब टी नहीं है बैठ रहले।
0: हाँ।
1: जब बुढ़ऊ कहले कि कार लवंडा तोर कहाँ घर है लवंडा।
0: हाँ।
1: तले वो पनवे का पितिया हीरो साहब को ऊपर चू जाता। तो हीरो साहब टंदन उठ के कहता ना अ बुढ़ा तुझको पान खाने की तमी नहीं है, पान खा के मेरे पैजा के थूक देता है।
0: हाँ।
1: तब बुढ़ऊ का कहता है आ चुप रह मर्द तू नहीं, अरे हौ लवंडा का डहल देख दहिले बाबू दहिले दहिले।
0: देखी बकिए सोठी बिरजाभार के कहानी 7वां कैसेट में आपके सुने के मिली। हमरे तरफ से नमस्कार बा।
3: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई। 98527881 नंबर बाटे, इन नंबर पर कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84/28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल है। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत। हंसत रही मुस्कुरात रही, नमस्कार राम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: तू जो है।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS।

0: डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबरा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: तू जो है।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और अनुबंध के आधार पर संकाय पदों समूह ए के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य नियम एवं शर्तों के लिए आवेदक देख सकते हैं वेबसाइट www.aimsrbl.edu.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 10 सितंबर 2026। इस विज्ञापन से संबंधित सभी आगे की सूचनाएं और अपडेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लीजिए, www.aimsrbl.edu.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA संविदा आधार पर युवा सलाहकार वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक ही रिक्ति उपलब्ध है, पारिश्रमिक रहेगा ₹35,000 प्रति माह। नियुक्ति के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें यदि आप जानना चाहें तो देख सकते हैं NDMA की वेबसाइट ndma.gov.in। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क कठुआ इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वैज्ञानिक समन्वयक, वैज्ञानिक पादप विज्ञान, वैज्ञानिक किण्वन, व्यवसाय प्रबंधक, परियोजना सहायक और कार्यालय सहायक। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम एवं शर्तों तथा आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए वेबसाइट www.triplim.res.in। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक E5 तथा वरिष्ठ प्रबंधक E3। शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.hudco.org.in। युवा पेशेवर ग्रेड 2 के 2 पदों तथा युवा पेशेवर ग्रेड 1 के 1 पद के चयन के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से 11 सितंबर 2026 को सवेरे 10:30 बजे। साक्षात्कार स्थल रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय स्टेशन जो करनाल में स्थित है। ये पद अस्थाई हैं और निश्चित अवधि के हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.iari.res.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कोमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
0: जी हाँ, कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
15: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई, लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है, जबकि लगभग 4,900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
16: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
15: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
17: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
15: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
18: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible.
19: This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
15: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
20: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
15: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
21: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
15: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
0: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
15: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं, इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जांच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
15: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
22: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
15: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी

0: बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में
12: डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह,

0: तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिशा की बैठक में विकास कार्यों का हुआ निरीक्षण, तो वहीं भविष्य की योजनाओं पर बनी रणनीति। शहर के एक निजी होटल में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार की सूचना पर की गई कार्रवाई। खुद के अपहरण का साजिश रचकर फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में दो आरोपियों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के समाहरणालय के सभा कक्ष में दिशा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने की। इस दौरान विद्यालय निर्माण, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई और NHI जैसी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव, विधान सभा के सदस्य राम सेवक सिंह, विधान सभा के सदस्य मनजीत सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष अमित कुमार, जिलाधिकारी समीर सौरभ और उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा जिला स्तरीय सभी विभागों के सदस्यगण तथा दिशा के नामित सदस्यगण भी इसमें उपस्थित हुए। इस दौरान बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई, तो वहीं आने वाले भविष्य में गोपालगंज के विकास कार्यों को किस स्तर से और कैसे करना है, इस पर भी रणनीति बनाई गई। इसको लेकर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया
4: कि आज जिला विकास निगरानी एवं समन्वय समिति की बैठक, जिसे दिशा कहते हैं, संपन्न हुई और जो भारत सरकार की 42 योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। और इसमें मुख्य रूप से रेलवे था, नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे 27 और 531 दोनों की समीक्षा की गई। हम लोगों का डुमरिया पुल पर जो सुपर स्ट्रक्चर बनना है उसकी समीक्षा की गई। उसमें आया कि दिसंबर तक उसको पूरा कर देना है, काम शुरू होने वाला है, क्योंकि पानी के चलते काम नहीं शुरू हो पा रहा है। इसके अलावा रेलवे में समीक्षा हुई, रेलवे की समीक्षा में कुछ ट्रेनों की आवश्यकता थी, ट्रेन के ठहराव की आवश्यकता थी, कुछ RUV की आवश्यकता थी, उस पर समीक्षा की गई और रेलवे विभाग को निर्देश दिया गया। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस था, कृषि था, फिर आपका PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, हम लोगों का सभी एयरपोर्ट भी था। लगभग 42 योजनाओं की समीक्षा हुई है और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो काम हो चुके हैं वो ठीक है और जो काम बाकी पड़े हैं, जो कुछ काम प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में है उसको ये निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो प्रोसेस में नहीं है उसको सरकार से जल्द स्वीकृति ली जाए। और
5: कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
4: महत्वपूर्ण फैसलों में हम लोगों को NH का था, रेलवे का था, डुमरिया पुल का था, सभी एयरपोर्ट का था। उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NH 27 और NH 531 का, दोनों को विशेष रूप से ये निर्देश दिया गया कि वो रोड एम्बुलेंस रखें और जहाँ जहाँ भी पॉट होल है उसको भरते चले और इसकी परमानेंट व्यवस्था करें, विभाग द्वारा वो व्यवस्था कराएं। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो समिति को बताएं, दिशा को बताएं, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे।
5: कुछ अल्टीमेटम भी दिया गया समय सीमा
4: की। अल्टीमेटम उनको ये लास्ट वार्निंग थी, इसके पहले दो बार कहा जा चुका था, ये कहा गया कि इस बार का जो निर्देश है वो लास्ट है, इसके बाद आप नहीं करेंगे तो विभाग को हम लोगों को मजबूर होकर लिखना होगा।
5: एयरपोर्ट निर्माण
4: चल, एयरपोर्ट का काम तो ग्रेजुअली क्रमशः आगे बढ़ रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो रिक्वायरमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांगी गई थी वो रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी प्राप्त हो गई है और स्टेट गवर्नमेंट उसको भारत सरकार को भी भेज चुकी है और वो चैलेंज मोड में इसको लिया जा रहा है। चैलेंज मोड में सरकार इसको करेगी और बिहार सरकार इसकी अनुमति दे दी है भारत सरकार को और अभी से लेकर दिसंबर के बीच में इसकी बिडिंग होनी है। बिडिंग में एयरलाइंस के पार्टिसिपेशन के बाद जो कहा गया कि चैलेंज मोड में ये काम होगा, उस चैलेंज मोड में वो काम शुरू हो जाएगा।
3: गोपालगंज शहर के जादोपुर रोड में स्थित अंकिता होटल में आज पुलिस की छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नगर थाना क्षेत्र के इस होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन युवक युवतियों को और होटल के स्टाफ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। सभी से पूछताछ जारी है और जाँच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कर हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों में चल रही जानकारी के अनुसार इस छापेमारी से दूसरे होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक व्यक्ति खुद के अपहरण की साजिश रचकर अपने ही परिवार वालों से 2 लाख की फिरौती मांग रहा था। परिवार के लोगों को अपहरण की जब सूचना मिली तो परिवार के लोग चिंतित हो गए, पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस को आवेदन देकर जानकारी दी। पुलिस ने मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाते हुए टेक्निकल जाँच पड़ताल शुरू किया। जाँच पड़ताल के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी खुद के ही घर से 2 लाख रुपए वसूलने के लिए अपने खुद के ही अपहरण का स्वांग रचा रहा था। इसको लेकर आज पुलिस के तरफ से लाइन डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने इस पूरे कांड को लेकर जो जानकारी दी वह आप भी सुनिए।
6: सर बताया जाए, कल दिनांक 1 सितंबर 2026 को
7: जी
6: थाना को सूचना प्राप्त हुई थी श्रीपुर थाना को कि एक व्यक्ति जिनका नाम लाल बाबू सिंह है, उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनके छोटे भाई छोटे लाल सिंह के अपहरण हो गए, जिसके संबंध में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छानबीन किया, टेक्निकल टीम का सहयोग लिया। टेक्निकल टीम के सहयोग से हम लोगों को पता चला कि वह व्यक्ति घोड़े थाना अंतर्गत किसी जंगल में छुपा हुआ है। वहां हम लोगों ने छापेमारी की, जहां से वह व्यक्ति जंगल में छुपा हुआ मोबाइल के साथ बरामद हुआ, जिसे लाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ से यह पता चला कि वह व्यक्ति अपनी अपहरण का झूठा स्वांग रच रहा था और अपने परिवार से 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, तो जिसकी जांच पुष्टि हुई और इनके आसपास के लोगों द्वारा बताया गया, तो इन पर फिर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो भी सुसंगत धारा है इन पर लगाई जा रही है। और यही मेरा कहना है कि किसी भी तरह का झूठा कृत्रिम अपराध का स्वांग रचकर किसी भी तरह की पुलिस को धोखाधड़ी देने की कोशिश ना करें। ऐसे जो भी व्यक्ति पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: सर, इस कुछ कारण भी स्पष्ट हो पाया कि आखिर स्वयं वो क्यों किया इस तरह का बात, कुछ पूछताछ में?
6: एक्चुअली अपने भाई से
7: जी
6: 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, तो जिसका रिकॉर्डिंग इनके भाई ने दिया भेज है कि 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है
7: जी,
6: तो वही पैसा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा झूठा स्वांग रचा
7: था। धन्यवाद।
3: विजयपुर थाना क्षेत्र से आज 2 मामले आए, जिसमें एक दुष्कर्म का मामला और एक किशोरी के साथ अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के तरफ से बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति किशोरी का अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है, साथ ही उसके साथ यौन शोषण करने की जानकारी भी पुलिस को मिली। पुलिस ने इसमें अनुसंधान शुरू किया। FSL की टीम के माध्यम से भी आवश्यक जाँच पड़ताल किया गया। किशोरी को आवश्यक चिकित्सकीय जाँच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी रोशन गोड़ पिता बिंदु गोड़ साकिन सुदामा चौक थाना विजयपुर का निवासी है। पुलिस ने इसके मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। किशोरी के परिजनों से पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि एक फेसबुक मैसेंजर आईडी के माध्यम से किशोरी के अश्लील फोटो एवं वीडियो उसके पास भेजे गए थे। साथ ही 27 अगस्त को एक इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी किशोरी के फोटो और वीडियो अपलोड कर परिजनों के पास भेजे जाने की जानकारी मिली थी। परिजनों द्वारा इस संबंध में जब विरोध और शिकायत किया गया तो आरोपी पक्ष के द्वारा गाली गलौज मारपीट इत्यादि किया गया और धमकी भी दी गई। इसी मामले में अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र में ही एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। इस मामले में भी पुलिस ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। विधि संवद अनुसंधान करते हुए एफएसएल की टीम के माध्यम से भी जांच की गई और पीड़िता को हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा गया। साथ ही नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करते हुए कांड के आरोपी सिराज अंसारी पिता रियाजुद्दीन अंसारी साकिन रतनपुरा थाना विजयपुर को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान और पीड़िता के परिजनों से पूछताछ में यह मामला सामने आया कि 25 अगस्त को पीड़िता का भाई कबड्डी खेलने के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान पीड़िता को फोन कर उसके भाई के साथ बेरहमी से पिटाई किए जाने की बात कहकर एक स्थान पर उसे बुलाया गया। पीड़िता के बताए गए स्थान पर पहुंचने पर पूर्व से घात लगाए अभियुक्त सिराज अंसारी और उसके 3 अज्ञात सहयोगियों ने पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म की। इस आरोप के आधार पर अब मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही अन्य उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अब उसके बयान पर पुलिस अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए छापेमारी में जुट गई है। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपी के रामपुर गांव में 2 ट्रैक्टर आपस में ओवरटेक करने लगे। सड़क पर दोनों के बीच आगे निकलने की होड़ मच गई। दोनों ट्रैक्टर चालकों ने एक गांव के सिंगल रोड पर ट्रैक्टर को आगे निकालने के लिए ओवरटेक शुरू किया। इसी दौरान सामने से आ रही एक बाइक सवार ट्रैक्टर के चपेट में आ गए, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक स्थानीय तैया दीक्षित गांव के राम तपेश्वर तिवारी के 52 वर्षीय पुत्र संजय तिवारी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है, जबकि दूसरे ट्रैक्टर पर आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर सवार होकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लोगों ने मृतक को आवश्यक मुआवजा और आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग शुरू की, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझाया बुझाया और फिलहाल इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसके चालक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर सड़क हादसों पर प्रशासन सख्त है। ब्लैक स्पॉट सुधारने का निर्देश दिया गया। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तत्काल सुरक्षा उपाय करने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में हिट एंड रन मामलों में भी मुआवजा भुगतान, सड़क संकेतक, लाइटिंग और यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थानों का स्थलवार विश्लेषण कर ठोस कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्या और शिकायतें रखी। पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से सभी की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट भी निवारण किया गया। इधर कटिया थाना की पुलिस ने आईटी एक्ट में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी महेश यादव पिता नागेंद्र यादव साकिन भोपतपुर थाना कटिया का निवासी है। इस पर पहले से ही मामला दर्ज था, पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसे पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर एक युवती का फोटो वीडियो वायरल करने का आरोप है और इसी मामले में अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास कांड में फरार चल रहे एक अप्राथमिकी अभियुक्त सचिन सिंह को गिरफ्तार किया। यह बलुआ टोला के संतोष सिंह का पुत्र है और जादवपुर थाना क्षेत्र का ही निवासी है। मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर आज इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस पर हत्या के प्रयास का मामला पुलिस ने दर्ज किया था, तभी से यह फरार चल रहा था। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हैं। घायलों में चंद्रमा राय, कलावती देवी, रानी देवी, श्याम कुमार, कोयला देवी इत्यादि का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, दिशा की बैठक में विकास कार्यों का हुआ निरीक्षण, तो वहीं भविष्य की योजनाओं पर बनी रणनीति। शहर के एक निजी होटल में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार की सूचना पर की गई कार्रवाई। खुद के अपहरण का साजिश रचकर फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में 2 आरोपियों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा, मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
14: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
15: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
16: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
15: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
16: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
15: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
16: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
17: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
15: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, बिल्कुल माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।
10: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे और समय 9:26 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो पुराने गाने के फरमाइश करना है। ये बातें तो हर रोज बताई जाती है आप सभी के बीच, तो चलिए फटाफट गाने सुनना है तो अभी मैसेज टाइप करें जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं सारी बातें दर्शाएँ और सेंड करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे और कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सना भैया नमस्ते, MD नौसाद दरभंगा भजीतपुर से और मुझे एक गाना सुनना है, फिल्म नजायज का। गाने का बोल है बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया और बोतल भी उठा लाया। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाना जिए तो जिए कैसे बिन आपके, फिल्म साजन। नाम शगीर अंसारी फ्रॉम असम से मैसेज किए हुए, डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी को। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और जो भी श्रोतागढ़ हमारी आवाज़ सुन लें, कार्यक्रम सुन लें, अपने पसंद के गाने इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट मैसेज करें, जो छोटे फ़ोन से भी हो सकता है और बड़े फ़ोन से भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का कॉल ना करें, हमें कार्यक्रम को प्रसारण करने में दिक्कत होती है और दिक्कत होगी तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो आप लोग फ़ोन ना करें, ऑडियो या वीडियो कोई भी कॉल ना करें। आप गाने सुनना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करें हमारे नंबर पे और हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि प्लीज़। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश होती है तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे जो भी मैसेज हमारे पास पहुँचेंगे उस मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। बशर्ते आपसे निवेदन है जो भी श्रोतागढ़ फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन ना करें, मैसेज करें। फ़िलहाल हम MD नौसाद जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो एमजी 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कमाल के गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था एमडी नवसाद जी के तरफ से, और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश ब्लेस सविया फील्ड गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में कमलेश जी, और बने रहे हमारे साथ, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचाते हैं मधु सरिया से, राजू कुमार कहते हैं सॉन्ग सुनना है, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, बिल्कुल प्यारे सॉन्ग की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं सन्नी पटेल दलिया से बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम से जुड़ चुका हूं, और सॉन्ग ना कजरे की धारना मोतियों के हार प्लीज सर प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे, और आगे गाने की फरमाइश हमारे श्रोतागण तेजपुर शाम से सगीर अंसारी जी किए हुए हैं, और डेडिकेट किए हुए हैं दिलीप जी को, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, जियो तो जियो कैसे बिना आपके।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707066575।
8: Excuse me boss, you have a text message.
9: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि हाय हेलो, मैं MD महमूद, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में MD महमूद जी। और केरला से मैसेज किए हुए, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़े हैं, जब किसी से हद से ज़्यादा प्यार हो जाता है और जब आपके एक दूसरे से रिश्ता टूट जाता है तो यही सॉन्ग याद आता है। क्या सोनू बाबू, पर सॉन्ग हिट है। वीरेंद्र गुप्ता भैया मैसेज करते हैं, चलिए अच्छे गाने के फरमाइश थी सगीर अंसारी जी की तरफ से, शायद दिलीप जी का याद में गा रहे थे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे कमलेश जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, आया कोई सपनों में शहजादा, चुरा के मेरा दिल ले गया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम सभी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 94.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज कहा जा रहा है कि सुनो सर हमारा नंबर तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को किए हुए हैं रंजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं ईमान डोल जाएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए आपको धन्यवाद रेडियो रेमशम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, ओहो चलिए आपकी भी मैसेज हम शामिल कर देंगे और फरमाइश पूरा कर देंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि अब तो मेरा सुना दीजिए। बिल्कुल आप लोगों की फरमाइश तो पूरा कर ही रहे हैं, एक एक करके फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी ईमान डोल जाएंगे के साथ।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और कमाल के गाने सुन रहे थे हम सभी, ईमान डोल जाएंगे। और यहाँ पे आगे मिसेज कुछ पहुँचे हुए, तो मिसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि ए भाई, इन हसीनों के चक्कर में पढ़कर अपना ईमान मत डोलाइए, नहीं तो आगे आप पर FIR हो जाएगा, संभल कर रहे। मैसेज के साथ सलाह देते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर गाना बजाने के लिए धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि पराई फिर लेकर क्या करोगे, किसी की हीर लेकर क्या करोगे, मैं जब तक सामने हूँ गुनगुना लो मेरे, मर जाने के बाद मेरा तस्वीर लेकर क्या करोगे। बिल्कुल बात तो सही है। मैसेज करते हैं बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी, कहते हैं कि मस्त रोमांटिक सॉन्ग, ईमान डोल जाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं, मैं रोहित देहरादून से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, यूपी 36

मेरा भी शौक था, चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करने वाले हैं और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं। सन्नी पटेल जी और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, फिर भी कितने सुंदर। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश करते हैं एमडी महमूद जी केरला से, और गाने की फरमाइश करते हैं साथी मूवी से कोई भी गाना। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं शन्नी पटेल। चलिए आपको धन्यवाद ये रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग, बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अभी मैसेज टाइप कर रहे हैं। चलिए टाइप करते रहिए और कार्यक्रम के साथ एंजॉय करते रहिए। आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि जब तक मन जब आप में, जब तन मन जब आपस में पवित्र हो तो अपना प्यार का सादगी भी किसी परी की सुंदरता से कम नहीं लगता है, एक दूसरे को अच्छा सॉन्ग। बिल्कुल काफ़ी प्यारे सॉन्ग की फरमाइश थी सन्नी पटेल जी की तरफ से, और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, इनकी भी राय अच्छी है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि पढ़ने वाले भी तेरा दीदार करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा, मैं लिखूंगा जब शायरी तुझ पे तो मेरी डायरी का एक एक पन्ना भी तुझसे प्यार करेगा। और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं रोहित जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और तो चलिए एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी हो ही रही है, आगे गाने के साथ एंजॉय किया जाए। और महमूद जी के गाने की फरमाइश साथ ही मूवी से प्ले करते हैं और सुनते हैं।

94 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम SMS फरमाइश का चल रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं गाने साथ ही मूवी से महमूद जी की फरमाइश पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सोनू भाई गाना प्ले करने के लिए, मैं तो खाना खा लिया और बर्तन धोने चला। तो बिल्कुल और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या है उस साथी को भूल गई, आप भूल गए कि आपके साथी, बताए सोनू बाबू पहले कौन भूले। अब तो महमूद जी ही बता सकते हैं और हम सभी तो अभी जानते नहीं हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं राजू जी मधुसरिया से और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है फूल मांगू ना बाहर मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे राजू जी और आपका फरमाइश इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश रहेगा क्योंकि समय भी हो गए हैं 10:16 कार्यक्रम की समाप्ति का समय। तो कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि कल आप सब बिल्कुल मैसेज करें, कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश हम कल पूरी कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सभी रेडियो 94 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
3: जी, मेरा असली नाम जॉनी।
2: और नकली?
3: नकली भी जॉनी।
2: इसके अलावा भी कोई नाम है?
3: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: प्रीतु, तुम अपने नाम का अर्थ जानती हो?
1: नहीं तो तुम बता।
0: प्रीतु कहते हैं मौसम को।
1: और अरुण?
0: अरुण कहते हैं सूरज को, जिसके चारों ओर ऋतु घूमती है। कहाँ जा रही हो?
1: मेरा रास्ता छोड़ो।
0: जाइए।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव

0: विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश बाग चंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods. As rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas, death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support, and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: करे क्या?
1: क्या कॉल न की हो?
0: कॉल करे क्या?
1: कॉल न की हो?
0: ना ना ना, अरे कॉल करे क्या?
1: कॉल न की हो?
0: अरे मम्मी से छुप के फोन किए हैं।
1: तो
0: कॉल करे क्या?
1: कॉल न की हो?
2: तू तो बड़ा भोला है, कुछ नहीं समझता है, तुझको समझाने का रब जाने क्या रास्ता है।
1: हाँ? क्या बोली?

0: अरे हम तो वीडियो कॉल का बात कर रहे थे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Don't touch my hair।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: कहो मिल गई बंगलिनिया से छुट्टी?
2: अरे तारातारी खाना दो ना, खा के फिर ड्यूटी पर जाए के बा।
3: बंगलिनिया फोन कर छे
1: आए। अरे तोड़ा तारातारी कर ले से किचू होबे ना। ला हुड़ ला।
3: ठीक अच्छा हम आवत ने।
1: एक सकाले के गईल गईल बिकाले आइल ह। अबर पता न कहाँ जाए लगा हता। की गो चुपचाप बैठबे कि लात खाबे?
4: झूठो बंगलिनियन के बदनाम करता इस साला। खुद पे बड़का ठरकी हा।

0: के बच्चा, सुअर के बच्चा, गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा, केकरो बच्चा इतना ढेमना ना हो सकेला जितना ई ढेमना गिरी आदमी के बच्चा होके करेला।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: inshallah.
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो
5: हेलो। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
6: हेलो
7: जी, नमस्ते।
6: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: थैंक यू। मैं अनिल बोल रहा हूँ सिवान से, छोटपुर से।
6: जी जी, क्या हाल चाल है अनिल जी?
7: बढ़िया है, अपना बताइए।
6: जी मेरा भी बढ़िया है।
7: चलिए अच्छा सा ही काम है। और एक चीज, आपको जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं।
6: जी जी, और आपको भी।
7: जी, और बताइए।
6: जी सब बढ़िया है। सब क्या हो रहा है?
7: अभी काम पे हूँ, सोचा फोन कर लूँ तो फोन मिलाया तो लग गया। 4-5 बार ट्राई किए हैं, उसी में लग गया।
6: वैसे क्या करते हैं?
7: हम मेडिसिन शॉप पे काम करते हैं।
6: अच्छा।
7: जी, साथ में आपका रेडियो बहुत सुनते रहते हैं क्योंकि नजर छिपा कर सुनना पड़ता है ना।
6: अच्छा।
7: मान कर चलिए कि ऑनर साहब सुनेंगे या देखेंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उनको लगेगा कि बस ये गाना सुन रहा है या मोबाइल चला रहा है, तो इसलिए सब देख के चलना पड़ता है। बट रेडियो का इतना लगाव है कि हम छोड़ते नहीं है, हर चीज सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुनते करते हैं।
6: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। फिर आपकी फरमाइश बता दीजिए।
7: गाना हमको सुना दीजिएगा आशिकी फिल्म से, सांसों को जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक कलम चाहिए, यही वाला।
6: ओके, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
7: पहले आपको और आशी सोनी जी को और मनोरमा जी को, सोनू सर को, प्रमुख भाई को, इरफान भाई को, थाने से रामा जी भैया को, खेड़ा से भोला भैया को, और आसारिया वार्ड नंबर तो याद नहीं है, आमद अभी जुड़ते हैं उनको, और बाकी जितने लोग छूट रहे हैं सभी को।
6: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: जी थैंक यू।
6: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया।
1: क्या हो रहा है वैसे?
0: वैसे कुछ नहीं, आप लोग से बातें हो रही हैं।
1: सब तो बढ़िया है।
0: जी जी सब बढ़िया है।
1: मस्त चल रही है।
0: और आपका हुआ?
1: हम तो सोए हुए थे।
0: अच्छा रे,
1: अभी गेस्ट आप आए तो लगा ले।
0: वैसे आपका नाम?
1: सुरभि कुमारी।
0: अच्छा जी, तो सुरभि जी आपकी तबीयत सही तो है ना?
1: जी सही है।
0: अच्छा,
1: आप कैसी है? आपका लेकिन तबीयत खराब है?
0: मुझे पहचान नहीं है आप। अच्छा,
1: मनोरमा मैम।
0: जी जी
1: सही है।
0: हाँ
1: सच में?
0: सच में कैसे पहचान गई?
1: आपका आवाज थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है आज।
0: अच्छा जी,
1: अच्छा जी बोलती है ना, यही से पहचान ली आपकी।
0: अच्छा, मतलब आवाज से पता चलता है।
1: अच्छा जी बोलती है। उसी को लग पता है, बहुत दिन से आप कॉल भी नहीं लगा रहे थे।
0: क्यों?
1: आप नहीं आ रहे थे इसलिए।
0: नहीं नहीं, इससे पहले भारती भी रिकॉर्ड कर रही थी।
1: और कितने दिन के बाद तो आपसे बात हो रहा है?
0: जी जी आज बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं।
1: वैसे आते थे लेकिन बात नहीं होता था, मैं कॉल आपके लिए लगाती थी।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: सुना दीजिए। आई लव यू लव मी।
0: जी
1: गाना का बोल है गाना आई लव यू लव मी।
0: अच्छा, क्या गा के बता सकती है मुझे दो लाइन?
1: दूसरा गाना गा सकती है?
0: अच्छा तो दूसरा ही गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए ही गा दीजिए।
1: कसम है कसम से हमको प्यार है तुमसे, अब ये प्यार न होगा मेरे रंग से। हेलो
0: जी
1: मैम,
0: आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे।
1: सही लग रही है तो बहुत, आपसे बात करके मेरा तबीयत सही हो गया है।
0: अच्छा जी, ये बात है। तब तो हम आपसे डेली बात करेंगे ताकि आपका तबीयत हमेशा सही रहे।
1: हम भी डेली कॉल करेंगे ताकि आपसे बात हो।
0: जी जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है
0: जी। और आपकी दीदी ठीक है?
1: हाँ मेरी दीदी।

0: ठीक है।
1: घर में बाकी लोग भी कैसा है लोग?
0: सब कोई मम्मी पापा भैया सब कोई अच्छे हैं।
1: चलिए बढ़िया।
0: आपके फैमिली में सब कोई है ना?
1: यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया
0: है
1: जी। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू
1: जी। आपसे तो बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन अभी दूसरा कॉल आ रहा है तो उन लोगों को भी तो देखना पड़ेगा।
0: हाँ ये तो जरूरी है ना, वहाँ देर कर रहे हैं आपकी
1: जी।
0: ठीक है मैम प्ले कर दीजिए।
1: ठीक है तो गाना डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: हाँ आपको, भारती मैम को, सोनू सर को और डायरेक्टर सर और मेरे पूरे फैमिली को जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
1: ओके तो सुरभि जी प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम थैंक यू।
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो, नमस्ते।
6: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: मैं लाल बाबू कटघरवा से।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
7: ठीक है, अपना बताइए। बारिश हो रहा है कि नहीं?
6: बारिश तो नहीं हो रही है, मौसम बना हुआ है।
7: चलिए ठीक है। एक शिकायत है आपके।
6: जी।
7: दो तीन बार कॉल लगाए थे, 12 बजे वाला भी शुरू चलता है।
6: जी जी,
7: उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फिल्म का नाम है आपका जीगर।
6: गाने के बोल,
7: आए हम बराती बरात लेके, आए हम बराती बरात लेके।
6: ओके सर, गाना डेडिकेट भी है
7: और गुड़ी है, गुड़िया है, सूरज, रंजीत और आप हैं अर्गती।
6: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: नमस्ते।
6: नमस्ते, सुनते ये सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: अस्सलाम
1: वालेकुम। अस्सलाम जी। बढ़िया बा, अपन बतावल जाओ। ठीक है, ये काम बा वैसे का होता अभी?
0: बस रहो, इंतजार होता की बात करे की ना।
1: चलो बात कीजिए। ठीक बानी, अपन बताई।
0: हम ठीक है, बात खराब चलता।
1: हाँ हाँ, वो तो मौसम की वजह से
0: बुखार तो दवाई खा रहा हूँ, तो फिर भी ना खासी बुखार आ जाए। कहाँ तुम जीरो से बातें चल रही हो?
1: ए जी का करी, भारती जी का भी रिकॉर्डिंग चलत रहला तो यहाँ के करत रहनी हूँ।
0: बहुत दिन से इंतजार कर दिन ग्रह नहीं किया, बात में अपनी बानी हूँ के काम करता नहीं।
1: चलिए आज बात हो गई, वैसे रोज से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके।
0: अच्छा जी। बात हमू कह रहे हैं कि मैम से बात करके ठीक लगेगा, मैम से बातें नहीं हो जल्दी।
1: चलिए आज भैया।
0: आज बहुत दिन बाद बात भइल। तब नाश्ता से पहले बनी नो?
1: हाँ हाँ भाई, ला रहा हूँ।
0: नाश्ता से हो गएगा?
1: चलिए बढ़िया के बात। ऐसे का उतर लगे?
0: अब जाओ सुबह में दवा खा के, थोड़ा मैं हल्का ला लो तो खाना बैठे नहीं है, लेकर आ जाएगी स्कूल। चावल खाली बनाओ कर ला, सब्जी रोटी बना लो, नीचे बना खाली सफर बनाए तो खाई लो।
1: चलिए ठीक है बा, ऐसे
0: ठीक बा।
1: ये सब के बढ़िया बा। तो आज की फरमाइश बता दी?
0: आज के फरमाइश बता देते, हम भूलते तेरे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
1: कई दो लाइन गा के बता सकते नहीं?
0: गा तो तेरे को लेकिन तबियत सही नहीं गला।
1: अरे आवाज ठीक आवाज सुना दी, हम खुश हो जाए।

0: तेरा मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
1: सुन लानी बड़ा नीमन गाना नहीं लेकिन
0: नीमन गाना।
1: हम जब भी रघुआ से बात करें नहीं, हम गाना के फरमाइश जब रघुआ करे नहीं ना, तो हम गवाइये के माने पूछे
0: नहीं। सब लोग हंसी लिख के बकलो गाना गाओ तो ना
1: ना ना केहू नहीं के बोल सकत ऐसा, जेकर आवाज अच्छा लोग से गवा समझे के।
0: तो चलो चलो ठीक बन रहा
1: ठीक बा।
0: मैम का कर चलाओ तुम तो
1: यहाँ के अपन काम में लागल बनी।
0: हाँ कल हम फोन कहीं को आली फोन कहीं लेकिन फोन तो ना उठाई, मतलब हमको फोन उठाई थी बड़ा चीनी में दाम मिलत रहे ऑनलाइन हम बैठे रहे
1: तो हम मिलवे की ना
0: फोन है ना उठाई ना मिली कहाँ से, अब तो लेट हो गया, लेट हो गया तो लेट हो ही ना।
1: अच्छा कॉल जाए की फिर लेके आये की हमने तो जुटल नहीं।
0: हाँ कॉल के माध्यम से हम जुटा दे तो चीनी में दाम मिल रहे रंजन जी जब जुड़े नहीं तो हंसी अलग दूल नहीं। अगला हफ्ता अगला बुधवार सुनेंगे कहा था कि फिल्म में लोग पकड़ा तो तैयार हो जाला, हम पकड़े रहनी तो गाड़ी सुनने के मिलेगा।
1: हाँ खूब सारी लिखे नी लोग।
0: हाँ हम सोचे की तुम्हारा फोन दिनों ना लगा, हम सोचे की फोन लगे तो कहते की गलत जगह टकरा गए लोग वैसे गाड़ी सुनने के मिलेगा फिल्म में तो गलत जगह टकरा गए लोग जी
1: सबका। और ऐसे नाम ना बतानी अपन
0: रेस को बोलते नहीं उसे ठान लगती से
1: ना ना हम तो जानते बन लेकिन आगे वाला लोग के भी तो पता चले वैसे पूछे पड़ेगा। ठीक बारिश माजी तो प्ले करते नहीं गाना
0: ठीक है मैडम
1: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्ते मैम।
6: नमस्ते जी, बहुत बहुत

0: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: रोशनी बोल रही हूँ।
0: जी जी, कैसी हैं रोशनी जी?
1: ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा है?
1: अभी लंच करने आए हैं।
0: अच्छा, अभी कहाँ हैं आप?
1: घर पर आ गए हैं।
0: अच्छा, वैसे क्या करती हैं रोशनी जी?
1: पढ़ाई।
0: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
1: 7।
0: अच्छा, तो अभी स्कूल से आ रही हैं?
1: हाँ।
0: चलिए बढ़िया,
1: लगा थे आपसे बात हो गया।
0: जी जी, वैसे रोशनी जी आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: पठानकोट से।
0: अच्छा जी,
1: आप ठीक हैं?
0: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
1: नाश्ता हो गया?
0: हाँ हो गया।
1: मेरा गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: पियर फ्रॉक वाली।
0: दो लाइन गा के बता सकती हैं मुझे?
1: खैर नहीं है।
0: पवन सिंह का गाना है?
1: हाँ।
0: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बढ़िया हैं। और हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है, अभी आपके यहाँ हो रही है क्या?
0: हमारे यहाँ तो बरसात नहीं हो रही है लेकिन मौसम बना हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो गिर रहा है पानी, सुबह से ही गिर रहा है, अभी भी गिर ही रहा है।
0: अच्छा चलिए तो फिर बढ़िया। वैसे नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
1: जी नाश्ता भी हो गया, मेरा तो भोजन भी हो गया।
0: अरे वाह,
1: आपका हुआ कि नहीं?
0: नाश्ता हुआ है।
1: अच्छा
0: तो फिर आज की फरमाइश क्या है?
1: आज की फरमाइश है मैडम जी, पिक्चर का नाम है मासूम और उसमें गाने के बोल है, काले लिबाज में गोरा बदन ऐसा लगे ईमान से जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की कान से।
0: क्या आप गा के बता सकते हैं दो लाइन?
1: यही है मैडम दिक्कत।

0: मनीष से मासूम पिक्चर है मैडम जी ये।
1: जी जी और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
0: मैडम जी। है गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है और भारती मैम सोनी मैम को।
1: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी, जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हम मनोदीन अहमद झुमरिया से बोलते हैं।
5: जी जी, क्या हाल चाल बा?
6: ठीक बा सर, आप और सुनाई?
5: जी हमारे भी बढ़िया बा। इससे क्या होता है अभी?
6: क्या होता, बोल के नंबर मिला होता नहीं, वही वजह से लगता नहीं है। हवा बहुत है, निमन लगता है। दो तीन दिन से ऐसा आराम भइल बा। हाँ सर, चलता नहीं
5: से आराम बनो?
6: हाँ बहुत आराम बा, बहुत आराम बा।
5: चलिए बढ़िया बा। खाना वाना हो गया?
6: हाँ खाना खा चुका हूँ। ठीक बा, गाना सुना दे।
5: बता दी,
6: गम उठाने के लिए मैं तो जी जाता, मेरे हजूर के हो गाना।
5: अच्छा, गाना सुनाना भी चाहते हैं?
6: हाँ आप सुनिए, हम सुने, हमारे जियासुद्दीन भाई सुने और रिमझिम परिवार के जितने लोग है सब लोग सुने।
5: ठीक बा, तो गाना प्ले करता नहीं?
6: हाँ ठीक बा, आवाज आई
5: ये गाना काल ना तो आज चलिए रे। ठीक बा, तो प्ले करते हैं गाना।
6: ठीक बा, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
7: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। मैं जाकिर हुसैन गोपालगंज से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
0: बस कुछ नहीं मैम, क्या होगा, काम धंधा छोड़ कर क्या होगा। हेलो
1: जी, वैसे क्या करते हैं आप?
0: बस मैम पढ़ाई कर लिए हैं। पढ़ाई करके क्या करें?
1: कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप?
0: मैम 9 तक पढ़ाई किए हैं।
1: अच्छा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं?
0: जी मैम, मजबूरी था उसी छोड़ दिए थे।
1: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है।
0: जी मैम गाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए।
0: जी गाना सुनना चाहते हैं, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं आप?
0: हाँ मेरा दोस्त लोग है। हाँ हाँ, नाम रखेंगे सुखिया यूसुफ, संजीत और मुकेश शर्मा, जितलेश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, उसके बाद मेरा दोस्त संदीप है, सुशील है, गोविंदा है, उसके बाद बहुत लोग हैं। और आपको भी, आपको रेडियो पूरे परिवार को।
1: क्या आप हेलो मैचेस में पहली बार कॉल किए हैं?
0: नहीं मैम, हम तो कॉल करते हैं, हरदम कॉल करते हैं, जब भी कॉल लगेगा तब भी कॉल लगाते हैं।
1: अच्छा जी, शायद मुझसे पहली बार बातें हो रही हैं।
0: मैम पहली बार तो आप सोमवार का नहीं है क्या?
1: नहीं, भाभी जी रिकॉर्ड कर रही थी।
0: हाँ तो उससे बात हुआ है।
1: अच्छा
0: जी,
1: ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
0: ओके मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ओके।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में। जी बढ़िया है, अपना बताइए। अब क्या हो रहा है?
6: काम कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, काम नहीं हो रहा है।
5: अच्छा,
6: बारिश भी आ रही है, काम भी कर रहे हैं।
5: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: पंजाब से। पंजाब से?
5: अच्छा, पंजाब। और आपका नाम?
6: मेरा नाम परमात्मा कुमार, काला मंदिर घर पड़ता है, खास के बगल में गोपालगंज।
5: अच्छा जी, तो अभी बारिश हो रही है उधर?
6: कल भी हो रहा है, बारिश आज भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। गाना सुनना है? मतलब
5: बता दीजिए,
6: सिलसिला से कोई भी गाना बजा दीजिए।
5: ना मुश्किल से कॉल किए, आप ही बता देते तो अच्छा रहता।
6: बताया नहीं, चकरलाल का बजा था, सिलसिला से बजा दीजिए।
5: कोई भी
6: सोमवार को कॉल लगाए थे तो आप रिसीव करके बोले नहीं।
5: जी जी, नेटवर्क इशू होगा इसी की वजह से नहीं आवाज आया होगा।
6: बारिश उधर कैसे मौसम आपका उपाय?
5: मौसम भी तो बादल छाया हुआ है।
6: इधर तो कल से बारिश हो रहा है, 8 हो रहा है, कल 3 बजे बारिश हुआ, बहुत ही घंटा 4 बजे तक बारिश हो रहा
5: है। मौसम बना हुआ है कि बारिश आएगा ऐसा लग रहा है।
6: फिर अगर गाना बजाइए तो वही आपने पसंद का।
5: जी तो हम तो बोल रहे हैं आप बताते तो ज्यादा अच्छा रहता।
6: नहीं नहीं, आप बढ़िया अच्छा बजाते हैं, आप ही बजा दीजिए।
5: अच्छा चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो बजा देंगे। और वैसे
6: आज बजेगा कल?
5: आज नहीं तो कल बजे जाए। दोनों दिन
6: संतोष को और धनंजय और बिजली और सारे जितना रेडियो सुनते हैं सभी को।
5: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: हाँ जी, हाँ
5: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगीन 90.4 FM में।
1: कैसे हैं मैम?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम। उधर का मौसम का क्या हाल है गोपालगंज का?
0: यहाँ गोपालगंज का मौसम तो सुहाना हुआ है, हवा चल रहा है।
1: इधर तो हम लोग बारिश से परेशान हो गए हैं मैम। दो चार दिन पहले से बारिश हो रही है, अभी लगातार 7-7 तारीख तक बारिश लगातार दिख रहा है, बहुत जोरों से बारिश हो रही है।
0: अच्छा जी
1: जी जी जी
0: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सुधीरपुर जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: ओके
1: जी जी मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपका रेडियो रिमझिम का।
0: जी जी
1: लगभग लगभग प्राय सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, समय मिल पाता है तो।
0: अच्छा वैसे क्या करते हैं आप?
1: जी क्या बोले?
0: वैसे क्या करते हैं आप?
1: जी मैं शिक्षक हूँ जी, समय निकाल के थोड़ा कॉल कर लेता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है।
1: जी जी आज सुना दीजिए फिल्म में धर्मेंद्र और रेखा फिल्म है, गजब फिल्म का गाना सुना दीजिए। गीत के बोल हैं, ये हवा ये बता तुझको क्या है पता, अबके बरस जो बरसेगा जो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा, लता मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: नहीं मैं गाना उतना अच्छा नहीं आता है। जिसके बोल हैं, ये हवा ये बता तुझको है पता, अबके बरस जो बरसेगा जो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा। जिसके बोल इस प्रकार है मैम।
0: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: नहीं नहीं ऐसे हमको तो गाना नहीं, लेकिन गाने के बहुत शौकीन हूँ मैम।
0: जी जी फिर भी बहुत अच्छा गाया
1: जी, और डेडिकेट रहेगा मैम सबसे पहले आपको, रेडियो रेंजिंग के जितने आरजे सब हैं सबको, पूरे टीम को, और रेडियो रेंजिंग के जितने भी प्यारे प्यारे श्रोतागण हैं देश विदेशों में सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
1: जी मैम कॉल रिसीव करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी आपका।

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: जी, मैं समीर चौराव।
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: चौराव।
1: चौराव,
2: हाँ।
1: अच्छा जी।
2: हेलो,
1: तो क्या हाल चाल है आपका?
2: जी बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा है?
2: बस करीब है।
1: चलिए बढ़िया है। खाना वाना हो गया आपका समीर जी?
2: हाँ हो गया।
1: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आप?
2: गाना सुनना है हमको, मुझे तेरी जरूरत आज भी है, तोड़ के जाने वाले।
1: समीर जी, आप क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं मुझे?
2: जी जरूर।

0: जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है।
1: जी समीर जी, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं।
2: थैंक यू।
1: आप पहली बार कॉल किए हैं? हेलो माय कृष्णा।
2: पहली बार नहीं, हम पुराने श्रोता हैं रेडियो रेंज के, काफी दिन के बाद कॉल किए।
1: अच्छा जी,
2: 2008-09 से
1: सुन। चलिए बढ़िया। तो समीर जी प्ले करते हैं गाना आपका? जी मेरा नाम मनोरमा।
2: जी प्ले
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी भारती जी।
1: नहीं
0: मनोरमा जी।
1: जी जी
0: जी कहिए, क्या हाल चाल है?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम लोग भी ठीक है, सिलाई हो रहा है। आपका कार्यक्रम चलते रहता है और सिलाई होता है।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम है साहब मास्टर, ग्राम धनाव से, जिला रोहतास, बिहार से। पहचान गए?
1: पहचान गए।
0: आज भारती जी रिकॉर्डिंग से चले गयी, यार चले गए ना?
1: जी जी, उनका टाइम मिल गया तो चली गई।
0: अच्छा, इसीलिए गाना बज जाएगा मैडम जी शाम के 5 बजे।
1: जी रहेगा कि गाना आज ही चले।
0: रेडियो तो हम 1991 से सुन रहे हैं, 90 से। जी पहले काम सीखने जा रहे थे तो उस्ताद के पास टेप रिकॉर्डर था, कैसेट वाला। उस समय में 15 रुपया के 18 रुपया का कैसेट मिलता था। इसके बाद उसके बाद में फिर तो रेडियो रखे हम, संतोष रेडियो, बहुत दिन चलाए हम, बैटरी वाला, 4 बैटरी डालते थे हम लोग। ऑल इंडिया रेडियो और पटना चलता था, रसमंजरी प्रोग्राम का गीत माला हफ्ता में हम लोग सुनते थे, उसी टाइम से हम गाना सुनते हैं।
1: अच्छा, तो अभी कैसे सुनते हैं, रेडियो से ही या फिर मोबाइल ऐप के जरिए?
0: ये तो मोबाइल से, आपका ऐप से सुनते हैं, मोबाइल से।
1: अच्छा अच्छा,
0: फिर 2 साल हो गया आपका मोबाइल में किए तो देखे कि रेडियो रिमझिम बजाए तो अच्छा लगा, तो फिर 2 साल से ही सुन रहे हैं हम लोग ज्यादा।
1: तो रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है?
0: सबसे कार्यक्रम ईयरबड्स चॉइस, हेलो फरमाइश।
1: अच्छा,
0: और अब तो अंताक्षरी खत्म हो गया ना, तो हम हर हफ्ते भाग लेते थे। दिव्या जी थी तो 2-2 बार 3-3 बार चांस मिलता था। जी
1: बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: आज की फरमाइश है नगीना मूवी का गाना है, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं।
1: जी, सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ और भारती जी को और रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को और जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को, अब हम तनाव से रोशन थ्रिलर में सुनेंगे हम लोग।
0: जी जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, भारती जी नमस्ते। हम नवसात मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से।
7: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, शिकायत है आपके लिए कि मैं कभी भी मैसेज करते हैं यार बॉस के चुट में मेरा गाना जल्दी नहीं बजाया जाता है, क्यों?
7: अब ये तो भारती जी बता सकती हैं।
6: आज विक्रमगंज में जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को गाना सुनाना चाहते हैं, वर्षा पानी वाला गाना बजाते।
7: आपकी आवाज कट रही है।
6: टिप टिप वर्षा पानी वाला बजा दीजिएगा गाना।
7: अच्छा, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं?
6: हाँ, जो जितने विक्रमगंज काराकाट में जितने लोग हैं सभी को सुनाना चाहते हैं। नाम तो धरेंगे तो बहुत लोग हैं। आज बच जाएगा
7: जी? आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
6: आपके एरिया का मौसम कैसा है?
7: मौसम तो सुहाना बना हुआ है, हवा चल रहा है।
6: चलिए ठीक है मैम, बजा दीजिएगा।
7: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी के लिए दिल से प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: मैं दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, शो सुन रहे थे।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम तो बिल्डर हैं, ऐसे मशीन भी चलाते हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: पावर प्रेस चलाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
1: क्या करें, रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: और सब अपना सुनाइए।
0: जी सब बढ़िया है आपकी दुआ से।
1: ये आप आज का टाइमिंग बढ़ गया।
0: क्या ना, इससे पहले भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर मेरा चालू हो गया 12 से 12:30 एक बजे तक, क्योंकि कॉल बहुत कम आए थे।
1: अच्छा अच्छा, तब भी तो लग नहीं रहा था।
0: तो स्टार्टिंग में लोग बराबर करते हैं, लो जैसे टाइमिंग खत्म होता है कॉल कर आना बंद हो जाता है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: आज की फरमाइश क्या, करने के बाद तो दिमाग से ही उतर जाता है। चलिए ठीक है, दे रहा हूँ, यही यही बजा दीजिएगा। ये कर बालमा बसे परदेश सखी।
0: ओके, वैसे तो अच्छा तो गा रहे हैं आप।
1: तो फिर से गाएंगे।
0: तो गाइए।
1: ये कर

0: ठीक है यही सुना दीजिए, दिमाग से उतर गया आज।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं।
0: डिप्रेशन में आ गया।
1: अच्छा जी,
0: क्या करे, चलिए फिर जो भी हो काट छाट के बजा दीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: प्ले कीजिए
1: जी। रेडियो रिज्यूम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
4: Hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी मैम, नमस्ते।
6: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: मैम, मैं संगम पासवान बोल रहा हूँ, ग्राम धनौती, पोस्ट कटिया, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार से।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
7: मैं मैम बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और रेडियो रिमझिम 90.4 FM में काम करने वाले सब मेरे दोस्त लोग कैसे हैं?
6: जी यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
7: अरे भैया मैम जो भी है। हाँ मैम, और गोपालगंज की अभी मौसम कैसा है?
6: गोपालगंज की मौसम तो सुहाना हुआ है, हवा चल रहा है।
7: अच्छा अच्छा
6: जी, और इधर?
7: चलिए बढ़िया है मैम, मैं चाहता हूँ आज कुछ गुनगुनाने के लिए।
6: जी बिल्कुल।
7: हमारा जिला के अलगे पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलगे पहचान बड़ुए, भाषा हटे भोजपुरी इतिहास बड़ुए, भाषा हटे भोजपुरी इतिहास बड़ुए, हम धम हटे जिला के पहचान हो, रेडियो रिमझिम देवेला संस्कार हो, हम धम हटे जिला के पहचान।

बढ़ुए हमारा जिला के अलग पहचान बढ़ुए हमारा जिला के अलग पहचान बढ़ुए भाषा भोजपुरी लागे ला मिठास हो अरे जिला गोपालगंज रचे इतिहास हो भाषा भोजपुरी लागे ला मिठास हो आ जिला गोपालगंज रचे।

0: जिला के अलग पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए। संगम नाम है हमार घर है धनौरी, थाना है कटिया, जिला है गोपालगंज नगरी। थाना है कटिया, जिला गोपालगंज, संगम नाम है हमार गोली भोजपुरी इतिहास है। सब रेडियो रिंग सुने वाले, अरे दर्शक लोग के प्रणाम बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए, हमारा जिला के अलग पहचान बड़ुए। मैम जो भी त्रुटि है मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये रचना अपने मन से मैंने बनाया था, थोड़ा मिस्टेक बीच में हो गया क्योंकि पढ़ने में।
1: कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना
0: गा के
1: सुनाया, बहुत अच्छा लगा।
0: मैम अच्छा लगा तो इसलिए तो मैं सोचा भाई जो भी बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आपको मैम कैसा लगा?
1: जी जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आपका गाना। और आपने जो गाना गाया ना बहुत क्या ही बताया, बहुत अच्छा गाना गाया ना गाया आपने।
0: जी मैम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी त्रुटि होगा तो अपना भाई छोटा समझकर माफ भी माफ कीजिएगा, और पूरे श्रोताओं लोगों से भी बोल दीजिएगा माफ करेंगे लोग, क्योंकि छोटे से भी गलती हो सकता है। और मैं चाहता था कि इससे और आने वाला दिन में मैं इस हेलो माई चॉइस के माध्यम से पूरे दर्शकों को एक से एक मैं रचना लेके आऊंगा भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी के लिए। अभी तो मैं फिलहाल मैं महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन हम लोग जो भी बोलते हैं थोड़ा यहाँ पे वो होगा था ना कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो भोजपुरी बोलना पड़ेगा। तो हम लोग भी जहाँ रहते हैं तो अपना जो बिहार का मिठास भोजपुरी आवाज है, तो हम लोग आपस में जो भी है हम लोग यहाँ पे हिंदी वो हिंदी नहीं बोलते, हम लोग भोजपुरी में ही बात करते
1: हैं। अच्छा लगता है
0: इसीलिए मैं। जी मैम जी मैम। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाइए कि जो कि हम लोग जुड़े तो उसमें भोजपुरी आवाज में बात करें, भोजपुरी जो भी हो भोजपुरी वो गाना के माध्यम से हो, चाहे कोई भी अगर सुलझाव भी देना हो, चाहे कोई भी ऐसा एपिसोड लाकर आइए आप लोग कि भोजपुरी में हम लोग थोड़ा बातचीत आप लोगों से करें, तो थोड़ा हम लोग को और अच्छा लगेगा। और जितना भोजपुरी बोलने वाले सुनने वाले देश विदेश में रह रहे हैं लोग, थोड़ा उन लोग को भी ऐसा महसूस होगा कि भाई जो भी है अच्छा है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम कुछ ऐसा एपिसोड आप लोग लाइए कि भोजपुरी में जैसे आप लोगों से हम लोग जुड़े।
1: वैसे तो चलता है संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें पूरी गाने की ही फरमाइश होती है और भोजपुरी में भी बात किया जाता है।
0: अच्छा,
1: तो सिर्फ संडे को ही?
0: तो मैम नहीं नहीं, तो उसको ऐसे कीजिए कि मतलब कि हफ्ता में कम से कम एक दो दिन और बढ़ा दीजिए उसको, क्योंकि अपना भाषा है अपना पहचान है, तो उसको थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि ऊपर से ऊपर तक जाए, कि जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो जानबे करते हैं कि वो लोग का बिहार का लोग थोड़ा लोग अलग ही ऐसी से समझते हैं लोग। मैम एक भोजपुरी खेसारी लाल यादव का सॉन्ग है, वो मेरे को सुना दीजिए, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से।
1: ठीक है किसी को
0: आपको और रेडियो सुनने वाले सभी दर्शकों को, मेरे दोस्त लोग हैं प्रमोद खास करके इनको।
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम नमस्ते।
1: नमस्ते रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है मैम प्रणाम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
3: Hello.
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
3: खतरा वो नुझे जा, मैंने तैयार ना होके।
2: ओहो,

0: बजे जा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.
2: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।